0: आत्मा एक ऐसा वृत्त है जिसकी परिधि नहीं होती, पर जिसका केंद्र शरीर में है। मृत्यु इस केंद्र का स्थानांतर मात्र है। परमात्मा एक ऐसा वृत्त है जिसकी परिधि कहीं भी नहीं है, पर केंद्र सभी जगह है। जब हम शरीर के इस समीप केंद्र से बाहर निकलने में सफल हो सकेंगे, तभी हम परमात्मा की अपने वास्तविक रूप की प्राप्ति कर सकेंगे। आत्मा न कभी आती है, न कभी जाती है, न कभी जन्म लेती है, न कभी मरती है। प्रकृति ही आत्मा के सम्मुख गतिशील है और इस गति की छाया आत्मा पर पड़ती रहती है। भ्रमवश आत्मा सोचती रहती है कि प्रकृति नहीं, वही गतिशील है।
1: नमस्कार, सुप्रभात। आप सभी का हार्दिक स्वागत है आकाशवाणी ईटानगर केंद्र के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। जी हाँ दोस्तों, आज आप बने हुए हैं मेरे साथ यानी आपकी रेडियो साथी गिजी कनिक के साथ। हमारी स्टूडियो की घड़ी के अनुसार इस वक्त सुबह के 5:55 हो रहे हैं। इसी के साथ आरंभ होती है हमारी आज की पहली प्रसारण सभा। आज सन 2026 की जून महीने की 23 तारीख है और दिन है मंगलवार। तो चलिए दोस्तों, आज के इस हसीन दिन की शुरुआत करते हैं अरुण एफएम के साथ, जहां होती है दिल से दिल की बात। श्रोताओं, आज के प्रभातकालीन प्रसारण सभा के कार्यक्रमों को आप तक पहुंचाने के लिए आज हमारे साथ है स्टूडियो तथा एचपीटी में मौजूद सहकर्मियों सहित प्रसारण निष्पादक पी दोले तथा तकनीकी अभियंता बिमल शर्मा। हर रोज की तरह आज भी हम इस सभा में आप लोगों के लिए लेकर आए हैं अनेकों ज्ञानवर्धक एवं मनोरंजक कार्यक्रमों के साथ साथ देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरें। और अब इस शुभकामना के साथ कि आज का आपका दिन बहुत ही शुभ हो, आइए एक नजर डालते हैं इस सभा में प्रसारित कार्यक्रमों की रूपरेखा से।

श्रोताओ, अब से कुछ ही देर बाद यानी 6 बजे आप सुन पाएंगे आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी में समाचार। 6:05 पर प्रसारित होगा अंग्रेजी में समाचार। 6:10 पर आप सुन पाएंगे कार्यक्रम भक्ति गीत। 6:40 पर प्रसारित होगा गालो बोली में समाचार।

कार्यक्रम सुबह सवेरे आप सुन पाएंगे 6:45 पर, 7:10 पर आप सुन पाएंगे आपातानी बोली में समाचार।

7:15 पर आप सुन पाएंगे कार्यक्रम मॉर्निंग इन्फोटेनमेंट। 7:35 पर प्रसारित होगा तागिन बोली में समाचार। कार्यक्रम सदाबहार आप सुन पाएंगे 7:40 पर। आठ बजे आप सुन पाएंगे आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से प्रसारित समाचार प्रभात। 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज। 8:30 पर प्रसारित होगा आकाशवाणी शिलांग केंद्र से नॉर्थ ईस्ट न्यूज। कार्यक्रम हेलो ईटानगर आप सुन पाएंगे 8:40 पर। 9 बजे आप सुन पाएंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र द्वारा प्रसारित हिंदी में समाचार। 9:05 पर प्रसारित होगा अंग्रेजी में समाचार। कार्यक्रम फिल्मी गपशप आप सुन पाएंगे 9:10 पर। 10 बजे आप सुन पाएंगे आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत तेजी से विकसित हो रही भरोसेमंद अर्थव्यवस्था और विश्वसनीय शक्ति है। श्री मोदी ने कल नई दिल्ली में एक निजी मीडिया हाउस द्वारा आयोजित सम्मेलन में कहा कि पिछले दशक में भारत की उपलब्धियां राष्ट्र प्रथम की भावना से निर्देशित रही हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान में लिए गए निर्णय और कार्रवाई सदियों तक देश के भविष्य की आधारशिला रहेंगी।
1: भारत जो कर रहा है वो आने वाले 1000 वर्ष का फ्यूचर लिखने वाला है और यही दुनिया के लिए सबसे बड़ी भारत की गारंटी है। भारत फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी भी है, एक क्रेडिबल इकोनॉमी भी है।
0: प्रधानमंत्री ने G7 शिखर सम्मेलन में अपनी हाल की भागीदारी का उल्लेख करते हुए कहा कि विश्व नेताओं ने राष्ट्र प्रथम के सिद्धांत के प्रति भारत की अटल प्रतिबद्धता को समझा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की चेतना में सदियों से सहेजी गई स्मृतियां जीवंत हैं। वर्तमान में उठाए गए कदम अगले 1000 वर्षों के लिए भविष्य को आकार देंगे। सरकार के 12 वर्ष के सेवा कार्यों का स्मरण करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि अब देश के लगभग 45,000 गांवों तक मोबाइल कनेक्टिविटी पहुंच चुकी है। श्री मोदी ने कहा कि आज कुछ लोग संविधान की बात उठाते हैं, लेकिन जब वे सत्ता में थे तो नक्सलग्रस्त क्षेत्रों में संविधान का नाम लेने पर ही गोली तक मार दी जाती थी। प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वच्छ भारत अभियान और मेक इन इंडिया जैसी पहल इस कारण सफल हो सकी है क्योंकि देश के लोगों ने राष्ट्र को सर्वोपरि रखा और देश के प्रति कर्तव्य निभाए। आर्थिक सुधारों से मध्यम वर्ग को मिल रहे लाभों का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि कर राहत उपायों से परिवारों की कर मुक्त आय बढ़ी है। भारत और मोरक्को के बीच आतंकवाद रोधी संयुक्त कार्य समूह की दूसरी बैठक कल नई दिल्ली में हुई। बैठक की सह अध्यक्षता विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव डॉक्टर विनोद बाहड़े और मोरक्को के राष्ट्रीय न्यायिक पुलिस ब्रिगेड के प्रमुख हिशाम बाली ने की। विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों देशों ने सूचना साझा करने, क्षमता निर्माण और बेहतर कार्य प्रणालियों के आदान प्रदान के माध्यम से आतंकवाद के खिलाफ द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने के उपायों पर चर्चा की। सहकारिता मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ नैफेड के नीलामी पोर्टल का शुभारंभ करेंगे। उम्मीद है कि ये पोर्टल नीलामी संबंधी गतिविधियों को सुव्यवस्थित करने और किसानों, सदस्य संस्थानों और हितधारकों के हित में बेहतर डिजिटल मंच प्रदान करेगा। लखनऊ आग हादसे में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है और इनमें से 4 को कल रात गिरफ्तार कर लिया गया। अलीगंज के एक एनिमेशन कोचिंग सेंटर में हुए इस हादसे में 15 विद्यार्थी मारे गए और 9 घायल हो गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर लखनऊ विकास प्राधिकरण, अग्निशमन विभाग और विद्युत विभाग के 4 अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। हज कमेटी ऑफ इंडिया ने हज के लिए संभावित हाजियों के आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने हज नीति 2027 जारी करते हुए कहा कि आवेदन हज कमेटी ऑफ इंडिया के पोर्टल और हज सुविधा ऐप के जरिए ऑनलाइन जमा किए जा सकते हैं, जिससे ये प्रक्रिया ज्यादा आसान और सुलभ हो जाएगी। फीफा विश्व कप में इस समय अमेरिका के फिलाडेल्फिया में ग्रुप 1 के मुकाबले में फ्रांस और इराक के बीच मैच चल रहा है। इससे पहले ग्रुप जे के मैच में अर्जेंटीना ने ऑस्ट्रिया को 2-0 से हराया। दोनों गोल अर्जेंटीना के कप्तान लियोनेल मेसी ने किए। इसके साथ ही मेसी ने 18 गोल के साथ जर्मनी के मिरोस्लाव क्लोज का 16 गोल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है और विश्व कप के इतिहास में सबसे अधिक गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। FIH प्रो लीग के शुरुआती मुकाबले में आज भारतीय पुरुष हॉकी टीम का सामना पाकिस्तान से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

श्रोता दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार। आपको बता दूं, आप हमारे साथ बने हुए हैं आकाशवाणी ईटानगर केंद्र के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर। इसी के साथ ही दोस्तों, अब वक्त हो चला है कार्यक्रम भक्ति गीत का।

0: श्रोताओं, इसी के साथ ही कार्यक्रम भक्ति गीत यहीं पर समाप्त होता है। आपको बता दो, अब से कुछ ही देर बाद आप सुन पाएंगे गालो बोली में समाचार। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें और बने रहे अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर।
1: ही आकाशवाणी ईटानगर हिलो लुई पोल ग आलो हम नि गोला लोमना ने गाल आर होके गालो में के नाग में मिलन जी दखनांगो दक्षा पेते अन्य न्यू ये गोला न्यू नि आर होगो गवर्नमेंट या का गो पॉलिसी ओक प्रोग्राम इदे निम जिग दोकला निगत ग ये नम दु नम जिग जोगो दोब इसकु नम लगाब निलुम नित गद गवर्नेंस ओक एडमिनिस्ट्रेशन मुतिंदो नक अमला प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी में मलो मेंतु यूनियन कमर्स एंड इंडस्ट्री पीयूष गोयल ग सोशल मीडिया लो जिलेन दुल दिन सुरुन आगम हिम निर्म मोदी में मेंतु गुमिन हो इन लोक निलुम नित गद्दम मुतिंदो ब अगर इनाम हिगी गुड गवर्नेंस लगा ब उरी बेंच गई ना के अमला मोदी में मेंता तू हेनी ग अन्य हो के इने कुन रले जनवरी पोल ओगो आधार एप मोलन जीतू ओकलेला इजालो ब काका कुन में आधार एप डाउनलोड ना निद में 31 मिलियन इंबो याई कुबा अमला मेंपा जीतू मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी गद द मेनला आधार एप नी नरुग मुतिनला डाउनलोड नाम हिगिम कायम नी गद सर्विस फैसिलिटी अलग अलग लग बरलो बंगामला येत मुरिये मदुनानी के अमला मेंतु पीडब्ल्यूडी होम पॉलिटिकल बॉर्डर अफेयर्स इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस ऑक हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट थ्रू गद ग फिनेंशियल ईयर 2025 टू 2026 लोक अचीवमेंट पानम ऑक फिनेंशियल ईयर 2026 टू 27 लोक टारगेट एम फाइनलाइज तानम लगा ब चीफ सेक्रेटरी मनीष गुप्ता में दिन रोना कते के बागो बादुम गतु सीएस में सोशल मीडिया लो पोस्ट दूला मेला डिपार्टमेंट ऑफ पीएची एंड डब्ल्यू एस एजुकेशन इंडस्ट्रीज ओके कब कब डिपार्टमेंट गद ग टारगेट फिक्सेशन ओके परफॉर्मेंस लगा लो रिव्यू मीटिंग हम अलग लो दूसर गत नमक हम लगो मिन हो नम में पाजितु मलो मिनिस्टर फॉर ट्रांसपोर्ट निर्म ओजिंगता सिंह में अरुणाचल प्रदेश स्टेट ट्रांसपोर्ट सर्विस ग लग लगा एम अलजब जिक्का को कही नाम लगा ब जीएम मीतो दुर्ची डिपार्टमेंट लो के सीनियर ऑफिसर्स ओके तार मोटर्स पोर्स

0: Abotani Motors ok Popo Asok Leland ge representative roga dem dog dula dins rona kete kabago badaglo kebab dul jitu loduma lolo bas moten mom nam gadem authorized dealer gadde jigor dog be inam district narulo stop transfer posting gaise do be inam jamu daglo tires ok spare parts gadem jidalat be inam lagi laga aljab jingnyu kongyu hitu menke nagom him nunu akas bani itanagar lokke tapadu tawang ddsc haridar punsok me beo academic tupten wangchu ok crcc bonkar dorji norbu ne inglela government secondary school seru ok government secondary school bomba kagota go getu school am kagota go dagelo officers gad the teachers gad them character rekhidula academic activities mid day meal ok school aralok infrastructure mohila donam gad them alijab ukadam pak jitu mid day meal ge quality am hennam lagab officers gad the lodumalolo student gad ge asindoklo domin gatu anyamagat ge icc t20 cricket world cup ge group a match am kenlo manchester lo south africa ok india keli ika means nam south africa gad the india am 6 wicket lok igum ge ekba amla me pajitu pipa world cup lo itjab egypt gad the new zealand am 3-1 lok tugum ge ekba amla mentu liverpool lok star mohammed salah me tournament lo gol jit jab jitu group h ge match am florida lo tuka means mon me cafe verde ok uruguay tu tu lok ge da hi ge kuba amla sin me pajita tu papum pare is siang ok lower dibang valley lo doi do gum gum la doya kyagla ok ni do atib ode do amdula meteorological center itanagar gad orange alert go jilen jitu hamni gola ango district lo sin ni do maj ma jab ode do nak amdula mci gad yellow alert go jilen jita tu ketan gad hirge galom men ken agom men jisa ege
1: श्रोताओं अभी आप सुन रहे थे गालो बोली में समाचार। गालो श्रोताओं के आगे के कार्यक्रमों को आप सुन सकते हैं आकाशवाणी ईटानगर केंद्र के मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलोहर्ट्ज तथा डीआरएम 666 किलोहर्ट्ज पर। आपको बता दूं आप हमारे साथ बने हुए हैं एफएम बैंड के 103.1 मेगाहर्ट्ज पर जहां होती है दिल से दिल की बात। अब आप सुन पाएंगे कार्यक्रम सुबह सवेरे।

श्रोता दोस्तों, हमारा ये कार्यक्रम सुबह सवेरे समर्पित है आपकी तंदुरुस्ती को, जिसमें हम रोजाना लाते हैं स्वास्थ्य से जुड़ी जरूरी बातें, योग व्यायाम की जानकारी और आपके पसंदीदा गीत। चलिए दोस्तों, आज की शुरुआत करते हैं कुछ असरदार हेल्थ टिप्स के साथ।

दोस्तों सबसे पहला टिप है, सुबह नींबू पानी से करें दिन की शुरुआत। एक ग्लास गुनगुना पानी में आधा नींबू मिलाकर पीना आपकी बॉडी को डिटॉक्स करता है, मेटाबॉलिज्म बढ़ाता है और इम्यूनिटी मजबूत करता है। दोस्तों दूसरी टिप है, खाली पेट कोई फल जरूर खाएं। सुबह फल खाने से शरीर को एनर्जी मिलती है और पाचन क्रिया सुधरती है। कोशिश करें कि मौसमी फल जैसे सेब, केला या पपीता लें।

दोस्तों अगला टिप है, सुबह कम से कम 15 से 20 मिनट की वॉक या हल्का व्यायाम आपके शरीर को एक्टिव कर देता है और मन को भी सुकून देता है, इसीलिए थोड़ी सी हलचल जरूरी है। दोस्तों दिन की शुरुआत से ही पानी पीने की आदत बनाइए, सुबह उठते ही 1 से 2 गिलास पानी जरूर पिए, इससे शरीर हाइड्रेटेड रहेगा। श्रोताओं आगे हम और भी आपको हेल्थ टिप्स देंगे, लेकिन इससे पहले आइए आपको सुनवाते हैं आज का पहला खूबसूरत गीत, ताकि आपकी सुबह बने और भी खुशनुमा।

चलिए दोस्तों, इस गीत के बाद बढ़ते हैं आगे एक और खास हेल्थ टिप की ओर। श्रोता दोस्तों, हर दिन थोड़ी धूप जरूर ले। सुबह की हल्की धूप से शरीर को प्राकृतिक रूप से विटामिन डी मिलता है, जो हड्डियों को मजबूत करता है और मूड अच्छा बनाए रखता है। खुली हवा में गहरी सांस ले। अगर आप हर रोज 5 मिनट खुले आसमान के नीचे गहरी सांस लेते हैं तो वो स्ट्रेस को कम करता है और दिमाग को शांत करता है। दोस्तों, 4 से 5 बीघे बादाम या 1 अखरोट जरूर लें। ये ड्राई फ्रूट दिमाग की शक्ति को बढ़ाते हैं और दिल की सेहत के लिए भी फायदेमंद होते हैं।

तो श्रोताओ, स्वस्थ शरीर का पहला मंत्र है भरपूर पानी। क्या आप जानते हैं कि हमारे शरीर का लगभग 60% हिस्सा पानी से बना होता है और यही पानी हमारे शरीर को ठंडा रखता है, पाचन सुधारता है, थकान कम करता है और यहाँ तक कि हमारी त्वचा को भी चमकदार बनाता है। विशेषकर गर्मियों में सुबह उठते ही एक ग्लास गुनगुना पानी जरूर पिए। ये शरीर से विषैले तत्व निकालने में मदद करते हैं। तो दोस्तों, यही थी आज की कुछ छोटी लेकिन असरदार बातें, जिन्हें अपनाकर आप हर दिन को बना सकते हैं हेल्दी और हैप्पी। दोस्तों, याद रखिए, छोटी छोटी अच्छी आदतें ही बड़ी सेहत बनाती है। चलिए दोस्तों, अब हम आपको सुनवाते हैं कुछ और नगमे।

0: दोस्तों इसी के साथ ही कार्यक्रम सुबह सवेरे यहीं पर समाप्त होता है। अब से कुछ ही देर बाद आप सुन पाएंगे आपातानी बोली में समाचार। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।
1: हर पल रहते
2: श्रोता, अभी आप सुन रहे थे कालो श्रोताओं का कार्यक्रम। यह आकाशवाणी ईटानगर का केंद्र है। अब आप सुन पाएंगे आपातानी श्रोताओं का कार्यक्रम।

अजिन तासिंग बुझे अरुणाचल प्रदेश स्टेट ट्रांसपोर्ट सर्विसेज का जनरल मैनेजर मितो दिर्ची का आगे हो डिपार्टमेंट का सीनियर ऑफिसर्स ला एमएस तार मोटर्स एमएस पोर्ट्स अबोतानी मोटर्स ला एमएस पोपू अशोक लोलेन का रिप्रेजेंटेटिव्स मियो अतान आगे हो रिव्यू मीटिंग दुकुंग कोने मी मगला मत होसगा मीटिंग दुकुंग मुस्को हो अरुणाचल प्रदेश का स्टेट ट्रांसपोर्ट सर्विसेस मी का बूथ मियो अतंपा का आया सोला विसा सकोमी तालु मोसला मत हो ऑथोराइज डीलर्स अतामी गारी पाजी मी का मत दोपा का बिली हो निव्यापा मत लला बिदोकोपा लोला मत हो गारी टायर्स ला स्पेयर पार्ट आता मलिन हमी हिंखला निमादोपा मसाको दिगो मलामी तरसला मत हो स्टाफ अतामी मलांजा डिस्ट्रिक्ट अता हो दातुन्या दोपा ट्रांसफर पोस्टिंग मी मुदोपा ते लुइसला मत तवांग का दीदी डीडीएसी हृदय पुनसोक बीडीई एकेडमिक तुपतेन बंगचूला सीआरसीसी बोंखार दर्जी नोरबुलु का अतांह गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल सेरूला गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल बोम्बा नी हो ककाहाला मत हो पुरगन टीचर्स सारा अता मलामी लुरुबिंताला मत हो मिड डे मील का दिगो मलामी टकाला स्टूडेंट्स हिमे अता आगे हो आयापा बीस दोहाला ककादुपा दुबोला मत मेट्रोलॉजिकल सेंटर ईटानगर दलिहोक पापुमपारे ईस्ट सियांगला लोअर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट अतांका तचलोइन गंदात्सको अताहो अनो ओरोपा मदो होला मने दो हेला ऑरेंज अलर्ट मी बिकोला मदो हो अरुणाचल का खुबे निखाहे डिस्ट्रिक्ट अतांपा येलो अलर्ट मी बिकोला मदो कोलो संडे आलो हो मैनचेस्टर होका साउथ अफ्रीका ला इंडिया नी का आईसीसी 2020 वर्ल्ड कप होका उमेन निम अतांका क्रिकेट दंकासला मको हो साउथ अफ्रीका हु खे विकेट फा इंडिया मी दामिला मते फीफा वर्ल्ड कप 2026 हो इजिप्ट हु वर्ल्ड कप हो तुजापा तुमिला न्यूजीलैंड मी गोल गोहें बिला तुमिला मते ओसीसी ग्रुप जी हो इजिप्ट के हु पॉइंट अब जापा दोला लिदो हो ग्रुप एच हो बुलो अलोहो का तुकासला मको हो केफ वर्दे का केफ वर्देला उरुग्वेनी गोल गोने साय बिसला द्रोसला मते सरो का पुलु को सने हम कने सी आकाशवाणी ईटानगर सिसी तनुभूषय में मिली मिली कपियोपा नारा ओद का दमिम पन्नमी तपाकिंदो

विश्वविद्यालय में इंटर नेशनल ओलंपिक कमेटी की स्थापना हुई थी। इसी संगठन ने आधुनिक ओलंपिक खेलों के आयोजन की जिम्मेदारी संभाली। आज के दिन के सबसे पुराने संसद आइसलैंड के संसद भवन की स्थापना जो देश के लोकतांत्रिक इतिहास के एक महत्वपूर्ण प्रतीक है।

0: 1982 में आज के दिन
1: भारत के
0: प्रमुख राजनेता और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के पुत्र संजय गांधी का एक विमान दुर्घटना में दिखे मरो पादानी
1: करते हैं लो
0: तस्वीर 182 जिसे कंटेनर फ्लाइट 182 जिसे जाना चाहता है आने

0: सोमवार को कहा कि समुदाय के
1: अध्यात्म
0: नब्स तब

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग आईएमडी ने राज्य के अपने प्रेस अनुमान में कहा कि मंगलवार को अरुणाचल प्रदेश में कई हिस्सों में बिजली और भारी बारिश के साथ

0: सर्दियों में आज बस इतना ही।
1: आप हमारे साथ बने हुए हैं
0: असम बैंड के 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर, जहां होती है दिल से दिल की बात। श्रोता दोस्तों, आइए अब आनंद लेते हैं कुछ बेहतरीन फिल्मी नगमों का।
2: सुखा बहरा पा नरंग उनका बिजनेस में तबाकिंडो

दोस्तों इसी के साथ ही कार्यक्रम मॉर्निंग इन्फोटेनमेंट यहीं पर समाप्त होता है। अब से कुछ ही देर बाद आप सुन पाएंगे तागिन बोली में समाचार। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।

कमिश्नर के जातो डिप्टी डायरेक्टर ऑफ स्कूल एजुकेशन रिदार फोनसोक ला ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर एकेडमिक टॉप टेन वांगचूला सीआरसीसी बोंकार दर्जी नरबू बोलो मयो गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल सेरू ओके गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल कंबा ना इंस्पेक्शन को अंकर लका कर गेन को बोला विपाद को सो गामा ना तेवका पक ला रिगन को बोला विपाद को सो गे इंस्पेक्शन को अंकर कोलो स्कूल लो एकेडमिक फेले लोका ऑनगोइंग इंफ्रास्ट्रक्चर development ringo lupa kunam construction ringo lupa kunam de daga ka ka kar la ri gani kubala me pad ko so alolo mid day meals achen banam nga ka domin ganya la pula ri gani kubala me palin do ko ICC Women's T20 World Cup cricket match ngai kilo ko sande alolo liksukulo South Africa nga India nga 6 wicket lo ko yaga ni kubala bipado ko FIFA World Cup 2026 nga liksukulo Egypt nga New Zealand team nga ato akeb 3-1 goal lo ko yaga ni kubala bipalin do ko Meteorological Center Itanagar lo ko bipakunam nga Arunachal Pradesh nga papampare is yang ओके लोअर दिबांग वैली डिस्ट्रिक्ट लो ऑरेंज अलर्ट को कातम लंजे दोंग अच्छले बो होलक ते दूला में पालें दुखो सो गो डिस्ट्रिक्ट दे दलो मौका गुना लो दोगम दौरी अंग तक लंजे दोंग होलक ते दूला में पाल दुखो ओके एमसीआई लो के में पाल दे नाम गे होले या चाइन डिस्ट्रिक्ट गुलो येलो अलर्ट को कातम लंजे दोंग होबंग ते दूला में पालें दुखो सरोग तागिम गांबो इनिंग मिटम संका हेबो

श्रोता दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे तागिन बोली में समाचार। तागिन श्रोताओं के आगे के कार्यक्रमों को आप सुन सकते हैं आकाशवाणी ईटानगर केंद्र के मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलोहर्ट्ज तथा डीआरएम 666 किलोहर्ट्ज पर। आप हमारे साथ बने हुए हैं एफएम बैंड के 103.1 मेगाहर्ट्ज पर, जहां होती है दिल से दिल की बात। चलिए दोस्तों, इसी के साथ ही अब आप सुन पाएंगे कार्यक्रम सदाबहार।

नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ और मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त गिची कनिक आज के सदाबहार कार्यक्रम के साथ। चलिए दोस्तों, सबसे पहले नजर डालते हैं ईटानगर के मौसम पर और इस वक्त तापमान लगभग 23 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है और आसमान में बादल छाए हुए हैं। हवा में नमी का स्तर काफी ज्यादा है, करीब 98%, इसीलिए मौसम थोड़ा ठंडा और सुहाना महसूस हो रहा है। आज दिन भर बादलों की आवाजाही बनी रह सकती है और हल्की फुल्की बारिश के असर भी नजर आ रहे हैं। दिन का अधिकतम तापमान लगभग 26 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। हवा की रफ्तार भी काफी शांत है, लगभग 3 किलोमीटर प्रति घंटा, इसीलिए मौसम में एक अलग ही सुकून महसूस किया जा सकता है। आने वाले कुछ दिनों में भी बारिश का सिलसिला जारी रह सकता है, इसीलिए अगर आप घर से बाहर निकलने की योजना बना रहे हैं तो अपने साथ छाता या रेनकोट जरूर रखिए। और हाँ दोस्तों, इस सुहाने मौसम का आनंद एक गर्म चाय की प्याली के साथ लेना ना भूलिए।

तो दोस्तों, बादलों की चाव, हल्की ठंडी हवा और रिमझिम फुहारों के साथ ये मौसम दिल को एक अलग ही सुकून दे रहा है। इसे खूबसूरत एहसास को और भी हसीन बनाने के लिए चलिए अब बढ़ते हैं सदाबहार सुरों की दुनिया की ओर। आइए अब सुनते हैं कुछ बेहतरीन और सदाबहार नगमे अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर।

0: दोस्तों इसी के साथ ही कार्यक्रम सदाबहार यहीं पर समाप्त होता है। आपको बता दूं आप हमारे साथ बने हुए हैं एफएम बैंड के 103.1 मेगाहर्ट्ज पर, और अब से कुछ ही देर बाद यानी 8 बजे आप सुन पाएंगे आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से प्रसारित समाचार प्रभात। 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज, 8:30 पर प्रसारित होगा आकाशवाणी शिलांग केंद्र से नोटिस न्यूज।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत के तेजी से विकसित भरोसेमंद अर्थव्यवस्था और विश्व शक्ति बनने में राष्ट्र प्रथम का सिद्धांत प्रेरक बल। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने लखनऊ अग्निकांड में 4 अधिकारियों को निलंबित किया, 4 और आरोपी गिरफ्तार। उर्वरक ले जा रहे 4 जहाज हॉर्मुज जल डमरू मध्य पार करने के बाद भारतीय बंदरगाहों की ओर बढ़े। कतर ने रास लाफान एलएनजी विस्फोट में 12 भारतीय नागरिकों की मौत की पुष्टि की। और कैलिफोर्निया में आज से शुरू हो रहे यूएस ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट में लक्ष्य सेन और तन्वी शर्मा भारत की अगुवाई करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के तेजी से विकसित भरोसेमंद अर्थव्यवस्था और विश्वसनीय विश्व शक्ति बनने में राष्ट्र प्रथम का सिद्धांत प्रेरक रहा है। नई दिल्ली में कल निजी मीडिया हाउस के सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कहा कि विश्वसनीयता, स्थिरता और वैश्विक हित के लिए प्रतिबद्धता पिछले दशक में भारत की उपलब्धियों के मूल में रही है। G7 शिखर सम्मेलन में भारत की भागीदारी का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि विश्व नेताओं ने राष्ट्रीय हितों की प्राथमिकता देने की भारत की अटल प्रतिबद्धता को साझा किया है। सरकार के 12 वर्ष के कार्यों का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने कहा कि स्वच्छ भारत, मेक इन इंडिया, खादी और स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने की पहल राष्ट्र निर्माण के लिए नागरिकों की प्रतिबद्धता में सफल हुई है।
2: पिछले 12 वर्षों के जो भी सिद्धियां देश की रही है उनके मूल में राष्ट्र प्रथम की भावना ही केंद्र में है। स्वच्छ भारत अभियान से लेकर मेक इन इंडिया, खादी खरीदने पर जोर, स्थानीय वस्तुएं खरीदने पर जोर, ये सारे इनिशिएटिव इसलिए सफल हुए क्योंकि देश की जनता ने देश को सबसे ऊपर रखते हुए अपना कर्तव्य निभाया।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि हाल के वर्षों में लगभग 25 करोड़ लोग गरीबी से उभरे हैं। श्री मोदी ने सस्ते आवास, कर सुधार, स्वास्थ्य देखभाल योजना और बेहतर शहरी बुनियादी ढांचे का उल्लेख किया। देश की मजबूत अवसंरचना पर बल देते हुए श्री मोदी ने कहा कि वंदे भारत, नमो भारत और अमृत भारत रेलगाड़ियां, विस्तारित राजमार्ग और हवाई अड्डों से संपर्क व्यवस्था में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है।
2: 2014 में करीब 28 लाख लोग हर रोज मेट्रो से सफर करते थे, आज करीब 1,28,00,000 लोग हर रोज मेट्रो से सफर कर रहे हैं। अब वंदे भारत, नमो भारत और अमृत भारत जैसी अच्छी सड़कों, अच्छे हाईवे से समय तो बच ही रहा।

0: रहा है, गाड़ियों की मेंटेनेंस पर होने वाला खर्चा भी कम हुआ है। बीते वर्षों में एयरपोर्ट की संख्या डबल हुई है। इससे कई छोटे छोटे शहरों में भी मिडिल क्लास को हवाई यात्रा की सुविधा पहली बार मिली है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि वैश्विक उथल पुथल के बावजूद भारत में अभूतपूर्व अवसर सृजित हुए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि 140 करोड़ भारतवासियों के सामूहिक प्रयासों से विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त करने में सहायता मिलेगी।
0: भारत आज रिफॉर्म एक्सप्रेस पर सवार हो चुका है। ये गति आगे और तेज होगी कि हमारा सपना जितना बड़ा है, हमारे प्रयास भी उतने ही विराट होंगे। और 140 करोड़ देशवासियों का यही साझा प्रयास विकसित भारत बनाकर रहेगा।
1: राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने नई दिल्ली में कल ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 16वीं बैठक में चीन की विदेश मंत्री वांग यी के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। बैठक में दोनों देशों के संबंधों को सामान्य बनाने की दिशा में हुई प्रगति सहित आपसी सहयोग के महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई। श्री डोभाल ने कहा कि भारत और चीन के बीच स्थिर, भरोसेमंद और सकारात्मक संबंध दोनों देशों के बीच विश्वास और बेहतर समझ को मजबूत करने में सहायता करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने हाल के घटनाक्रमों की समीक्षा की तथा सकारात्मक संबंधों की दिशा में हुई प्रगति पर संतोष व्यक्त किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। हमारी संवाददाता ने बताया है कि आज 2 पद्म विभूषण, 7 पद्म भूषण और 56 पद्मश्री सहित कुल 65 अलंकरण दिए जाएंगे।
2: इस वर्ष केंद्र सरकार ने कुल 131 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की है। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। पुरस्कार प्राप्त करने वालों में 19 महिलाएं हैं, जबकि 16 सम्मान मरणोपरांत प्रदान किए जाएंगे। पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में शामिल हैं। आज राष्ट्रपति 65 विशिष्ट हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित करेंगी। इनमें टेनिस के दिग्गज विजय अमृतराज, अभिनेता ममूति, गायिका अलका याग्निक और भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा जैसे प्रमुख हस्तियां शामिल हैं। वर्ष 1954 में स्थापित किए गए यह पुरस्कार प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर घोषित किए जाते हैं। पद्म पुरस्कार कला, साहित्य, शिक्षा, खेल, चिकित्सा, सामाजिक कार्य, विज्ञान, लोक प्रशासन तथा व्यापार और उद्योग सहित विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट और विशिष्ट योगदान को मान्यता देने के लिए प्रदान किए जाते हैं। सौम्या शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: हमारी विशेष श्रृंखला पीपुल्स पद्म ऑन आकाशवाणी के अंतर्गत विशेष कार्यक्रम प्रसारित किए जा रहे हैं। इन कार्यक्रमों में पद्म पुरस्कार पाने वाले सम्मानित व्यक्तियों के जीवन, उनके कार्यों और समाज में उनके योगदान की जानकारी दी जा रही है।
3: मैदाप का काम सीखा, अंगूरी का काम सीखा है, मोटी चिकन मामूली का काम, तो इसमें सबसे बारीक काम एक मरूरी का ही होता है। तो मरूरी का काम जो है लगातार नहीं किया जाता है, ये बहुत ही फाइन वर्क होता है।
4: जब हमारे मेजॉरिटी कम्युनिटी का यूथ और माइनॉरिटी कम्युनिटी का यूथ वो एक दूसरे को समझने की कोशिश करें, वो ये जाने कि कश्मीर का जो एक नॉर्मल सी के लिए वही गुलदस्ता जो कश्मीर जिसमें हमारे गांधी जी को किरण नजर आई थी या भारत का ताज के रूप में ये जो था, उसी गुलदस्ते को फिर से उजागर करने के, उसको बनाने के लिए हमने प्रयास करा।
1: ये विशेष कार्यक्रम आज सवेरे 9:10 से आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल 100.1 पर प्रसारित किया जाएगा। श्रोता इन्हें न्यूज ऑन AIR ऐप और न्यूज ऑन AIR के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर भी सुन सकते हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIR News Hindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। लखनऊ अग्निकांड में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इनमें से 4 को कल रात गिरफ्तार कर लिया गया।
5: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर लखनऊ विकास प्राधिकरण, अग्निशमन विभाग और विद्युत विभाग के 4 अधिकारियों को भी निलंबित कर दिया गया है। अलीगंज पुलिस ने BNS और उत्तर प्रदेश अग्निशमन सेवा अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत 6 नामजद आरोपियों और अन्य जिम्मेदार व्यक्तियों के खिलाफ FIR दर्ज की है। राज्य सरकार ने आग की घटना की उच्च स्तरीय जाँच के आदेश दे दिए हैं। घटना की जाँच के लिए एक विशेष जाँच दल SIT का गठन किया गया है, जिसके सदस्य 7 दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। SIT में में अतिरिक्त मुख्य सचिव धर्मार्थ कार्य पर्यटन और संस्कृति अमृत अभिजात और अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक लखनऊ जोन प्रवीण कुमार शामिल हैं। कल दोपहर लगी भीषण आग

0: कम से कम 15 लोगों की मौत हो गई थी, जिनमें ज्यादातर 16 से 25 साल की उम्र के छात्र थे। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ नेफेड के नीलामी पोर्टल का शुभारंभ करेंगे। इससे नीलामी संबंधी गतिविधियों को सुगम बनाने और किसानों तथा कृषि संस्थाओं के हित में नेफेड की कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म उपलब्ध होगा। सहकारिता मंत्रालय ने बताया कि कार्यक्रम के दौरान श्री अमित शाह कई महत्वपूर्ण डिजिटल और किसान केंद्रित पहल का भी शुभारंभ करेंगे। यूरिया, डाई अमोनिया फॉस्फेट और सल्फर लेकर आ रहे चार भारतीय मालवाहक जहाज होर्मुज जलडमरू मध्य सफलतापूर्वक पार कर चुके हैं। रसायन और उर्वरक मंत्रालय के अनुसार ये जहाज अब देश के विभिन्न बंदरगाहों की ओर बढ़ रहे हैं। इनमें आंध्र प्रदेश के कृष्णापट्टनम और काकीनाडा बंदरगाह, ओडिशा का पारादीप बंदरगाह और गुजरात का मुंद्रा बंदरगाह शामिल है। दोहा स्थित भारतीय दूतावास ने बताया है कि कतर के अधिकारियों ने रास लाफान क्षेत्र में रविवार रात हुई दुर्घटना में 12 भारतीय नागरिकों की मौत की पुष्टि की है। दूतावास ने शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की। घटना में घायल सभी लोगों को उचित चिकित्सा उपचार मिल रहा है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने भारतीय नागरिकों सहित अन्य लोगों की मौत पर गहरा दुख व्यक्त किया है। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दोहा स्थित भारतीय दूतावास कतर के अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में है और भारतीय नागरिकों के परिवारों की सहायता कर रहा है। कतर की सबसे बड़ी गैस रिफाइनरी में हुए विस्फोट में 13 लोग मारे गए और 66 अन्य घायल हो गए। जम्मू कश्मीर पुलिस ने वार्षिक श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए परामर्श जारी किया है। यह यात्रा 3 जुलाई से 28 अगस्त तक आयोजित की जाएगी। कश्मीर से जम्मू जाने वाले वाहनों को सवेरे 11:30 बजे से पहले नवयुग सुरंग पार करने की अनुमति नहीं होगी। वहीं जम्मू से कश्मीर जाने वाले वाहनों को प्रतिदिन दोपहर 3 बजे के बाद सुरंग में प्रवेश नहीं मिलेगा। परामर्श में घाटी के कई महत्वपूर्ण स्थानों के लिए समय सीमा भी तय की गई है। और अब खेल समाचारों के साथ हैं आनंद पाठक।
2: कैलिफोर्निया में आज से शुरू हो रहे अमरीकी ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट में लक्ष्य सेन और तन्वी शर्मा भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। लक्ष्य सेन पुरुष सिंगल्स के पहले दौर में बेल्जियम के जूलियन कैरागी से खेलेंगे। किदाम्बी श्रीकांत अपने पहले दौर के मुकाबले में चीनी ताइपे के लियाओ झुओ फू का सामना करेंगे। वहीं महिला सिंगल्स में भारत की 7 खिलाड़ी मुख्य ड्रॉ में शामिल हैं। 17 वर्षीय तन्वी शर्मा जर्मनी की यवोन ली के खिलाफ अपना अभियान शुरू करेंगी। महिला डबल्स में ट्रीसा जॉली और गायत्री गोपीचंद पहले दौर में स्पेन की पाउला लोपेज और लूसिया रोड्रिगेज का सामना करेंगी। वहीं हॉकी में FIH प्रो लीग के शुरुआती मुकाबले में आज भारतीय पुरुष टीम का सामना पाकिस्तान से होना है। उधर फीफा विश्व कप में फ्रांस ने इराक को 3-0 से हरा दिया है। वहीं न्यूयॉर्क में नॉर्वे ने सेनेगल को 3-2 से हराया। इस बीच आज सवेरे 8:30 बजे से जॉर्डन और अल्जीरिया के बीच मैच खेला जाएगा। इससे पहले अर्जेंटीना ने ऑस्ट्रिया को 2-0 से हराया। दोनों गोल अर्जेंटीना के कप्तान लियोनेल मेसी ने किए। इसके साथ ही मेसी 18 गोल के साथ जर्मनी के मिरोस्लाव क्लोस का 16 गोल का रिकॉर्ड तोड़कर विश्व कप के इतिहास में सबसे अधिक गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं।
1: मौसम विभाग ने अगले 2 दिन तक असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल के उप हिमालयी क्षेत्र और सिक्किम में बहुत तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। बिहार, अरुणाचल प्रदेश, तटवर्ती कर्नाटक, मध्य महाराष्ट्र, गोवा, ओडिशा, तेलंगाना, केरल और पूर्वोत्तर क्षेत्र में भी ऐसी ही स्थिति रहेगी। हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, तमिलनाडु, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बृहस्पतिवार तक तेज हवाएं चलने और गरज के साथ वर्षा का अनुमान है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in और हमारे newsonair मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
3: धन्यवाद मुकेश। अमेरिका और ईरान के बीच समझौते की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, अमेरिका ईरान के बीच बात बनी, 60 दिन में होगा अंतिम समझौता। ईरान के तेल से पाबंदी हटी, स्विट्जरलैंड के बुर्गेन स्टॉक रिसॉर्ट में घंटों चली वार्ता, बातचीत सकारात्मक और रचनात्मक माहौल में हुई, जेडी वेंस ने बैठक को ऐतिहासिक बताया। पंजाब केसरी ने तनाव के बीच उम्मीद शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, जेडी वेंस अमेरिका के भावी राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हो सकते हैं, उन्हें डोनाल्ड ट्रंप का राजनीतिक उत्तराधिकारी माना जा रहा है। अगर शांति समझौता विफल रहता है तो ट्रंप इसका पूरा दोष वेंस पर डाल देंगे। ये शांति समझौता वेंस के राजनीतिक करियर के लिए दोधारी तलवार बन चुका है। नव

0: टाइम्स का शीर्षक है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने इस्तीफे का ऐलान किया। बर्नहम ने पीएम पद की दावेदारी पेश की। स्टार्मर बीते 10 साल में ब्रिटेन के पीएम पद से इस्तीफा देने वाले छठे व्यक्ति। जनसत्ता की सुर्खी है लखनऊ के अलीगंज में इमारत में लगी आग, 12 बच्चों समेत 15 लोगों की मौत। मुख्यमंत्री ने हालात का जायजा लिया, जांच के लिए एसआईटी गठित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना पर दुख व्यक्त करते हुए पीड़ितों की हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। दैनिक जागरण ने लापरवाही की आग शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, बहुत दिन नहीं हुए जब देश की राजधानी में अवैध होटल में आग से 20 से अधिक लोग मारे गए थे। माना यह गया था कि इस घटना से सीख ली गई होगी, लेकिन लखनऊ की आग से पता चलता है कि ऐसा नहीं किया गया।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत की तेजी से विकसित भरोसेमंद अर्थव्यवस्था और विश्व शक्ति बनने में राष्ट्र प्रथम का सिद्धांत प्रेरक बल। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने लखनऊ अलंकरण कांड में 4 अधिकारियों को निलंबित किया, 4 आरोपी गिरफ्तार। उर्वरक लेकर आ रहे 4 जहाज हॉर्मुज जलडमरू मध्य पार करने के बाद भारतीय बंदरगाहों की ओर बढ़े। और कैलिफोर्निया में आज से शुरू हो रहे यूएस ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट में लक्ष्य सेन और तन्वी शर्मा भारत की अगुवाई करेंगे। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Sunil Varma. The headlines. Prime Minister Narendra Modi says principle of nation first has been driving force behind India's transformation into a fast-growing, credible and reliable global power. President Draupadi Murmu to confer Padma Awards during second round of civil investiture ceremony at Rashtrapati Bhavan today. Uttar Pradesh government suspends 4 officials in connection with Lucknow fire incident. 4 accused arrested. 4 ships carrying fertilizers heading towards Indian ports after crossing Strait of Hormuz. Qatari authorities confirm death of 12 Indian nationals in Ras Laffan LNG explosion. And Lakshya Sen and Tanvi Sharma to lead India's challenge at US Open Super Badminton Tournament beginning today in California. Prime Minister Narendra Modi has said the principle of nation first has been the driving force behind India's transformation into a fast-growing, credible and reliable global power. Addressing a summit organized by a private media house in New Delhi, the Prime Minister said the country's achievements of the past decade were rooted in trust, stability and a commitment to the larger global good.
3: भारत फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी भी है, एक क्रेडिबल इकोनॉमी भी है, और भारत राइजिंग पावर के साथ साथ सुपर पावर तक ले गए। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि भारत रिलायबल पावर है। मैं अभी 2-3 दिन पहले जी समिट से लौटा हूं और दुनिया का हर नेता, हर देश इस बात को भली भांति समझता है कि आज के भारत के लिए नेशन फर्स्ट ही सबसे बड़ा मंत्र है, सबसे बड़ा सिद्धांत है।
2: Referring to his recent participation in the G7 summit, Mr. Modi said, world leaders recognize India's unwavering commitment to putting national interests first, a philosophy that continues to shape the country's policies and development agenda. Highlighting the government's 12 years in office, the Prime Minister said initiatives such as Swachh Bharat, Make in India, promotion of Khadi and support for local products succeeded because citizens embraced the spirit of nation building.
3: पिछले 12 वर्षों के जो भी सिद्धियां देश की रही हैं, उनके मूल में अगर आप तराजू से तोलोगे हर निर्णय, हर कदम, हर प्रयास, उनके मूल में राष्ट्र प्रथम की भावना ही केंद्र में है। स्वच्छ भारत अभियान से लेकर मेक इन इंडिया, खादी खरीदने पर जोर, स्थानीय वस्तुएं खरीदने पर जोर, ये सारे इनिशिएटिव इसलिए सफल हुए क्योंकि देश की जनता ने देश को सबसे ऊपर रखते हुए अपना कर्तव्य निभाया, देश के

0: the guise of employment opportunities in Uttarakhand. And with that, we end the Northeast News Bulletin from Akashvani Shillong. Have a nice day.
1: श्रोता दोस्तों, अभी आप बारी बारी से सुन रहे थे आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से प्रसारित समाचार प्रभात एवं मॉर्निंग न्यूज और आकाशवाणी शिलांग केंद्र से नॉर्थ ईस्ट न्यूज। आपको बता दूं, आप हमारे साथ बने हुए हैं एफएम बैंड के 103.1 मेगाहर्ट्ज पर, जहां होती है दिल से दिल की बात। चलिए दोस्तों, इसी के साथ ही अब वक्त हो चला है कार्यक्रम हेलो ईटानगर का।
2: हेलो ईटानगर।

नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज और मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त केजे कनिक और स्वागत करती हूं आप सभी श्रोताओं का ज्ञान और मनोरंजन से भरा हुआ कार्यक्रम हेलो ईटानगर में।

ईटानगर की खूबसूरत वादियों से लेकर अरुणाचल प्रदेश के हर कोने तक, जहां भी आप हमारी आवाज सुन रहे हैं, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज का दिन बहुत ही खास है क्योंकि हर साल 23 जून को इंटरनेशनल ओलंपिक डे मनाया जाता है। दोस्तों, ये दिन हमें याद दिलाता है कि खेल सिर्फ एक प्रतियोगिता नहीं बल्कि दोस्ती, सम्मान, एकता और शांति का प्रतीक है। इंटरनेशनल ओलंपिक डे की शुरुआत साल 1948 में की गई थी ताकि दुनिया भर के लोगों को स्पोर्ट्स और फिजिकल फिटनेस के प्रति जागरूक किया जा सके। दरअसल दोस्तों, 23 जून 1894 को पेरिस में इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी IOC की स्थापना हुई थी और इसी याद में हर साल ओलंपिक डे मनाया जाता है। दोस्तों, ओलंपिक्स दुनिया का सबसे बड़ा खेल महोत्सव माना जाता है, जहां अलग अलग देशों के खिलाड़ी एक ही मंच पर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करते हैं। लेकिन ओलंपिक्स का असली संदेश सिर्फ जीत या हार नहीं बल्कि भाग लेना, मेहनत करना और अपना सर्वश्रेष्ठ देना है।

दोस्तों आपको बता दूं, ओलंपिक मूवमेंट का एक बहुत ही सुंदर संदेश है कि द इम्पोर्टेंट थिंग इज नॉट टू विन बट टू टेक पार्ट। यानी सबसे महत्वपूर्ण बात जीतना नहीं बल्कि पूरी ईमानदारी और समर्पण के साथ भाग लेना है। आज के दिन दुनिया भर में लोग रनिंग इवेंट्स, साइकिलिंग, योगा सेशंस, फिटनेस वॉक्स और स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में हिस्सा लेते हैं। इसका उद्देश्य लोगों को एक एक्टिव और हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए प्रेरित करना है। दोस्तों आज के डिजिटल युग में हम सब अपने मोबाइल और कंप्यूटर स्क्रीन्स के सामने काफी समय बिता देते हैं। ऐसे में हर दिन कम से कम 30 मिनट किसी न किसी फिजिकल एक्टिविटी के लिए निकालना बहुत जरूरी है, चाहे वो मॉर्निंग वॉक हो, जॉगिंग हो, बैडमिंटन हो, फुटबॉल हो या फिर योगा ही क्यों ना हो। दोस्तों स्पोर्ट

समय सिर्फ शारीरिक रूप से ही मजबूत नहीं बनाते, बल्कि हमें अनुशासन, टीमवर्क, लीडरशिप और समय का महत्व भी सिखाते हैं। अरुणाचल प्रदेश के युवा भी खेलों में लगातार अपनी पहचान बना रहे हैं, ये हम सब के लिए गर्व की बात है। और दोस्तों, आज के दिन हम अपने राज्य और देश के सभी खिलाड़ियों को दिल से शुभकामनाएं देते हैं। कहते हैं, मंजिल उन्हीं को मिलते हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है।

दोस्तों, अगर आपके घर में बच्चे हैं तो उन्हें मोबाइल गेम्स के साथ साथ आउटडोर गेम्स के लिए भी प्रोत्साहित कीजिए। खेल बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाते हैं। इंटरनेशनल ओलंपिक डे हमें ये भी सिखाता है कि भले ही हम अलग अलग भाषाएं बोलते हो, अलग अलग संस्कृतियों से आते हो, लेकिन खेल हमें एक सूत्र में बांध देते हैं। यही ओलंपिक्स की असली खूबसूरती है। तो दोस्तों, आज के इस खास दिन पर आइए हम सब मिलकर एक संकल्प लें कि अपनी व्यस्त जिंदगी में से थोड़ा समय स्वास्थ्य और फिटनेस के लिए जरूर निकालेंगे और खेल भावना को अपने जीवन का हिस्सा बनाएंगे। मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त किचि कनिक और आप सुन रहे हैं ज्ञान और मनोरंजन से भरा हुआ कार्यक्रम हेलो ईटानगर, सिर्फ और सिर्फ अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर। चलिए दोस्तों, अब ओलंपिक डे के इस खास मौके को और भी खास बनाते हैं एक बेहतरीन गीत के साथ।

दोस्तों, इस गीत के साथ ही हेलो ईटानगर कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। आपको बता दूं, अब से कुछ ही देर बाद यानी 9 बजे आप सुन पाएंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र द्वारा प्रसारित हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के तेजी से विकसित भरोसेमंद अर्थव्यवस्था और विश्वसनीय विश्व शक्ति बनने में राष्ट्र प्रथम का सिद्धांत प्रेरक रहा है। नई दिल्ली में कल एक निजी सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कहा कि G7 शिखर सम्मेलन में विश्व नेताओं ने राष्ट्रीय हितों की प्राथमिकता देने की भारत की प्रतिबद्धता को समझा है। श्री मोदी ने कहा कि पिछले 12 वर्ष में स्वच्छ भारत, मेक इन इंडिया, खादी और स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने की पहल राष्ट्र निर्माण के लिए नागरिकों की प्रतिबद्धता से सफल हुई है।
1: पिछले 12 वर्षों के जो भी सिद्धियां देश की रही है उनके मूल में राष्ट्र प्रथम की भावना ही केंद्र में है। स्वच्छ भारत अभियान से लेकर मेक इन इंडिया, खादी खरीदने पर जोर, स्थानीय वस्तुएं खरीदने पर जोर, ये सारे इनिशिएटिव इसलिए सफल हुए क्योंकि देश की जनता ने देश को सबसे ऊपर रखते हुए अपना कर्तव्य निभाया।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि हाल के वर्षों में लगभग 25 करोड़ लोग गरीबी से उभरे हैं। श्री मोदी ने सस्ते आवास, कर सुधार, स्वास्थ्य देखभाल योजना और बेहतर शहरी बुनियादी ढांचे का उल्लेख किया। श्री मोदी ने कहा कि वंदे भारत, नमो भारत और अमृत भारत रेलगाड़ियां, विस्तारित राजमार्ग और हवाई अड्डों से संपर्क व्यवस्था में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने कल नई दिल्ली में ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 16वीं बैठक में चीन के विदेश मंत्री वांग यी के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। श्री डोभाल ने कहा कि भारत और चीन के बीच स्थिर, भरोसेमंद और सकारात्मक संबंध दोनों देशों के बीच विश्वास और बेहतर समझ को मजबूत करने में सहायता करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि बैठक में दोनों पक्षों ने हाल के घटनाक्रमों की समीक्षा की तथा सकारात्मक संबंधों की दिशा में हुई प्रगति पर संतोष व्यक्त किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। इस दौरान पद्म विभूषण, 7 पद्म भूषण और 56 पद्मश्री सहित कुल 65 पद्म अलंकरण दिए जाएंगे। सुविख्यात टेनिस खिलाड़ी विजय अमृतराज, अभिनेता ममूटी, पार्श्व गायिका अलका याग्निक और क्रिकेट खिलाड़ी रोहित शर्मा पद्म पुरस्कार पाने वालों में शामिल हैं। लखनऊ अग्निकांड में पुलिस ने 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। इनमें से 4 को कल रात गिरफ्तार कर लिया गया। अलीगंज के एक एनिमेशन कोचिंग सेंटर में हुए इस हादसे में 15 विद्यार्थियों की मौत हो गई और 9 अन्य घायल हो गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर लखनऊ विकास प्राधिकरण, अग्निशमन विभाग और विद्युत विभाग के 4 अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ नेफेड के नीलामी पोर्टल का शुभारंभ करेंगे। इस पोर्टल की शुरुआत नीलामी प्रक्रिया में पारदर्शिता, दक्षता और सुगमता बढ़ाने में महत्वपूर्ण कदम है। इससे नीलामी संबंधी गतिविधियों को सुगम बनाने और किसानों तथा कृषि संस्थानों के हित में नेफेड की कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म उपलब्ध होगा। कार्यक्रम के दौरान श्री अमित शाह कई महत्वपूर्ण डिजिटल और किसान केंद्रित पहलों का भी शुभारंभ करेंगे। यूरिया, डाई अमोनियम फॉस्फेट और सल्फर लेकर 4 भारतीय मालवाहक जहाज पिछले सप्ताह होर्मुज जलडमरू मध्य को सफलतापूर्वक पार कर चुके हैं। रसायन और उर्वरक मंत्रालय के अनुसार ये जहाज आंध्र प्रदेश के कृष्णापट्टनम और काकीनाड़ा बंदरगाह, ओडिशा के पारादीप बंदरगाह और गुजरात के मुंद्रा बंदरगाह की ओर बढ़ रहे हैं। दोहा में भारतीय दूतावास ने बताया है कि कतर के रास लाफान क्षेत्र में रविवार रात हुई दुर्घटना में 12 भारतीय नागरिकों की मौत की पुष्टि हुई है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने भारतीय नागरिकों सहित अन्य लोगों की मौत पर गहरा दुख व्यक्त किया।

0: In the opening match of London round of the FIH Pro League, Indian men's hockey team will take on arch rivals Pakistan today. This will be the first encounter between India and Pakistan since the Asian Champions Trophy clash in Ulaanbaatar, China in 2024, where India emerged victorious with a 2-1 win. And that is the end of this news bulletin.
1: श्रोता दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार। आपको बता दो, आप हमारे साथ बने हुए हैं अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर, जहां होती है दिल से दिल की बात। चलिए दोस्तों, इसी के साथ ही अब वक्त हो चला है कार्यक्रम फिल्मी गपशप का।

नमस्कार दोस्तों, अरन एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त किची कनिक। और अब वक्त हो चला है हम सबके पसंदीदा कार्यक्रम फिल्मी गपशप का। तो दोस्तों, चाय की चुस्कियों के साथ तैयार हो जाइए बॉलीवुड की ताजा खबरों और दिलचस्प किस्सों के लिए। दोस्तों, बॉलीवुड की दुनिया में हर दिन कुछ नया होता है। कभी किसी फिल्म की चर्चा, कभी किसी स्टार का अंदाज और कभी किसी रियलिटी शो का धमाका। और आज की पहली खबर भी कुछ ऐसी ही है।

दोस्तों, नेटफ्लिक्स के नए रियलिटी शो लोकअप सच या सजा का लॉन्च मुंबई में बड़े ही शानदार अंदाज में हुआ। इस इवेंट में रितेश देशमुख, फराह खान, एकता कपूर और नेटफ्लिक्स इंडिया की वाइस प्रेसिडेंट कंटेंट मोनिका शेरगिल मौजूद थे। इवेंट के दौरान मीडिया ने रितेश देशमुख से एक ऐसा सवाल पूछ लिया जिसने सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। सवाल था कि अगर सलमान खान और संजय दत्त को लॉकअप में कंटेस्टेंट बनाया जाए तो क्या वो उन्हें शो में देखना पसंद करेंगे और उन्हें किस तरह की सजा देंगे। अब सवाल में थोड़ा ह्यूमर था और थोड़ा कंट्रोवर्सी का तड़का भी, लेकिन रितेश ने अपनी हमेशा वाली स्मार्टनेस और सेंस ऑफ ह्यूमर के साथ इस सवाल को हैंडल किया था। रितेश वैसे भी बॉलीवुड के उन एक्टर्स में से है जो मुश्किल से मुश्किल सवाल का जवाब मुस्कुराते हुए देते हैं। दोस्तों, रियलिटी शोज का क्रेज दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। दर्शक स्टार्स को उनके असली अंदाज में देखना पसंद करते हैं। शायद इसी वजह से ऐसे शोज का एक्साइटमेंट हमेशा बना रहता है। दोस्तों, अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। तो बॉलीवुड के हैंडसम हंक रणवीर कपूर एक बार फिर फैंस का दिल जीत रहे हैं। हाल ही में जब रणवीर मुंबई में स्पॉट हुए तो उनका कैजुअल लुक सोशल मीडिया पर छा गया। रणवीर ने ब्लैक टी शर्ट पहनी हुई थी और उस टी शर्ट पर लिखा था माय वाइफ इज एन अल्फा। दोस्तों, फैंस ने तुरंत इस बात को नोटिस कर लिया। दरअसल ये आलिया भट्ट की अपकमिंग फिल्म अल्फा के लिए एक प्यारा सा सपोर्ट मैसेज था। रणवीर और आलिया बॉलीवुड के सबसे लव्ड कपल्स में से एक माने जाते हैं। दोनों अक्सर एक दूसरे की अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट करते नजर आते हैं और फैंस को उनकी ये बॉन्डिंग बहुत पसंद आती है। दोस्तों, ब्लैक कैप, सनग्लासेस और मैचिंग ट्रैक पैंट्स के साथ रणवीर का कूल लुक भी काफी वायरल हो रहा है। वो कहते हैं ना, प्यार लफ्जों से कम और एहसासों से ज्यादा बयां होता है, और रणवीर की ये टी शर्ट शायद वही एहसास बयां कर रही थी। दोस्तों, बात करते हैं बॉक्स ऑफिस की, जहां एक फिल्म ने धीरे धीरे ही सही लेकिन अपनी मजबूत पकड़ बना ली है। डायरेक्टर इम्तियाज अली की

मैं वापस आऊंगा ने बॉक्स ऑफिस पर सबको सरप्राइज कर दिया है। फिल्म की शुरुआत भले ही धीमी रही हो लेकिन पॉजिटिव रिव्यूज और ऑडियंस के प्यार ने इस फिल्म को एक नए रफ्तार दे दी है। फिल्म में नसीरुद्दीन शाह, दिलजीत दोसांझ, शर्वरी और वेदांग रैना जैसे शानदार कलाकार नजर आ रहे हैं। आज के दौर में जब किसी फिल्म का पहला वीकेंड ही उसकी तकदीर तय कर देता है, वही मैं वापस आऊंगा फिल्म ने ये साबित कर दिया कि अगर कहानी दिल को छू ले तो ऑडियंस उसे जरूर अपना लेती है। फिल्म ने रिलीज के 11 दिनों में 25 करोड़ रुपए से अधिक का कलेक्शन कर लिया है और सबसे खास बात ये रही कि फिल्म फ्राइडे को कलेक्शंस में जबरदस्त उछाल देखने को मिला। दोस्तों, ये कहना गलत नहीं होगा कि ऑडियंस का पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ किसी भी फिल्म के लिए सबसे बड़ी पब्लिसिटी होती है। और दोस्तों, फिल्म की सक्सेस से एक्ट्रेस शर्वरी भी काफी इमोशनल नजर आई। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक हार्टफेल्ट नोट शेयर करते हुए ऑडियंस का शुक्रिया अदा किया। शर्वरी ने लिखा कि जिस तरह दर्शकों ने फिल्म को अपनाया है उसके लिए वो दिल से आभारी है। और इसी बीच उनकी कोस्टार आलिया भट्ट ने भी फिल्म के लिए अपनी खुशी जाहिर की और पूरी टीम को बधाई दी। बॉलीवुड में हेल्दी कंपटीशन के साथ साथ एक दूसरे को सपोर्ट करने की परंपरा भी हमेशा से रही है। जब स्टार्स एक दूसरे की अचीवमेंट सेलिब्रेट करते हैं तो फैंस को भी बहुत अच्छा लगता है। और दोस्तों, फिल्म के डायरेक्टर इम्तियाज अली ने भी कहा कि वो फिल्म की ग्रोथ देखकर काफी खुश और थोड़े हैरान हैं। उन्होंने माना कि ऑडियंस का प्यार ही किसी भी फिल्म मेकर के लिए सबसे बड़ा अवार्ड होता है। और दोस्तों, वैसे भी इम्तियाज अली की फिल्मों में इमोशंस, रिलेशनशिप्स और जिंदगी के खूबसूरत पहलुओं को बहुत ही खूबसूरती से दिखाया जाता है। शायद इसी वजह से उनकी फिल्में सीधा दिल तक पहुंच जाती है। तो आइए दोस्तों, इसी के साथ ही ले लेते हैं एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक। ब्रेक के बाद हम कंटिन्यू करेंगे फिल्मी गपशप को। इसी के साथ ही आपको सुनवाते हैं मैं वापस आऊंगा फिल्म का एक बहुत ही खूबसूरत गीत।

दोस्तों आइए अब बात करते हैं इस हफ्ते के सबसे चर्चित रिलीज फिल्म कॉकटेल 2 की। शाहिद कपूर, कृति सेनन और रश्मिका मंदाना स्टेरर ये फिल्म थिएटर्स में जबरदस्त परफॉर्मेंस कर रही है। फिल्म ने सिर्फ 4 दिनों में लगभग 53.85 करोड़ का इंडिया नेट कलेक्शन और करीब 85 करोड़ का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन कर लिया है। मिक्स रिव्यूज के बावजूद ऑडियंस को फिल्म का रोमांस, म्यूजिक और ग्लैमरस वाइब काफी पसंद आ रही है। ट्रेड एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर वीकडेज में भी फिल्म ने अपनी पकड़ बनाए रखी तो ये जल्द ही 100 करोड़ क्लब की तरफ बढ़ सकते हैं। और दोस्तों जून 2024 बॉलीवुड के लिए काफी बिजी महीना रहा है। कई बड़ी फिल्में एक के बाद एक रिलीज हुई है जिसके चलते थिएटर्स में जबरदस्त कंपटीशन देखने को मिल रहा है। इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स के मुताबिक जून महीना बॉलीवुड के सबसे कम्पिटिटिव मंथ्स में से एक बन गया है। दोस्तों बात करते हैं वरुण धवन की कॉमेडी एंटरटेनर है जवानी तो इश्क होना है की। तो दोस्तों फिल्म ने रिलीज के 12 दिनों में वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर 70 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन कर लिया है। डेविड धवन और वरुण धवन के फादर सन जोड़ी ने एक बार फिर ऑडियंस को एंटरटेन करने में कामयाब रही है। फिल्म के कॉमेडी सीन्स और कैची सॉन्ग्स लोगों को काफी पसंद आ रहा है। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं सेलेब गॉसिप की तरफ। तो आपको बता दूं वेटरन एक्टर ममोटी के फैंस के लिए भी एक खास खबर है। आज उन्हें उनके सिनेमा में योगदान के लिए पद्म भूषण सम्मान से नवाजा जा रहा है। उनके साथ उनके बेटे दुलकर सलमान और पूरा परिवार भी इस खास मौके पर मौजूद है। फिल्म इंडस्ट्री के लिए यह बहुत गर्व की बात है। वही दोस्तों एक्टर पंकज त्रिपाठी के परिवार से जुड़ी एक चिंताजनक खबर सामने आई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक उनके भाई पर बिहार में हमला हुआ जिसके बाद पुलिस ने मामले की जांच तेज कर दी है। फैंस एक्टर और उनके परिवार के लिए दुआ कर रहे हैं। और दोस्तों जाते जाते एक इंटरेस्टिंग अपडेट दे के जाते हैं कि एक्ट्रेस कल्कि ने मुंबई में अपना फ्लैट बेचा है और रिपोर्ट्स के मुताबिक इस डील से उन्हें अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ है। बॉलीवुड स्टार्स के लिए स्टेट इन्वेस्टमेंट हमेशा की तरह फैंस की क्यूरियोसिटी का सेंटर बने रहते हैं। तो दोस्तों आज के फिल्मी गपशप में इतना ही। बॉलीवुड की दुनिया में कहानियां भी है, इमोशंस भी है और एंटरटेनमेंट का फुल ऑन तड़का भी। मैं हूँ आपकी रेडियो दोस्त किची कनिक, आपसे इजाजत लेती हूँ। मुस्कुराते रहिए, गाते रहिए और सुनते रहे अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज। चलिए दोस्तों अब वक्त है एक और जबरदस्त फिल्मी गाने का।

दोस्तों इसी के साथ ही कार्यक्रम फिल्मी गपशप यहीं पर समाप्त होता है। आपको बता दूं अब से कुछ ही देर बाद आप सुन पाएंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के तेजी से विकसित भरोसेमंद अर्थव्यवस्था और विश्वसनीय विश्व शक्ति बनने में राष्ट्र प्रथम का सिद्धांत प्रेरक रहा है। नई दिल्ली में कल एक सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कहा कि G7 शिखर सम्मेलन में विश्व नेताओं ने राष्ट्रीय हितों की प्राथमिकता देने की भारत की प्रतिबद्धता को समझा है। श्री मोदी ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में स्वच्छ भारत, मेक इन इंडिया, खादी और स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने की पहल राष्ट्र निर्माण के लिए नागरिकों की प्रतिबद्धता से सफल हुई है।
1: पिछले 12 वर्षों के जो भी सिद्धियां देश की रही है उनके मूल में राष्ट्र प्रथम की भावना ही केंद्र में है। स्वच्छ भारत अभियान से लेकर मेक इन इंडिया, खादी खरीदने पर जोर, स्थानीय वस्तुएं खरीदने पर जोर, ये सारे इनिशिएटिव इसलिए सफल हुए क्योंकि देश की जनता ने देश को सबसे ऊपर रखते हुए अपना कर्तव्य निभाया।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि हाल के वर्षों में लगभग 25 करोड़ लोग गरीबी से उभरे हैं। श्री मोदी ने सस्ते आवास, कर सुधार, स्वास्थ्य देखभाल योजना और बेहतर शहरी बुनियादी ढांचा का उल्लेख किया। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने नई दिल्ली में 16वीं ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक के दौरान चीन के विदेश मंत्री वांग यी के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। कल हुई इस बैठक में दोनों देशों के संबंधों को सामान्य बनाने की दिशा में हुई प्रगति सहित आपसी सहयोग के महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने हाल के घटनाक्रमों की समीक्षा की तथा सकारात्मक संबंधों की दिशा में हुई प्रगति पर संतोष व्यक्त किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। इस दौरान 2 पद्म विभूषण, 7 पद्म भूषण और 56 पद्मश्री सहित कुल 65 पद्म अलंकरण दिए जाएंगे। सुविख्यात टेनिस खिलाड़ी विजय अमृतराज, अभिनेता ममूटी, पार्श्व गायिका अलका याग्निक और क्रिकेट खिलाड़ी रोहित शर्मा पद्म पुरस्कार पाने वालों में शामिल हैं। लखनऊ आग हादसे में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है और इनमें से 4 को कल रात गिरफ्तार कर लिया गया। अलीगंज के एक एनिमेशन कोचिंग सेंटर में हुए इस हादसे में 15 विद्यार्थियों की मौत हो गई और 9 घायल हो गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर लखनऊ विकास प्राधिकरण, अग्निशमन विभाग और विद्युत विभाग के 4 अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ नेफेड के नीलामी पोर्टल का शुभारंभ करेंगे। इस पोर्टल की शुरुआत नीलामी प्रक्रिया में पारदर्शिता, दक्षता और सुगमता बढ़ाने में महत्वपूर्ण कदम है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते से भारतीय किसानों, मछुआरों, कारीगरों और छोटे व्यापारियों को वैश्विक स्तर पर कारोबार करने में मदद मिलेगी। इससे रोजगार सृजन भी बढ़ेगा। एक अंग्रेजी दैनिक के लिए लिखे गए आलेख में वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने कहा कि इस वर्ष 15 जुलाई से लागू होने वाला ये समझौता ब्रिटेन में भारतीय सामानों की पहुंच बढ़ाएगा। यूरिया, डाई अमोनियम फॉस्फेट और सल्फर लेकर आ रहे 4 भारतीय मालवाहक जहाज पिछले सप्ताह होर्मुज जल डमरू मध्य को सफलतापूर्वक पार कर चुके हैं। रसायन और उर्वरक मंत्रालय के अनुसार ये जहाज अब देश के विभिन्न बंदरगाहों की ओर बढ़ रहे हैं। इनमें आंध्र प्रदेश के कृष्णापट्टनम और काकीनाड़ा बंदरगाह, ओडिशा का पारादीप बंदरगाह और गुजरात का मुंद्रा बंदरगाह शामिल है। फीफा विश्व कप 2026 में अमेरिका के फिलाडेल्फिया में ग्रुप आई के मुकाबले में फ्रांस ने इराक को 3-0 से हरा दिया। इसके साथ ही फ्रांस के नॉकआउट चरण में पहुंचने का रास्ता साफ हो गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं आपका पसंदीदा कार्यक्रम रेडियो ऑन डिमांड, जहां आपकी पसंद और आपकी फरमाइश बन जाती है हमारी पेशकश। मैं हूं आपकी रेडियो साथी गिची कनिक और अब वक्त हो चला है आज की पहली म्यूजिकल फरमाइश का। दोस्तों, ये खूबसूरत गीत हमें भेजा है टेंसन क्रो और सरलोए क्रो ने, जो हमें सुन रहे हैं लंकंगसम विलेज कार्बी आंगलोंग डिस्ट्रिक्ट से। और आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए। दोस्तों, जब जिंदगी में पहली बार दिल किसी के लिए धड़कता है तो उस एहसास की मिठास ही कुछ और होती है, लेकिन कभी कभी पहले प्यार के साथ पहला गम भी जुड़ा होता है, जो जिंदगी भर एक याद बनकर दिल के किसी कोने में बसा रहता है। इसी जज्बात को बेहद खूबसूरती से बयां करता है अगला गीत। तो चलिए टेंसन क्रो और सरलोए क्रो की इस प्यारे से फरमाइश को पूरा करते हैं और सुनते हैं कविता कृष्णमूर्ति की मधुर आवाज में दिल को छू लेने वाला ये गीत फिल्म पापा कहते हैं इसे। आइए दोस्तों, सुनिए, महसूस कीजिए और यादों के सफर पर निकल चलिए एफएम बैंड के 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर।

दोस्तों, रेडियो ऑन डिमांड में सिलसिला जारी है आपके पसंद और आपके फरमाइशों का। अब हमें एक प्यारा सा संदेश मिला है गुम्मे माई बागरा और जुमकर बागरा जी की तरफ से, जो हमें सुन रहे हैं हिगी विलेज से। दोस्तों, उन्होंने बताया कि कल नेटवर्क के पोर सिग्नल की वजह से वो रेडियो ऑन डिमांड का कार्यक्रम मिस कर गए थे, लेकिन कहते हैं ना, अगर दिल में कोई ख्वाहिश हो तो वो जरूर पूरी होती है, और आज वही ख्वाहिश लेकर वो एक बार फिर हमारे साथ जुड़े हैं। दोस्तों, मोहब्बत जब सच्ची हो तो उसमें खुशी भी होती है और इंतजार भी, और कभी कभी प्यार की गहराई इंसान को हर हद से गुजरने पर मजबूर कर देती है। ऐसे ही जज्बातों से भरा हुआ है फिल्म फूल और अंगार का ये दिलकश गीत। तो चलिए गुम्मे माई बागरा और जुमकर बागरा की फरमाइश को पूरा करते हुए सुनते हैं कुमार सानू और साधना सरगम की सुरीली आवाजों में ये खूबसूरत नगमा।

0: आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज दिल से दिल की बात।
1: चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं अगले सॉन्ग रिक्वेस्ट की ओर और आपको बता दो अगले फरमाइश भेजी है रोमेश पत्रो, रुन्नू पत्रो और लकी ने, जो कि घोलाघाट आसाम के रहने वाले हैं। और दोस्तों उन्होंने ये अगला गीत डेडिकेट किया है उनके सभी दोस्तों के नाम और उन्हें सुनना है फिल्म जीने की राह से मोहम्मद रफी की आवाज में एक बहुत ही खूबसूरत गीत।

दोस्तों, रेडियो डिमांड में आपकी फरमाइशों का खूबसूरत सफर यूं ही जारी है। अब बारी है एक और प्यारे से गीत की फरमाइश की, जो हमें भेजी है जोगेंद्र रोंगपी, सोनाली इंटीपी और दोरम किरी रोंगपी ने। दोस्तों, इन्होंने इस गीत को अपने खास दोस्तों अमल बसुमतरी, बॉयकॉन मुंडा, रमेश पत्रो और लोकीनाथ रोंगांग के नाम डेडिकेट किया है। साथ ही ये गीत डेडिकेट किया गया है अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज के सभी आरजे साथियों और इस वक्त रेडियो के साथ जुड़े हर एक श्रोता के लिए। दोस्ती और अपनापन जिंदगी के वो अनमोल रिश्ते हैं जो हर खुशी को दुगना और हर मुश्किल को आधा कर देते हैं। और जब किसी गीत के साथ दोस्तों की यादें जुड़ जाए तो

उसकी मिठास और भी बढ़ जाती है। तो चलिए दोस्तों, जोगेंद्र रोंगपी, सोनाली इंटीपी और दोरोंगकिरी रोंगपी की इस प्यारी सी भेंट को कबूल करते हैं और सुनते हैं अगला गीत। और ये गीत जा रहा है उनके सभी दोस्तों, अरुण एफएम के आरजे परिवार और हमारे प्यारे श्रोताओं के नाम।

0: लोग, यहाँ का खेल खत्म। अब हम जाएंगे अपने आशिक के घर और नाचेंगे उनके घर के सामने।
1: क्या कहा?
0: अरे चुप रे बुड्ढे, चलना हो तो चल, नहीं तो हम जाते हैं।
1: टैक्सी।

0: 6887808 पर और सुनिए अपनी पसंद का गाना सिर्फ और सिर्फ अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर सुबह के 10:10 से सुबह के 11 बजे तक।
1: रेडियो ऑन डिमांड सुबह के 10:10 से सिर्फ और सिर्फ अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर। जी हाँ दोस्तों, एसएमएस के जरिए भी आप अपने मनपसंद गीतों का रिक्वेस्ट हमें भेज सकते हैं 9436887808 पर। जी हाँ, हमारा फोन नंबर है 9436887808। इस नंबर पर हमें आपके एसएमएस का इंतजार रहेगा।

दोस्तों, अब हमें एक प्यारी सी फरमाइश मिली है आरफ की तरफ से। आरफ ने इस गीत को बड़े प्यार के साथ डेडिकेट किया है सोनी एफएम रेडियो फैमिली के नाम। और दोस्तों, रेडियो सिर्फ मनोरंजन का साधन ही नहीं बल्कि दिलों को जोड़ने वाला एक खूबसूरत रिश्ता भी है। आरजे और श्रोता मिलकर एक ऐसा परिवार बना देते हैं जहां सुरों के साथ साथ अपनापन भी गूंजता है। और जब किसी गीत के साथ इतना प्यारा संदेश जुड़ा हो तो उसकी बात ही कुछ और हो जाती है। तो चलिए दोस्तों, आरब की इस खास फरमाइश को सोनी एफएम रेडियो फैमिली तक पहुंचाते हैं और सुनते हैं अगला दिलकश नगमा फिल्म बॉर्डर 2 से।

दोस्तों, आइए रेडियो ऑन डिमांड कार्यक्रम का आखिरी फरमाइश लेते हैं। और आपको बता दूं, इस गीत की फरमाइश की है अंजलि बसुमतारी ने, और उन्हें सुनना है फिल्म कृष्णा कोतेज का एक बहुत ही प्यारा सा गीत श्रेया घोषाल की आवाज में।

तो दोस्तों इसी के साथ ही आज का हमारा रेडियो ऑन डिमांड कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। आप हमें सुन रहे हैं आकाशवाणी ईटानगर केंद्र के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर, जहां होती है दिल से दिल की बात। श्रोताओं इसी के साथ ही हमारी पहली प्रसारण सभा भी यहीं पर समाप्त होती है। आपको बता दूं अब से कुछ ही देर बाद यानी 11 बजे आप सुन पाएंगे आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार। जाते जाते आपको बताना चाहेंगे कि आपके दिन को और भी खुशनुमा बनाने के लिए हमारी दूसरी प्रसारण सभा में आपके साथ जुड़ेगी आपकी अपनी आरजे नूरी। तो अब आप मुझे यानी आपकी रेडियो साथी गिची कनिक और स्टूडियो तथा एचपीटी में मौजूद तमाम सहकर्मियों सहित प्रसारण निष्पादक पी दोले तथा तकनीकी अभियंता विमल शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार, शुभ दिन।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के तेजी से विकसित भरोसेमंद अर्थव्यवस्था और विश्वसनीय विश्व शक्ति बनने में राष्ट्र प्रथम का सिद्धांत प्रेरक रहा है। नई दिल्ली में कल एक सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कहा कि G7 शिखर सम्मेलन में विश्व नेताओं ने राष्ट्र हितों की प्राथमिकता देने की भारत की प्रतिबद्धता को समझा है। श्री मोदी ने कहा कि पिछले 12 वर्षों की उपलब्धियां नागरिकों की प्रतिबद्धता से हासिल हुई हैं।
1: पिछले 12 वर्षों के जो भी सिद्धियां देश की रही है उनके

0: में राष्ट्र प्रथम की भावना ही केंद्र में है। स्वच्छ भारत अभियान से लेकर मेक इन इंडिया, खादी खरीदने पर जोर, स्थानीय वस्तुएं खरीदने पर जोर, ये सारे इनिशिएटिव इसलिए सफल हुए क्योंकि देश की जनता ने देश को सबसे ऊपर रखते हुए अपना कर्तव्य निभाया।
1: राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने नई दिल्ली में 16वें ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक के दौरान चीन के विदेश मंत्री वांग यी के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। कल हुई इस बैठक में दोनों देशों के संबंधों को सामान्य बनाने की दिशा में हुई प्रगति सहित आपसी सहयोग के महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने हाल के घटनाक्रमों की समीक्षा की तथा सकारात्मक संबंधों की दिशा में हुई प्रगति पर संतोष व्यक्त किया। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते से भारतीय किसानों, मछुआरों, कारीगरों और छोटे व्यापारियों को वैश्विक स्तर पर कारोबार करने में मदद मिलेगी। इससे रोजगार सृजन भी बढ़ेगा। एक अंग्रेजी दैनिक के लिए लिखे गए आलेख में वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने कहा कि इस वर्ष 15 जुलाई से लागू होने वाला ये समझौता ब्रिटेन में भारतीय सामानों की पहुंच बढ़ाएगा। उन्होंने कहा कि इससे लगभग 99% शुल्क तुरंत समाप्त हो जाएंगे और भारत से निर्यात बढ़ेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। इस दौरान 2 पद्म विभूषण, 7 पद्म भूषण और 56 पद्मश्री सहित कुल 65 पद्म अलंकरण दिए जाएंगे। सुविख्यात टेनिस खिलाड़ी विजय अमृतराज, अभिनेता ममूटी, पार्श्व गायिका अलका याग्निक और क्रिकेट खिलाड़ी रोहित शर्मा पद्म पुरस्कार पाने वालों में शामिल हैं। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ नेफेड के नीलामी पोर्टल का शुभारंभ करेंगे। इस पोर्टल की शुरुआत नीलामी प्रक्रिया में पारदर्शिता, दक्षता और सुगमता बढ़ाने में महत्वपूर्ण कदम है। लखनऊ आग की घटना में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है और इनमें से 4 को कल रात गिरफ्तार कर लिया गया। अलीगंज के एक एनिमेशन कोचिंग सेंटर में हुए इस हादसे में 15 विद्यार्थियों की मौत हो गई और 9 घायल हो गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर लखनऊ विकास प्राधिकरण, अग्निशमन विभाग और विद्युत विभाग के 4 अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। यूरिया, डाई अमोनिया फॉस्फेट और सल्फर लेकर आ रहे 4 भारतीय मालवाहक जहाज पिछले सप्ताह होर्मुज जलडमरू मध्य को सफलतापूर्वक पार कर चुके हैं। रसायन और उर्वरक मंत्रालय के अनुसार ये जहाज अब देश के विभिन्न बंदरगाहों की ओर बढ़ रहे हैं। इनमें आंध्र प्रदेश के कृष्णापट्टनम और काकीनाडा बंदरगाह, ओडिशा का पारादीप बंदरगाह और गुजरात का मुंद्रा बंदरगाह शामिल हैं। अल्पसंख्यक कार्य और मत्स्य पशुपालन तथा डेयरी राज्य मंत्री जॉर्ज कुरियन ने केंद्रीय मंत्री परिषद से इस्तीफा दे दिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तत्काल प्रभाव से उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। घरेलू शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज शुरुआती कारोबार में बिना किसी उतार चढ़ाव के खुला। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 20 अंक की बढ़त के साथ 77,116 पर, जबकि निफ्टी 24,098 पर बना हुआ था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय सुनील वर्मा। Prime Minister Narendra Modi has said the principle of nation first has been the driving force behind India's transformation into a fast-growing, credible and reliable global power. Addressing a summit in New Delhi last night, the Prime Minister said the country's achievements over the past decade were rooted in trust, stability and a commitment to the larger global good.
0: भारत फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी भी है, एक क्रेडिबल इकोनॉमी भी है और भारत राइजिंग पावर के साथ साथ सुपर पावर तक ले गए। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि भारत रिलायबल पावर है।

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 MHz।
2: मेरे प्यारे श्रोता दोस्तों, सुबह का खूबसूरत समय नई ऊर्जा नई उम्मीदों और सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ रहा है और इसी उत्साह के साथ अब शुरू हो रहा है हमारी द्वितीय प्रसारण सभा की मनोरंजक और संगीतमय यात्रा आरजे नूरी के साथ। सबसे पहले हम अपनी ओर से दिल से धन्यवाद देना चाहेंगे आरजे केचे कर्णी को, जिन्होंने अपनी शानदार प्रस्तुति के बाद बड़े आत्मीय भाव से स्टूडियो की जिम्मेदारी हमें सौंपी। उनकी

सहयोग और स्नेहपूर्ण साथ के लिए हम उनके प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं. वी आर वेरी वेरी ग्रेटफुल टू आरजे कानिक फॉर ग्रेसफुली हैंडिंग ओवर द स्टूडियो टू अस. दोस्तों, हमारे इस सुनहरे सफर में अगले कुछ घंटों तक आपका साथ निभाएंगे, यानी आपके साथ होंगे मैं यानी आरजे नूरी और साथ ही प्रसारण अधिकारी तेतांगजंग तथा तकनीकी अभियंता रितेश सिंह, और इसी खूबसूरत सफर को आप तक पहुंचाने में हमारी मदद करेंगे. तो तैयार हो जाइए संगीत मनोरंजन और सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर एक शानदार सफर अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर. दोस्तों, आज की इस यात्रा की शुरुआत हमेशा की तरह फिल्मी लहर से करेंगे, जिसमें हम सुनेंगे हिंदी सिनेमा के सदाबहार और लोकप्रिय गीतों का मनमोहक गुलदस्ता और साथ ही साथ कुछ लाइफ लेसन्स. दोस्तों, जिंदगी में लाइफ लेसन्स बहुत जरूरी है. कभी कभी हम ये सोचते ना कि हमने स्कूल में सब सीख लिया, सब हो गया. ऐसा नहीं है. जिंदगी में हर दिन किसी न किसी से, किसी न किसी चीज से, इंसिडेंट से या किताब से कई बातें सीखते हैं. चलिए आगे अनफोल्ड करते हैं कई सारे गीत और लाइफ लेसन्स फिल्मी लहर में. शुरू करेंगे एक खूबसूरत गीत के साथ.

दोस्तों आरजे नूरी के साथ आकाशवाणी के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर इस वक्त आप आनंद उठा रहे हैं फिल्मी लहर जहां पैसा बोलता है। जी हां दोस्तों, फिल्मी लहर यानी कि हिंदी सिनेमा और मनी यानी कि पैसा, एक ऐसा रिश्ता जहां हमें फिल्मों में ये दिखाया जाता है कि पैसा बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन पैसा अक्सर इंसान की हैसियत और पहचान का पैमाना बांधा जाता है। लेकिन गीत के बोल बड़े अंदाज और

इस अंदाज में बताते हैं कि धन का प्रभाव जीवन के लगभग हर क्षेत्र में दिखाई देता है। और इस गीत के माध्यम से हमें ये बताया जा रहा है कि किस तरह से पैसा जरूरत है, लेकिन जरूरत से अगर आगे बढ़ जाए तो वो इंसान को शैतान बनाने से भी नहीं पीछे हटता। तो दोस्तों, आपने कभी ये सोचा है कि आखिरी बार आपने अपने लिए क्या खरीदा था, और उसमें भी जरूरी सवाल, क्या यह फैसला, यानी कि उस चीज को और उस सामान को अपने लिए खरीदने का फैसला आपने अपनी इच्छा से लिया था या बजट और परिस्थितियों यानी कि सिचुएशन को देख कर लिया था। दोस्तों, हम अक्सर सुनते हैं कि पैसा सब कुछ नहीं होता। बिल्कुल सही बात है, लेकिन यह भी उतना ही सच है कि अपने पैसों को समझना, उन्हें संभालना और अपने फैसले खुद लेना हमें एक अलग तरह का आत्मविश्वास देता है। जी, अपने पैसों को समझना, उसे संभालना और उसे सेव करना, इन्वेस्ट करना, अगर हमें ये आ जाए तो नेचुरली कॉन्फिडेंस बढ़ता है। दोस्तों, मैं आप सब के साथ एक बात शेयर करना चाहती हूं। यह है एक पुस्तक, यानी कि डियर वुमेन वी नीड टू टॉक मनी, एक बेहद ही प्रेरणादायक यानी कि इंस्पायरिंग किताब है। और जब मैंने इस किताब को अपने दोस्तों को दिखाया तो उन्होंने बोला कि व्हाई ओनली वुमेन, दिस बुक इज फॉर मेन ऑल्सो। जी हाँ, बिल्कुल, लेकिन हिंदुस्तान में ना महिलाओं को बस घर संभालने के लिए रखा जाता है, पैसों की बात मर्द करते हैं, यानी कि घर का आदमी करता है। आदमी जितना पैसा देता है वो बस वही खर्च करता है। लेकिन अगर जिस दिन पैसों को समझना, उसे संभालना महिलाओं को आ जाए तो देश और भी आगे बढ़ेगा। और मेरे दोस्त ने यही कहा कि पैसों को समझना केवल मर्दों को नहीं बल्कि महिलाओं को भी समझना चाहिए, और ये किताब इसलिए मर्दों के लिए भी है, यानी कि फॉर मेन ऑल्सो। सो डियर लिसनर्स, अगर आप सुन रहे हैं फिल्मी लहर मनी टॉक्स आज का ये एपिसोड आरजे नूरी के साथ, तो जरूर पढ़िए डियर वुमेन वी नीड टू टॉक मनी, ये नेशनल फाइनेंस ओलंपियड के द्वारा प्रस्तुत है। जरूर पढ़िए। हर छोटी छोटी चीजें जो हम इग्नोर कर देते हैं जिंदगी में, उसे भी बड़े बारीकी से लिखा है। एफडीज, आरडीज, और किस तरह से म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, स्टॉक मार्केट में कैसे करें, कहां रिस्क है कहां नहीं है, बहुत ही बढ़िया तरीके से दिया गया है। आप जरूर पढ़े। मेरे अंदर तो काफी कॉन्फिडेंस बढ़ गया इस किताब को पढ़ने के बाद। श्रोता दोस्तों, कमिंग बैक टू फिल्मी लहर, सुनते हैं एक और मनी टॉक सॉन्ग।

तो दोस्तों इसी गीत के साथ ही फिल्मी लहर मनी टॉक्स यहीं पे समाप्त होता है। अब कुछ ही पलों में यानी कि अभी आप सुन पाएंगे वेस्टर्न मेलोडीज यानी कि पाश्चात्य संगीत पर आधारित कार्यक्रम वेस्टर्न मेलोडीज। बने रहे आकाशवाणी के रेन एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पे, जहां हम करेंगे ढेर सारी बातें जिंदगी के और उससे जुड़ी गानों की, क्योंकि करते हैं दिल से दिल की बात गीतों के माध्यम से। अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ आकाशवाणी के ईटानगर केंद्र से।

राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने आज सुरक्षा से जुड़े नए खतरों और चुनौतियों के प्रति जागरूक रहने की आवश्यकता पर बल दिया। नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 16वीं बैठक में श्री डोभाल ने कहा कि गैर पारंपरिक खतरे अब राष्ट्रीय सीमाओं से आगे निकल गए हैं। उन्होंने कहा कि नई तकनीक, आतंकवाद के छिपे हुए रूप और साइबर खतरे तेजी से डिजिटल होते जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस बैठक में मुख्य रूप से गैर पारंपरिक सुरक्षा चुनौतियों पर चर्चा होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। इस दौरान 2 पद्म विभूषण, 7 पद्म भूषण और 56 पद्मश्री सहित कुल 65 पद्म अलंकरण दिए जाएंगे। सुविख्यात टेनिस खिलाड़ी विजय अमृतराज, अभिनेता ममूटी, पार्श्व गायिका अलका याग्निक और क्रिकेट खिलाड़ी रोहित शर्मा पद्म पुरस्कार पाने वालों में शामिल हैं। आकाशवाणी अपने विशेष कार्यक्रम पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी के अंतर्गत विशेष कार्यक्रम प्रसारित कर रहा है। इस श्रृंखला के माध्यम से श्रोताओं को पद्म पुरस्कार विजेताओं के जीवन और उनके योगदान की जानकारी मिल रही है। ये कार्यक्रम आज 100.1 आकाशवाणी गोल्ड पर प्रसारित होगा। इन्हें न्यूज ऑन AIR ऐप और न्यूज ऑन AIR के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर भी सुना जा सकता है।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के तेजी से विकसित भरोसेमंद अर्थव्यवस्था और विश्वसनीय विश्व शक्ति बनने में राष्ट्र प्रथम का सिद्धांत प्रेरक रहा है। नई दिल्ली में कल एक सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कहा कि G7 शिखर सम्मेलन में विश्व नेताओं ने राष्ट्रीय हितों की प्राथमिकता देने की भारत की प्रतिबद्धता को समझा है। श्री मोदी ने कहा कि पिछले 12 वर्ष की नागरिकों की प्रतिबद्धता से उपलब्धियां हासिल हुई हैं।
1: पिछले 12 वर्षों के जो भी सिद्धियां देश की रही है उनके मूल में राष्ट्र प्रथम की भावना ही केंद्र में है। स्वच्छ भारत अभियान से लेकर मेक इन इंडिया, खादी खरीदने पर जोर, स्थानीय वस्तुएं खरीदने पर जोर, ये सारे इनिशिएटिव इसलिए सफल हुए क्योंकि देश की जनता ने देश को सबसे ऊपर रखते हुए अपना कर्तव्य निभाया।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते से भारतीय किसानों, मछुआरों, कारीगरों और छोटे व्यापारियों को वैश्विक स्तर पर कारोबार करने में मदद मिलेगी। इससे रोजगार सृजन भी बढ़ेगा। एक अंग्रेजी दैनिक के लिए लिखे गए आलेख में वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने कहा कि इस वर्ष 15 जुलाई से लागू होने वाला ये समझौता ब्रिटेन में भारतीय सामानों की पहुंच बढ़ाएगा। उन्होंने कहा कि इससे लगभग 99% शुल्क तुरंत समाप्त हो जाएंगे और भारत से निर्यात बढ़ेगा। अल्पसंख्यक कार्य और मत्स्य पशुपालन तथा डेयरी राज्य मंत्री जॉर्ज कुरियन ने केंद्रीय मंत्री परिषद से इस्तीफा दे दिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तत्काल प्रभाव से उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। प्रवर्तन निदेशालय कथित शिक्षक भर्ती परीक्षा में धोखाधड़ी मामले में चेन्नई, तिरुचिरापल्ली, कोयम्बटूर और मदुरई में 18 परिसरों पर तलाश अभियान चला रहा है। निदेशालय ने बताया कि ये कार्रवाई केंद्रीय अपराध शाखा द्वारा वर्ष 2017 में दर्ज की गई प्राथमिकी पर आधारित है। पुलिस ने इस मामले में 2021 में आरोप पत्र दाखिल किया था। लखनऊ आग की घटना में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है और इनमें से 4 को कल रात गिरफ्तार कर लिया गया। अलीगंज के एक एनिमेशन कोचिंग सेंटर में हुए इस हादसे में 15 विद्यार्थियों की मौत हो गई और 9 घायल हो गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर लखनऊ विकास प्राधिकरण, अग्निशमन विभाग और विद्युत विभाग के 4 अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज मामूली गिरावट दर्ज की गई। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 254 अंक गिरकर 76,840 पर, जबकि निफ्टी 90 अंक की गिरावट के साथ 24,013 पर कारोबार कर रहा था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

श्रोता दोस्तों, यह आकाशवाणी का अरुणा 103.1 मेगाहर्ट्ज़ से जहां होती है दिल से दिल की बात गीतों के माध्यम से। और इस वक्त 12:10 हो रहे हैं और इसी के साथ ही हम आपके लिए पेश कर रहे हैं बेहद ही खास कार्यक्रम। दोस्तों, दिन की हलचल और व्यस्तताओं के बीच अब समय है कुछ ऐसे लम्हों का जो दिल को सुकून दे, एहसासों को शब्द दे और रूह को संगीत की मिठास से भर दे। जी हाँ दोस्तों, गजल केवल शायरी नहीं होती बल्कि जज्बातों का वह आईना है जिसमें मोहब्बत, तन्हाई, उम्मीद, ख्वाब और जिंदगी के अनगिनत रंग झलकते हैं। हर शेर एक कहानी कहता है और हर गजल दिल की किसी अनकही बात को आवाज देती है। तो आइए अगले कुछ मिनट डूब जाते हैं सुरों और अल्फाज की उस हसीन दुनिया में जहां हर नगमा दिल से निकलकर सीधे दिल तक पहुंचता है। दोस्तों, मैं आपको याद दिला दूं कि सफर में मैं हूं आप सबके साथ, रेडियो साथी आरजे नूरी और आपका चहेता चैनल अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

0: श्रोतलो साहब आनंद उठा रहे थे कार्यक्रम गजल। तो दोस्तों, गजलों की इस खूबसूरत महफिल से अब विदा लेने का समय हो गया है। उम्मीद है कि आज की ये मधुर पेशकश, ये नाजुक अल्फाज और दिल को छू लेने वाली धुनें आपके मन में एक मीठी सी खुशबू और सुकून छोड़ गई होंगी। दोस्तों, जिंदगी की भागदौड़ में ऐसे ही कुछ पल अपने लिए निकालते रहिए, क्योंकि संगीत और शायरी दिल को ऊर्जा और नई रोशनी देने का हुनर रखते हैं। अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर इस गजल यात्रा में साथ देने के लिए आप सभी का दिल से शुक्रिया। इस उम्मीद के साथ कि फिर किसी नई महफिल, नई धुन और नए एहसास के साथ मुलाकात होगी, मुझे यानी आरजे नूरी को दीजिए कार्यक्रम गजल से इजाजत। लेकिन आपको बता दूं कि अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर सफर जारी रहेगा और आपको बता दूं कि कुछ ही पलों में आप सुन पाएंगे एक वार्ता, एक उभरती हुई सितारा मिस नाउकम वांगपन के साथ, जिन्होंने अरुणाचल आइडल के सीजन 6 के टाइटल जीतने का गौरव भी उसको मिला है। चलिए श्रोता दोस्तों, कुछ ही पलों में यानी कि आप सुन पाएंगे अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर आज का मेहमान, और आज का मेहमान जैसे कि मैंने बताया एक उभरता सितारा नाउकम वांगपन।
1: ये आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज है। प्रस्तुत है वीकली इन्फोटेनिंग कार्यक्रम आज के मेहमान। आज की कड़ी में हम आपके लिए लेकर आए हैं अरुणाचल आइडल 6 के विनर नाउकम वांगपन को। नाउकम वांगपन ने अपने आप को एक टैलेंटेड वर्सेटाइल सिंगर के रूप में एस्टैब्लिश किया है। तो आइए मिलते हैं हमारे आज के मेहमान नाउकम वांगपन से। नाउकम, सबसे पहले तो हमारे स्टूडियो में हार्दिक स्वागत है। ज्यादातर लोग आपको अरुणाचल आइडल 6 के विनर के तौर पर जानते हैं, तो शुरू करते हैं कि आपका ये जो जर्नी रहा है किस तरह का रहा है?
2: सर, मेरा जर्नी बहुत ही अच्छा रहा है
1: जी।
2: बहुत कुछ सीखने को मिला है, एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा था, एंड द जजेस, आई हैव मेट अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स, एंड बहुत सारा जॉनर्स गाना का। एंड
1: जब अरुणाचल आइडल विनर रह चुके सीजन 6 के, तो विनर बनने से लेकर अभी तक का जो जर्नी रहा है कैसा रहा?
2: अरुणाचल आइडल के बाद सर, आई वाज रियली इनटू मेकिंग माय ओन ईपी अरुणाचल आइडल आने से पहले भी, एंड आफ्टर दिस जर्नी मेरा सेम ही है, एंड मेरा गोल भी वही था।

0: एंड वही है, राइट नाउ आई एम फोकसिंग ऑन मेकिंग माई ओन एक्सटेंडेड प्ले लिस्ट जिसपे चार गाना होंगे एंड उसी के ऊपर ही काम कर रहे हैं.
1: आपने अपने आप को एक वर्सेटाइल टैलेंटेड सिंगर के तौर पे एस्टैब्लिश किया है, उसके बारे में हम जरूर बात करेंगे, लेकिन आपके बचपन के बारे में कुछ जानना चाहेंगे.
0: ओके मेरा बचपन बहुत ही, आई वॉज रियली रियली चंचल एंड बट होते ना सर द गर्लीज, लाइक द गर्ल चाइल्ड यूजली ऐसा होते हैं, उन लोगों के ना टॉयज के साथ गुजरते ना सर. बट देन मेरा बचपन इट वॉज लाइक टोटली डिफरेंट एंड मेरा बचपन नीम के पेड़ के ऊपर से गिरना एंड बॉय चाइल्ड उन लोगों से झगड़ना लड़ना, ये सब मेरा बचपन ऐसे ही है पूरा. तो इट वॉज रियली फन सर, ज्यादा टॉयज के साथ नहीं गया सर, बट देन आई वॉज रियली एडवेंचरस.
1: जब बच्चे गिरते हैं पेड़ों से गिरते हैं तो ये मानते हैं कि वो फल के पेड़ से गिरते, आप नीम के पेड़ से कैसे गिरी?
0: तो सर एक खेल होता है जो बहुत कॉमन है यहाँ, भागा भागी वी कॉल इट. तो मेरे नाइबर पे एक भाई है मेरा, तो तब उसका टर्न आ गया था चोर बनने का एंड देन आई वॉज रनिंग. इसके बाद तो वही उससे छुपने के लिए नीम पेड़ के ऊपर में आई क्लाइम एंड आफ्टर दैट वहां से आई फेल डाउन.
1: आपने कैसे डिसाइड किया कि आपको अरुणाचल आइडल 6 में पार्टिसिपेट करना है?
0: बिफोर अरुणाचल आइडल आई वॉज अ विनर ऑफ वांचो आइडल जो कि हम लेवल का कॉम्पिटिशन होता है. तो सर हाँ, वांचो आइडल पे पार्टिसिपेट करने के बाद पीपल दे सो समथिंग इन मी एंड दे वर रियली सपोर्टिव एंड होता है ना सर, आई वॉज लाइक रियली रियली डिमोटिवेटेड एट अ पॉइंट जब अरुणाचल आइडल का ऑडिशन आने ही वाला था. बट देन फिर समवेयर आई थॉट ना सर, क्योंकि इसमें फाइनेंशियल इश्यूज अगर रहते हैं तो बहुत मुश्किल हो जाना था सर, बिकॉज ईटानगर पे रहना, कॉम्पिटिशन पे पार्ट लेना, ये सब कहीं ना कहीं से ये आता ही. तो आई थॉट दैट ये सब करना इट्स ओके, आई एम नॉट गोना डू दिस आई थॉट. बट देन या सम पीपल जो लोग मेरे करीब है तो उन लोगों ने मतलब दे सेड दैट यू शुड रियली ट्राई दिस एंड इसके बाद आई वेंट फॉर ऑडिशन एंड हो गया सर सब चीज.
1: हम बार बार कहते हैं जब हम रियलिटी शोज की बात करते हैं, बहुत सारे ये एलिगेशन लगाते हैं कि ये कुछ नहीं है, लेकिन आप भी एक बेस्ट एग्जांपल हैं कि ये रियलिटी शो जो है टैलेंट हंट को रियली में प्रमोट करते हैं, मोटिवेट करते हैं, एनकरेज करते हैं, इस पे क्या कहेंगे?
0: एक चीज है जो रियलिटी शोज है ना, यहाँ रियलिटी शो एक ऐसा शो है जहाँ आपको बहुत प्रेशराइज भी फील होता है बीच में, यू फील लाइक छोड़ देने का सब चीज, इतना ही वो लेवल पे आ जाता है. बट देन व्हेन यू स्टिक तो होते होते बहुत कुछ, ये बहुत लंबा जर्नी था मेरे लिए एंड बहुत कुछ सीखने के लिए भी मिला है एंड बहुत कुछ जानने को मिला है. सो आई एम रियली थैंकफुल टू दिस एंड हाँ, सबके लिए नहीं होता है ये, बट वन शुड ट्राई. अगर नहीं होता है तो कोई बात नहीं, अपना ओरिजिनलिटी भी है खुद को प्रमोट करने के लिए.
1: आपने इन चुनौतियों को पर्टिकुलरली जो प्रेशराइज्ड होते हैं या खुद बहुत प्रेशराइज्ड फील करते हैं, इस सिचुएशन में डिमोटिवेटेड हो जाते हैं, डिस्करेज्ड हो जाते हैं, तो इस चैलेंज को आपने कैसे ओवर किया?
0: क्योंकि माय गोल वाज क्लियर एंड आई वांटेड टू विन दिस, आई वांटेड टू ट्राई एंड इवन इफ आई डिडंट, मेरे लिए वो एक्सपीरियंस वो बहुत इम्पोर्टेंट था, दैट व्हाट आई लर्न्ड. तो वही चैलेंजेस जब आया ना सर, आई थॉट दैट कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, एवरीथिंग विल बी फाइन, टेक अ लॉन्ग ब्रेथ एंड सब चीज ठीक हो जाएगा. बस तुम अपना गोल को सोचते रहो कि तुम्हारा पर्पस क्या था. सो वो पर्पस बहुत इम्पोर्टेंट है सर, कोई भी फील्ड में, कोई भी कॉम्पिटिशन में. तो आई थिंक सबको अपना पर्पस क्लियर रखना चाहिए एंड उसी पे ही स्टिक रहना चाहिए नो मैटर व्हाट, क्योंकि हर दिन तो ऐसा अच्छा मौसम नहीं होता ना सर.
1: इस चैलेंजेस को आपने ओवरकम किया. जब नौकम की बात करते हैं तो नौकम फोक सॉन्ग गाती है, बॉलीवुड गाती है, वेस्टर्न गाती है, तो इतना वर्सेटिलिटी कैसे आप में?
0: सर मेरा बचपना व्हेन आई वाज इन फिफ्थ स्टैंडर्ड तब आई वाज इनटू बॉलीवुड, बट देन फिर धीरे धीरे VH1 चैनल पे शिफ्ट हो गया मेरा इंटरेस्ट एंड फिर एनिमे. तो बहुत कुछ, बहुत ज्यादा जॉनरास, बहुत ज्यादा गाना सुना है एंड इंटरेस्ट भी है मेरा बहुत ज्यादा डिफरेंट डिफरेंट जॉनरास पे एंड आई टेंड टू लर्न
1: इन जॉनरास. में अगर आपको पूछा जाए कि आपको सबसे ज्यादा पसंद कौन सा जॉनर है, तो उसमें से आप किसको पसंद करेंगे?
0: सर इट्स R&B. आई लव R&B सिंगर्स. आई विश आई कुड लर्न मोर एंड आई विश was trained enough to sing different kind of songs.
1: बात करते हैं आपके community की, आपके tribe की, Wancho tribe की. हर tribe के अपने अपने folk songs होते हैं. जब अपने ही tribe की folk song की बात करते हैं, तो आप क्या कहोगे?
0: हमारा tribe पे बहुत ही अच्छा अच्छा songs बना है, and we have really really great singers. Banyam sir is one of the example. उन्होंने

0: बहुत ज्यादा गाना बनाया है लाइक क्लासिकल टच देकर. एंड आजकल धीरे धीरे धीरे धीरे सॉन्ग्स का जो म्यूजिक है हमारा वो धीरे धीरे बदलता देख रहे हैं. बट आई थिंक धीरे धीरे ज्यादातर गाना पॉप सॉन्ग पे बदल रहे हैं बिकॉज द मेलोडीज एंड ऑल दैट वो ज्यादातर सुनने के लिए अच्छा भी लगता है एंड पीपल दे रेजोनेट. ऐसा सॉन्ग थोड़ा मुश्किल लगता है उन लोगों को जो उन लोगों को सीखने के लिए टफ लगे. तो आई थिंक इट्स सिंपल एंड लाइक सभी म्यूजिक आई थिंक इट्स पॉप पे ज्यादा बदल रहा है. I know pop is really tough genre, but then kind of, I mean, with the great melodies and बहुत कुछ बदल रहे हैं, बहुत कुछ बदल गया.
1: Folk song के कुछ lines कुछ गाकर सुना दीजिए.
0: Okay, sir, तो ये गाना मैंने खुद से compose किया है.
1: Okay,
0: yeah, तो I would like to sing that. And also ये भी ऐसा ही है, बहुत ही सिंपल सॉन्ग है. तो ये गाना मैंने अपना फेस्टिवल के लिए बनाया है, फेस्टिवल टाइम पे सभी को यूनाइट करके एक जगह पर इकट्ठा होने के लिए. सो या इट गोज समथिंग लाइक दिस.

0: थैंक यू सो मच
1: जी, बहुत ही खूबसूरत सॉन्ग ओरिया मा, राइट?
0: यस।
1: अभी आपने बहुत ही सुंदर अपने डायलेक्ट में एक फोक सॉन्ग गाया। जब हम अरुणाचल प्रदेश के और ट्राइब्स की बात करते हैं तो उनके भी अपने फोक सॉन्ग से उनकी अपनी ब्यूटी है, उसका अपना एक चार्म है, तो एज ए होल आप क्या कहेंगे?
0: सर आई थिंक अरुणाचल बहुत ही डाइवर्स एक स्टेट है एंड बहुत कलरफुल है, बहुत द ट्राइब्स एंड ऑल। तो सिंस इट्स डाइवर्स, सभी ट्राइब्स से जो आर्टिस्ट लोग उभर कर आ रहे हैं ना सर, नाउ इज बहुत ही अच्छा अच्छा म्यूजिक सुनने को मिल रहा है सर, एंड दे आर मेकिंग लाइक रियली रियली गुड म्यूजिक। और ये काम ऐसे ही बरकरार रखना चाहिए सभी को।
1: तो उस हिसाब से कंपटीशन भी बहुत बढ़ रहे हैं, तो उसमें से आप एक कंपटीटर होंगे या हो रही हो, तो इससे क्या कहना है?
0: देयर आर लॉट ऑफ फोक सॉन्ग्स जो गाते हैं वो आर्टिस्ट लोग, एंड बहुत ही अच्छा कर रहे हैं उन लोग। ट्रैवल भी कर रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स पे, डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज पे शोज करने के लिए, एंड बहुत ही अच्छा लग रहा है, आई मीन अपना स्टेट से देखकर। एंड यस, देयर आर लॉट ऑफ कॉम्पिटिशन, बट माई इंटरेस्ट इज लाइक टोटली डिफरेंट। आई एम रियली इंटू वेस्टर्न। यस, देयर आर कॉम्पिटिशन्स, एंड मेरा भी जो जॉनरा है इस पे एक चैलेंजिंग पार्ट यही होता है कि ज्यादातर ऑडियंस नहीं ग्रैब कर पाता, क्योंकि ऑब्वियसली दे रेजोनेट जो यहाँ पे फोक आर्टिस्ट लोग जो बना रहे हैं सर, अपना लोकल सॉन्ग्स एंड ऑल प्रमोट कर रहे हैं, एंड करना भी चाहिए सर, वही चैलेंजेस रह जाते हैं।
1: बावजूद इसके अपना अपना टेस्ट हो, जैसे अभी कहा कि आप वेस्टर्न को भी बहुत पसंद करती हैं, वेस्टर्न सॉन्ग की बात हुई तो थोड़ी सी कुछ गुनगुना दीजिए।
0: ओके श्योर सर, श्योर। या दिस सॉन्ग इज कॉल्ड बेस्ट पार्ट and it's sung by Daniel Caesar and her. You don't know, babe, when you hold me,

0: पैशन को फॉलो करना एंड नॉट ओनली डोंट ट्राई टू बी बेसिक जो सब लोग कर रहे हैं. जस्ट डू यू जो आपको लगता है कि जो सही है, जो आपको करने का मन हो दिल से. ट्राई टू लर्न मोर स्किल्स, ट्राई टू लर्न मेनी थिंग्स एज पॉसिबल.
1: जब आर्टिस्ट की बात करते हैं तो जैसे अभी आपने कहा कि मे बी वन ऑफ द रीजन कि यहाँ के जो अचीवमेंट्स हैं बहुत कम हुए, लेजर इन नंबर में, पब्लिशिंग एक फैक्टर हो सकते हैं. बावजूद इसके आजकल बहुत सारे आर्टिस्ट उभर कर आ रहे हैं, आर्टिस्ट ही नहीं बहुत सारे और भी बहुत सारे अचीवमेंट्स जिसके कारण अब इन प्लेसेस को जाना जा रहा है. बी इट सिंगिंग की बात कहें या तो कहें एंटरप्रेन्योर की बात कहें, म्यूजिशियंस की बात कहें, फिल्म मेकर्स की बात कहें, तो आपके एरियाज में भी उभर कर आए.
0: All I want to say is that I'm really, really happy to see new artists coming out and new entrepreneurs and everybody, like sabhi field mein, I can see them. And ye bahut hi acha baat hai. And all I want to say is motivate them and say that aur bhi khud ko aise uncomfortable wala situation mein dhaliye jahan aapko bahut kuch sikhne ko mile. So yeah, that's it, sir.
1: To aap chahte hain ki wo jo hai apna comfort zone se bahar nikle taki apne aap ko na jo talent hai usko aur निखार सके. नौकम, जिस तरह से आजकल बहुत ही जो हमारे पेरेंट्स हुए, गार्जियन हुए, आजकल थोड़ा ओपन माइंडेड हैं कि जो बच्चे चाहते हैं करने के लिए देते हैं, लेकिन ऐसा कुछ साल पहले नहीं था.
0: Yes, मेरा भी कुछ एक्सपीरियंस है. लाइक आई सेड दैट फिफ्थ स्टैंडर्ड से आई वांटेड टू परस्यू म्यूजिक. इन अदर स्टेट्स म्यूजिक इज लाइक मैंडेटरी. आई थिंक पेरेंट्स ना दे शुड रियली छोड़ देना चाहिए कभी कभी अपना चाइल्ड को, लाइक उसका जो पैशन है ना. बट दिस डे इज लाइक आई एम सीइंग पेरेंट्स जो लोग अपने चिल्ड्रन को म्यूजिक क्लास लेने देते फॉर एग्जांपल, एंड इफ दे सी, इफ दे नोटिस दैट उन लोग का जो चाइल्ड है लाइक वो अगर स्पोर्ट्स में भी अच्छा है, तो आई मीन दिस डेज सर्टेन थिंग्स आर लाइक चेंजिंग कुछ कुछ जगहों पे. बट स्टिल कुछ कुछ जगह लाइक विलेज हो गया ना सर, वहां तो आई कैन सी सेम ही है वहां से. बट ऑल्सो आई जस्ट वॉन्ट टू से दैट पेरेंट्स रियली ना छोड़ देना चाहिए कभी अपना बच्चा को स्किल्स सीखने के लिए नया नया. एंड इट्स रियली रियली ग्रेट थिंग आजकल देखने को भी मिल रहा है, लाइक चिल्ड्रन देयर टेकिंग म्यूजिक क्लासेस बहुत ही छोटा छोटा एज से एंड देयर इन टू स्पोर्ट्स नो, तो बहुत अच्छा लग रहा है सर.
1: पर्सनली नौकम की बात कहे तो नौकम के साथ क्या था?
0: सो मेरा भी कुछ ऐसे था सर कहानी, एंड ज्यादा डिफरेंट नहीं है. बट माई पेरेंट्स दे वॉन्ट मी टू बिकम डॉक्टर और लाइक IAS ऑफिसर, एंड आई रियली रिस्पेक्ट दैट. अच्छा भी लगता है ये सोचकर कि उन लोग सोचते दैट आई हैव दैट एबिलिटी टू बिकम. तो बट देन आई वॉज रियली इन टू म्यूजिक, बट देन दे डिडंट अलाउ मी टू डू दैट क्योंकि ऑलरेडी उन लोग ही पे कर रहे मेरे स्कूल के फीस एंड ऑल दैट. तो सर या तो बहुत ही देर लग गया सर. आई थिंक कुछ साल पहले अगर क्लासेस लिया होता तो बहुत ही अच्छा होता म्यूजिक क्लासेस.
1: आपके पेरेंट्स आप क्या सोचते हैं आपके बारे में?
0: नाउ तो देर लाइक तुम करो अपना मन मर्जी हो गया, इफ यू लाइक म्यूजिक यू जस्ट डू इट. अभी उन लोग ये लास्ट मोमेंट पे बट इट्स नेवर टू लेट, यू कैन लर्न एनी टाइम एनी वे यू कैन इफ यू वॉन्ट टू.
1: यस, कहते हैं कि लर्निंग की कोई एज नहीं होती. आपने सही कहा कि इट्स नेवर टू लेट. आपकी तरह जो सिंगिंग फील्ड में आना चाहते हैं उन्हें आप क्या कहोगे, पर्टिकुलरली युवाओं को?
0: इफ यू वांट टू डू म्यूजिक ना सर, दिल से अगर जो आवाज आ रहा है ना, आई मीन नॉट ओनली म्यूजिक बट देन आई मीन सीखो, बट यू डोंट हैव टू बी द परफेक्शनिस्ट टाइप. करते रहो बस, एक्सपीरियंस मिल जाएगा एंड सीखते रहो. एंड ये भी आपको समझ होना चाहिए कि कहाँ आप लैक कर रहे हैं एंड व्हाट इज द मोस्ट यू कैन डू एंड गिव यू ऑल, करो जो भी करना है ना. आई जस्ट वांट टू से ऑल द यूथ जो लोग इंटरेस्टेड है ये फील्ड में आने के लिए, प्लीज आइए ट्राई कीजिए. यू डोंट हैव टू थिंक अबाउट आप फेमस होगा कि नहीं ये वो वगैरह, बस बनाते रहिए अपना आर्ट एंड सी भगवान आपको जो देते हैं.
1: थोड़ा सा म्यूजिकल ब्रेक लेते हैं. मुझे मालूम चला कि आपके एक सॉन्ग बहुत वायरल हुआ था, वो सूफियाना अंदाज में है, राहत फतेह अली खान ने भी गाया, उनके गुरु ने भी गाया, हम चाहते हैं कि आप भी वो गीत गा दीजिए.
0: I'm not trained at all to sing this song. ये गाना पे बहुत ज्यादा पावर नीडेड है एंड राइट नाउ ओके लेट्स आई एम गोना ट्राई माय बेस्ट. या ओके

0: Thank you so much.
1: बहुत खूब, बहुत
0: खूब.
1: तो ये तो हुई सिंगिंग की बात. अब नौका, उन्हों सिंगिंग के अलावा और क्या क्या करती हैं?
0: Like I said, sir, I wasn't interested. पढ़ाई लिखाई पे मेरा मन थोड़ा सा कम लगता था सर. तो नॉवेल्स पढ़ना एंड ऑल, आई ओनली यूज टू रीड टिंकल व्हेन आई वाज अ किड. बट राइट नाउ अभी नॉवेल पढ़ने का मन, आई एम लाइकिंग द स्मेल ऑफ, एंड या बहुत बुक्स खरीद कर भी रखा हुआ है. एंड नॉवेल आजकल थोड़ा पढ़ने का मन करते हैं. साल साल पे ना सर हॉबीज चेंज होते गए. एंड या एंड ऑल्सो आई एम इनटू स्पोर्ट्स.
1: ओके,
0: यस.
1: ये तो हुई बुक की बात, आप क्या करती हैं?
0: Yeah.
1: उसके बाद जब सिंगिंग के क्षेत्र में भी आपने कहा कि जब आप इंडियन आइडल में पार्टिसिपेट कर रही थी, तो जब जजिंग की बात आती तो किस तरह के प्रेशर था और आपके रिलेशनशिप जजेस के साथ किस तरह के थे?
0: सर अरुणाचल आइडल पे जब आई वाज पार्टिसिपेटिंग, जजेस लोग बहुत ही अच्छा मेंटर कर रहे थे उन लोग ना. एंड हम लोगों को ऐसा होता था लाइक एक वीक पे हम लोगों को दो दो सॉन्ग्स प्रिपेयर करना पड़ता था. एंड इट वाज बहुत ही चैलेंजिंग था मेरे लिए, बिकॉज आई यूज्ड टू लिसन टू मेनी, लाइक आई वाज इनटू वेस्टर्न मोस्ट ऑफ द टाइम. बट फिर अरुणाचल आइडल आने के बाद डिफरेंट डिफरेंट जॉनरास का एंड कुछ कुछ कभी कभी गाना उन लोगों की तरफ से दिया जाता था. तो लाइक इट वाज रियली चैलेंजिंग थिंग. बट देन हमारा जजेस लोग दे वर रियली नाइस टू अस, एंड उन लोग ने बहुत ही कुछ सिखाया सर हम लोग.
1: तो नौकम, क्योंकि कंपटीशन है वो तो होगा ही, लेकिन yes. आप कभी कभी सोचती थी कि आपसे भी ज्यादा कोई बेहतर गाता है, मुझे उससे डर yes. लगता है, पता नहीं क्या होगा, तो कुछ ऐसा सिचुएशन भी आया आपके साथ?
0: यस यस यस, सभी कंटेस्टेंट्स ना टॉप 8 तक आ जाने के बाद में, इवन टॉप 13, शुरुआत टॉप 13 से हुआ था सर. एंड आफ्टर टॉप 13 टॉप 8 धीरे धीरे धीरे धीरे जाते गया. एंड एवरी कंटेस्टेंट्स ना सर कुछ कुछ जॉनरास पे, बिकॉज हम लोगों का कॉम्पिटिशन पे, फॉर एग्जाम्पल आज कुछ कॉम्पिटिशन है, इट्स ऑन डिफरेंट जॉनरा के ऊपर कॉम्पिटिशन हो रहा है. तो डिफरेंट कंटेस्टेंट्स उन लोग का हर एक जॉनरा पे किसी किसी का अच्छा हो रहा था, किसी किसी का खराब हो रहा था. तो उन लोग भी बढ़ते बढ़ते कॉम्पिटिशन के साथ ही साथ उन लोग का भी वो प्रोग्रेस दिखाई दे रहा था सर. तो एवरीबॉडी वॉज डूइंग ग्रेट हर एक उस पे. तो सभी से आई वॉज लाइक वाओ, मतलब आज इसका अच्छा हो रहा है, आज इसका अच्छा हो रहा है, सभी को देखना पड़ेगा. आई वाज लाइक दिस. बट देन धीरे धीरे धीरे फिनाले आया सर. फिनाले आने के बाद ऐसे बहुत ज्यादा फैक्टर्स के थ्रू विनर्स को भी चुना जाता है. फॉर एग्जांपल देयर ऑडियंस, देयर फैंस, द फैन फॉलोइंग्स एंड ऑल दैट. तो आई वाज फिनाले आते आते आई वाज लाइक राजीव भी हो सकता है.
1: अब राजीव से डरती थी
0: फिनाले आने के
1: बाद. इस बीच में कहीं लगा कि हाँ शायद मैं भी विनर बनने जा रही हूँ, इस बीच कुछ ख्याल ऐसा कुछ आया?
0: आई मीन सर नॉट टू ब्रैग, बट देन यस आई थॉट दैट आई माइट बी द वन.
1: ओके, ये बहुत अच्छी
0: बात है. ये आया था सर, आई माइट बी द वन. सर माइट में ही रहा वो, बट देन आई वाज नेवर टू कॉन्फिडेंट, बट आई गेव माय ऑल, जो हो सका वो दिया था बस.
1: आपने अपना बेस्ट दिया और इसलिए आप अरुणाचल आइडल सीजन 6 के विनर बने.
0: यस सर.
1: जो अरुणाचल प्रदेश के जो आर्टिस्ट या परफॉर्मर के हैं, तो उनके बारे में अगर आप पूछा जाए तो फिलहाल आपका फेवरेट कौन है?
0: सर आई हैव सीन सम ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ आर्टिस्ट जो लोग यहाँ से हैं. राइट नाउ गुरांगजुली दी, शी इज लाइक अ सिस्टर, तो आई कॉल हर गुरांगजुली दी. तो या शी इज डूइंग रियली ग्रेट एंड शी इज गॉट रियली रियली पावर वोकल.
1: आपका जो फ्यूचर प्लानिंग है वो क्या
0: है? सर फ्यूचर प्लानिंग एल्बम्स बनाना, अभी तो खुद को जस्ट ट्राई कर रहे न्यू थिंग्स एंड लेट्स सी वेयर इट टेक्स.
1: नौकम, एज एन आर्टिस्ट फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश, डू यू फील सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रिप्रेजेंट द रिच कल्चर एंड म्यूजिक ऑफ योर रीजन टू द ग्रेटर प्लेटफॉर्म?
0: यस यस. एंड लाइक आई सेड ना सर, लाइक फोक आर्टिस्ट जो लोग यहाँ के, जो लोग प्रमोट कर रहे हैं अपने आपको, तो वैसे मेरा भी एक सपना है करने का सर. एंड आई एम रियली थिंकिंग एंड आई एम रियली प्लानिंग एंड आई एम वर्किंग ऑन दैट, बिकॉज लोग ना अपीयरेंस के थ्रू भी पहचान लेते हैं कि हाँ ये वहाँ का है. I'm really working on that.
1: अंत में हम चाहेंगे कि इस इंटरव्यू का जो अंत म्यूजिकली हो, तो कुछ गाकर सुना दीजिए.
0: Sure, sure, sure, sir. So this is few lines सुना दे दे सर. And it's kind of a teaser.
1: Okay.
0: जो release होने

0: वाला है लाइक कुछ ही दिन के बाद या फिर मे बी वीक्स. तो या
1: लव आई वंडर हाउ यू आर.

0: That's it.
1: Very beautiful.
0: Thank you, sir. Thank you, sir.
1: तो नाकम अंत में आप अपने सपोर्टर्स को, फैन फॉलोअर्स को और हमारे सुनने वालों को क्या कहेंगे?
0: आई विल से दैट जो भी कर रहे हैं अपने लाइफ में, इट्स रियली शॉर्ट. लाइफ इज रियली शॉर्ट. लाइफ इज अनप्रेडिक्टेबल. कुछ ही सेकेंड्स में इसका बदलाव हो सकते हैं, लाइक कुछ भी बदल सकते हैं. सो आई जस्ट वॉन्ट टू से कि आपको जो करने का मन है ना, आप करो. जो खाने का मन है खाओ, मस्त से जियो. आई जस्ट वॉन्ट टू से दैट. दैट्स इट सर, दैट्स ऑल.
1: नौकम, आप हमारे स्टूडियो में आई और अपने बारे में तथा अपने म्यूजिकल जर्नी के बारे में इतनी सारी बातें हमारे श्रोताओं के लिए शेयर की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद.
0: थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी सर. थैंक यू सो मच.
1: ये आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ज है. अभी आप सुन रहे थे हमारा वीकली इन्फोटेनिंग कार्यक्रम आज के मेहमान. और आज की कड़ी में आप सुन रहे थे एक टैलेंटेड वर्सेटाइल सिंगर नौकम वांगपन को. हम फिर हाजिर होंगे ऐसे ही टैलेंटेड और वर्सेटाइल पर्सनैलिटी को लेकर. तब तक के लिए दीजिए इजाजत. नमस्कार.
2: श्रोता दोस्तों, आप सुन रहे थे आज का मेहमान कार्यक्रम आकाशवाणी के रेन FM 103.1 मेगाहर्ट्ज पर. दोस्तों आपको बता दूं कि कुछ ही पलों में यानी कि एक बजते ही आप सुन पाएंगे मेरी न्यूज तथा 1:05 पर अंग्रेजी में समाचार. तो समाचारों के लिए इंतजार करते करते चलिए सुन लेते हैं एक बेहद ही प्यारा सा गीत.

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ निफेड के नीलामी पोर्टल का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि निफेड किसानों की सेवा कर रहा है।
1: नाफेड ने एक प्रकार से नेफिक्स.इन, दृष्टि, ईआरपी और नाफेड कल्याण, ये चार पहलों की शुरुआत, तो वो क्रांतिकारी इसलिए कि नाफेड जो 2014 में बंद होने की कगार पर आ गया था, आज नाफेड ये सारी पहल कर 500 करोड़ के मुनाफे के साथ, 30,000 करोड़ के टर्नओवर के साथ देश के 74 लाख किसानों की सेवा कर रहा है।

0: नेफेड की कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म उपलब्ध होगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एनएसए अजित डोभाल ने आज सुरक्षा से जुड़े नए खतरों और चुनौतियों के प्रति जागरूक रहने की आवश्यकता पर बल दिया। नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 16वीं बैठक में श्री डोभाल ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि गैर पारंपरिक खतरे अब राष्ट्रीय सीमाओं से आगे निकल गए हैं।
1: We need to be cognizant of the new security threats and challenges.
2: हमें सुरक्षा से जुड़े नए खतरों और चुनौतियों के प्रति जागरूक रहने की आवश्यकता है। गैर पारंपरिक खतरे राष्ट्रीय सीमाओं से आगे निकल चुके हैं और पारंपरिक जवाबी कार्रवाई से निपटने के लिए उन्होंने अपने बचाव के तरीके भी विकसित कर लिए हैं। नई और क्रांतिकारी तकनीकें, आतंकवाद के छिपे हुए रूप और तेजी से डिजिटल होती दुनिया में साइबर खतरे, ये सभी हमारे लिए एक बड़ा खतरा है।
1: They all constitute an important threats for us.
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। इस दौरान 2 पद्म विभूषण, 7 पद्म भूषण और 56 पद्मश्री सहित कुल 65 पद्म अलंकरण दिए जाएंगे। पद्म पुरस्कार विजेताओं पर आकाशवाणी अपने विशेष कार्यक्रम पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी के अंतर्गत विशेष कार्यक्रम प्रसारित कर रहा है। इस श्रृंखला के माध्यम से श्रोताओं को पद्म पुरस्कार विजेताओं के जीवन और उनके योगदान की जानकारी मिल रही है। ये कार्यक्रम एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर प्रसारित होगा। इन्हें न्यूज ऑन एआईआर ऐप और न्यूज ऑन एआईआर के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर भी सुना जा सकता है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज नई दिल्ली में अलनीनो के मौसम पर पड़ने वाले प्रभाव और कृषि पर इसके असर की समीक्षा के लिए एक बैठक की। बैठक में कई राज्यों के कृषि मंत्रियों, सचिवों, जिला कलेक्टरों और अधिकारियों ने भाग लिया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री चौहान ने कहा कि अलनीनो की संभावित स्थितियों को देखते हुए सरकार किसानों के हितों की रक्षा करने और कृषि तथा खेती पर पड़ने वाले किसी भी प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। अयोध्या में राम मंदिर में प्राप्त दान के गबन के आरोपों की जांच कर रहे विशेष जांच दल SIT ने उत्तर प्रदेश सरकार को अपनी प्रारंभिक जांच रिपोर्ट सौंप दी है। ये रिपोर्ट लखनऊ संभागीय आयुक्त विजय विश्वास पंत ने अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह संजय प्रसाद को सौंपी। अधिकारियों ने बताया कि जांच अभी जारी है। अयोध्या राम मंदिर में प्राप्त दान के दुरुपयोग के आरोपों के सामने आने के बाद मंदिर ट्रस्ट के अनुरोध पर उत्तर प्रदेश सरकार ने इस महीने की 13 तारीख को SIT का गठन किया था। प्रवर्तन निदेशालय शिक्षक भर्ती परीक्षा में कथित धोखाधड़ी मामले में चेन्नई, तिरुचिरापल्ली, कोयम्बटूर और मदुरई में 18 परिसरों में तलाश अभियान चला रहा है। निदेशालय ने बताया कि कार्रवाई केंद्रीय अपराध शाखा द्वारा वर्ष 2017 में दर्ज की गई प्राथमिकी पर आधारित है। पुलिस ने इस मामले में 2021 में आरोप पत्र दाखिल किया था। अमेरिका ने भारत की M777A2 अल्ट्रालाइट होबिजर तोपों के रखरखाव के लिए 23 करोड़ डॉलर के पैकेज की घोषणा की है। सोशल मीडिया पोस्ट में भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर ने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच रक्षा साझेदारी लगातार बढ़ रही है और वो प्रस्तावित बिक्री को अंतिम रूप देने के लिए तैयार है। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांक ने आज दोपहर के कारोबार में लगभग 0.7% की गिरावट आई। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 525 अंक गिरकर 76,570 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स। President Draupadi Murmu will present the Padma Awards at the second civil investiture ceremony at Rashtrapati Bhavan this evening. Padma Awards, one of the highest civilian awards of the country, are conferred in three categories: Padma Vibhushan, Padma Bhushan and Padma Shri. The President will confer 65 Padma Awards today. National Security Advisor Ajit Doval today stressed on the need to be cognizant of the new security threats and challenges. Speaking at the 16th BRICS National Security Advisors meeting in New Delhi, Mr. Doval said that non-traditional threats have transcended national borders. He emphasized that innovative disruptive technologies, more camouflaged variants of terrorism and cyber threats are getting increasingly digitized. He said the discussions during the 16th BRICS National Security Advisors meeting will focus on non-traditional security challenges.

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

तो समाचारों के बाद आपका फिर से स्वागत करते हैं चलने को एक और संगीतमय सफर पर आकाशवाणी के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो साथी आरजे नूरी के साथ। दोस्तों अगला जो कार्यक्रम है बहुत ही खास है, खास पता नहीं कई लोगों को कुछ अलग लग सकता है लेकिन मेरे लिए बहुत खास है और उम्मीद करती हूँ कि आपके लिए भी ये बहुत ही खास होगा, क्योंकि इस सफर में हम आपके लिए लेकर आते हैं वो गाने जो 1960s

और 80s के हैं, और वो गाने जो सदाबहार गाने आज भी उतने ही नए और असरदार लगते हैं जितने कि अपने रिलीज के वक्त था। जी हाँ दोस्तों, और साथ ही साथ आज सुबह से मेरे मन में एक बात आई है, और वो बात है पैसों की। जी हाँ, आज पैसों के बारे में बातें करने का बड़ा मन कर रहा है। हाँ दोस्तों, वही पैसा जिसके लिए हम रोज मेहनत करते हैं, जिसकी चिंता करते हैं, जिसे बचाने की कोशिश करते हैं, और कभी कभी समझ ही नहीं पाते कि आखिर यह जाता कहाँ है। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन गाने के बाद।

इस सेगमेंट में असली हीरो पैसा है, यानी कि धन लक्ष्मी। गाने तो बस ब्रेक है। कई बार हम सोचते हैं कि आखिर या अगर हमारी आय यानी कि इनकम बढ़ जाए तो हमारी सारी आर्थिक परेशानियां यानी कि फाइनेंशियल इश्यूज प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएगी। लेकिन क्या केवल ज्यादा पैसा कमाना ही आर्थिक सुरक्षा की गारंटी है? यानी कि ज्यादा पैसा कमाना ही क्या ये गारंटी है कि हमारे पास बहुत पैसा होगा? ये सवाल बहुत क्रिटिकल है, क्योंकि कई लोग

जो बहुत ही मिनिमम वेज के साथ जिंदगी गुजारते हैं उनकी जिंदगी जो ज्यादा पैसा कमाते हैं कहीं ज्यादा अच्छा होता है, ऐसा कैसे? क्योंकि ये जो सवाल है ना कि क्या केवल ज्यादा पैसा कमाना ही आर्थिक सुरक्षा यानी कि फाइनेंशियल सिक्योरिटी की गारंटी है, शायद नहीं। क्योंकि आर्थिक मजबूती यानी कि फाइनेंशियल जो स्टेबिलिटी है उसकी शुरुआत आय यानी कि इनकम से नहीं बल्कि समझ से होती है। एज लॉन्ग एज आप अंडरस्टैंड करते हो आपके अर्निंग, इन्वेस्टमेंट और सेविंग्स को, वो तय करेगी आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। और इसी खूबसूरत बात को हमें सिखाती है एक प्यारी सी बहुत ही इंस्पायरिंग बुक, डियर वुमेन वी नीड टू टॉक मनी। ये बहुत ही खास पुस्तक मुझे मिली है और मुझे लगा कि मुझे भी अपने लिसनर्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ जो अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ को सुनते हैं उनके साथ शेयर करना चाहिए। क्योंकि कहते ना, अच्छी बातें शेयर करने से बढ़ती है और बुरी बातों को छिपा कर रखते हैं, उसको बाहर ही निकलने नहीं देते, उसको मार ही देते हैं। चलो तो अच्छी बातें हम करते हैं क्योंकि हम कहते हैं ना अरुण एफएम पर कि करेंगे दिल से दिल की बात, और पैसों की बात जब आती है तो वो आपकी भी दिल की बात है और मेरी भी दिल की बात है और पूरी दुनिया की दिल की बात है। दोस्तों, इस पुस्तक का तीसरा अध्याय है यानी कि चैप्टर 3, नो योर मनी अप क्लोज। क्या आप आपके पैसे को करीब से जानते हैं? शायद ये सवाल आपने आपसे कभी नहीं किया होगा या ये सवाल कभी हमने सुना भी नहीं होगा। दोस्तों, यानी कि अपने पैसों को करीब से पहचानिए। जरा सोचिए, हम अपने परिवार के हर सदस्य की जरूरतें जानते हैं, घर के हर कोने की खबर रखते हैं, लेकिन क्या हम अपने पैसों को उतनी ही अच्छी तरह जानते हैं? ये बहुत ही क्रिटिकल क्वेश्चन है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। कितनी आय आती है यानी कि कितनी इनकम आती है, कितना खर्च होता है यानी कि कितना आप स्पेंड करते हो, कहां फिजूल खर्ची हो रही है और कितना पैसा वास्तव में हमारे भविष्य के लिए बच रहा है। कई बार इन सवालों का जवाब हमारे पास नहीं होता है और यही है, और यही से आर्थिक उलझने शुरू हो जाती है यानी कि फाइनेंशियल क्रिटिकल सिचुएशन शुरू हो जाती है। दोस्तों, पैसा हमारा सबसे मेहनती कर्मचारी है यानी कि हमारा पैसा बहुत काम करता है। अगर हम उसे दिशा देंगे यानी कि डायरेक्शन देंगे तो वो हमारे लिए काम कर सकता है। वैसे तो दुनिया का हमको यही समझ है ना कि हम पैसों के लिए काम करते हैं, लेकिन मान लो जस्ट ऑपोजिट, टू द कॉन्ट्ररी, अगर हमारे पैसे हमारे लिए काम करें तो कितना मजेदार होगा ना। यानी कि द मोर यू रिलैक्स द मोर यू अर्न, अगर ये बात सच हो जाए तो क्या बात है, तो वो हमारे लिए काम करेगा। यानी कि हम अगर पैसे को यानी कि हमारे धन को, हमारे आय को अगर सही दिशा देंगे, सही डायरेक्शन देंगे तो बढ़ेगा। अगर उसे बिना योजना के छोड़ देंगे तो वह चुपचाप खर्चों में गायब हो जाएगा। यानी कि कहीं पे कहते हैं ना, वैनिशिंग इन द थिन एयर कहते हैं ना, पैसा वैसा ही है। अगर हम उसको सही दिशा नहीं देंगे, सही डायरेक्शन नहीं देंगे तो वह खर्चों में गायब हो जाएगा। और इसी विचार के साथ सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

म्यूजिकल ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है दोस्तों। आज का हीरो यानी कि आज का जो मुद्दा है वो है पैसा। और वैसे आप सुन रहे हैं कार्यक्रम 1960s, 70s और 80s के सुनहरे गाने मेरे साथ यानी आरजे नूरी के साथ। दोस्तों जब आप अच्छा कमाते हो, अच्छा बचा रहे हो फ्यूचर के लिए और जिंदगी भी बिंदास जी रहे हो तो ऐसे ही गाएंगे।

खुशी के साथ उछलते हुए कूदते हुए, है ना। साथ मेरे आओगे फिल्म जस्टिस चौधरी का ये गीत आपके मन में खुशियां भर दी होंगी। तो इन खुशियों के साथ ही चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं पैसों को, यानी कि धनलक्ष्मी को। दोस्तों, जब हम अपने पैसों को समझना शुरू करते हैं तब अगला कदम आता है आर्थिक स्पष्टता, यानी कि फाइनेंशियल क्लैरिटी। पुस्तक का चौथा अध्याय यानी कि चौथा चैप्टर, द फोर पिलर्स ऑफ फाइनेंशियल क्लैरिटी, यानी कि आर्थिक स्पष्टता, हमें चार मजबूत स्तंभों के बारे में बताता है। पहला स्तंभ है कमाई, यानी कि इनकम। पैसा कहां से आ रहा है इसकी स्पष्ट जानकारी होना जरूरी है। दूसरा स्तंभ है, यानी कि दूसरा पिलर है, खर्च, एक्सपेंसेस। पैसा कहां जा रहा है इसकी ईमानदार समझ, कंप्लीट समझ। तीसरा स्तंभ यानी कि थर्ड पिलर है, बचत, यानी कि सेविंग्स। कहते ना, रेनी डेज के लिए सेव करके रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि पैसा आया और सारा खर्च कर दिया, कल की सुबह भी तो है। और चौथा स्तंभ यानी कि फोर्थ पिलर, निवेश, यानी कि इन्वेस्टमेंट। आप सेविंग्स भी कर सकते हो और साथ ही साथ इन्वेस्टमेंट भी जरूरी है। हम अपने पैसों को कैसे बढ़ा रहे हैं ये तय करता है हमारे इन्वेस्टमेंट से। दोस्तों, एक घर चार मजबूत स्तंभों पर खड़ा होता है, वैसे ही आर्थिक जीवन भी इन चार स्तंभों पर टिकता है। फिर से सुन लेते हैं। पहला स्तंभ है कमाई, और दूसरा है खर्च यानी कि एक्सपेंसेस, और तीसरा है सेविंग्स, और चौथा बहुत इंपॉर्टेंट है, निवेश यानी कि इन्वेस्टमेंट। अगर इन चार स्तंभों पर हमारा अगर फाइनेंशियल सिचुएशन खड़ा है ना, कभी गिरेगा नहीं। यदि इनमें से एक भी स्तंभ कमजोर हो जाए तो आर्थिक संतुलन डगमगाने लगेगा। और खास बात यह है कि इन चारों स्तंभों को मजबूत बनाने के लिए करोड़पति होना जरूरी बिल्कुल नहीं है, क्योंकि कई लोगों को लगता है कि हमारे पास तो पैसे ही नहीं, कैसे सेव करेंगे, हमारे पास तो पैसे ही है ही नहीं, उसको इन्वेस्टमेंट कैसे करेंगे जब जरूरत ही पूरी नहीं हो रही। तो इसमें मैं आपको एक छोटी सी कहानी जरूर बताऊंगी, लेकिन इस गीत के बाद।

तो दोस्तों संगीत का सफर है, लेकिन आज का हीरो है मनी, यानी कि मनी टॉक्स। पैसा बोलता है, हमें हर वक्त हर जगह हर सिचुएशन में पैसों की जरूरत होती है, उसके लिए हम काम करते हैं, पैसों के लिए काम करते हैं, लेकिन किसी किसी के लिए पैसा काम करता है। और कुछ लोग बोलते हैं कि बहुत ज्यादा पैसा होना चाहिए, हम करोड़पति हो तभी हम कुछ बचा पाए, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसका तथ्य को मैं तोड़ने वाली हूं अभी। और आप सभी जानते हो कि कई बार हम सोचते कि हमारे पास बहुत कम साधन है, इसलिए हम कुछ बड़ा कर ही नहीं सकते, लेकिन इतिहास और वर्तमान ऐसे अनगिनत उदाहरणों से भरे पड़े हैं जिन्होंने सीमित संसाधनों से असाधारण सफलताएं हासिल की है। इसलिए ये एक्सक्यूज देना कि मेरे पास तो करोड़ों में नहीं है, मेरे पास लाखों में नहीं, हम बचा कैसे लेंगे, लीजिए। डियर वुमेन वी नीड टू टॉक मनी में एक अध्याय है, उसमें एक प्रेरणादायक कहानी है सविता बेन परमार की, एक ऐसी महिला जिन्होंने गरीबी, संघर्ष और सामाजिक चुनौतियों के बीच हार नहीं मानी। उन्होंने अवसरों का इंतजार नहीं किया, शिन्ने

0: वेटेड फॉर दैट परफेक्ट मोमेंट. उनको लगता था कि हर मोमेंट परफेक्ट है. बल्कि अफसरों को स्वयं बनाया, यानी कि शी क्रिएटेड हर ओन मोमेंट. गरीब महिला थी, आर्थिक स्थिति भी बहुत खराब थी, उतनी अच्छी नहीं थी. उनकी कहानी हमें सिखाती है कि शुरुआत चाहे कितनी भी छोटी क्यों ना हो, दृढ़ निश्चय और मेहनत हमें नई ऊंचाइयों तक पहुंचा सकते हैं. दोस्तों, उन्होंने तिनका तिनका कर करोड़ों का साम्राज्य बनाया. आप गूगल कर सकते हैं सविता बहन परमार. उनकी कहानी को जरूर पढ़े और उनसे इंस्पिरेशन ले. क्योंकि मैंने आज कहा ना, वैसे सफर तो है 1960s, 70s एंड 80s के गानों का सफर, लेकिन आज का हीरो पैसा है. और पैसे की अहमियत कैसे समझे, और इंस्टेड ऑफ वर्किंग फॉर मनी लेट द मनी वर्क फॉर अस, इस बात की चर्चा कर रहे हैं. श्रोता दोस्तों, मैं आरजे नूरी आकाशवाणी के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ अरुण एफएम पर, जहां होती है दिल से दिल की बात. जी हां, दिल से दिल की बात होती है. हर टॉपिक पे बात होती है, एंटरटेनमेंट होता है, इन्फॉर्मेशन होता है. इसलिए हमारे चैनल को, यानी अरुण एफएम को कहते हैं एंटरटेनमेंट चैनल, जहां आपको एंटरटेनमेंट के साथ साथ जिंदगी के लेसन्स का तड़का मिलता है. चलिए एक और गीत हो जाए. और दोस्तों, आपको बता दें कि ये आखिरी गीत है कार्यक्रम 1960s, 70s to 80s के सुनहरे गीतों का. फिल्मी गानों का सफर जारी रहेगा और हमारा हीरो यानी कि आज का मुद्दा पैसों पर भी चर्चा जारी रहेगा. बने रहिए आकाशवाणी के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़, जहां होती है दिल से दिल की बात गीतों के माध्यम से.
1: आप यहां से जाने का क्या लोगे?

छोड़ के जाऊं, इतनी मैं नादान नहीं हूँ।

अध्याय 9 यानी कि चैप्टर 9 अ स्मार्ट गाइड टू गोल सेटिंग। हम कई बार प्लान्स बनाते हैं, कई बार हम गोल सेटिंग करते हैं, लेकिन वो गोल्स कभी हम पहुंचते ही नहीं, क्योंकि गोल सेटिंग में ही कहीं गलती हो जाती है, कहीं ना कहीं गोल सेटिंग ही गलत होता है। चलिए हम जानते हैं कि स्मार्ट गोल सेटिंग है क्या, क्योंकि जब तक हमें अपनी मंजिल नहीं पता होगी तब तक कोई भी रास्ता सही नहीं लगेगा। आपका लक्ष्य क्या है, यानी कि आपका गोल क्या है? बच्चों की पढ़ाई, अपना घर बनाना यानी कि सपनों का घर बनाना, या एक सुरक्षित रिटायरमेंट? फिलहाल आप अभी तो जवान हो, नौकरी करते हो, पैसा बहुत आ रहा है, लेकिन उस वक्त क्या, जब आप बुजुर्ग हो जाओगे और आपका रिटायरमेंट हो जाएगा, आपके पास नौकरी नहीं रहेगी, या आप ऐसा कुछ प्लान कर रहे हो कि आप छोटा सा व्यवसाय शुरू करना चाहते हो, एक स्टार्टअप करने की आप प्लान बना रहे हो, या फिर आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनना है, आपका लक्ष्य क्या है? जो भी सपना हो उसे कागज पर लिखिए। सबसे पहले तो जो भी सपना है आपका, जो भी गोल है, उसे कागज पर उतारिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हवा में तो कुछ भी होता है ना, क्योंकि लिखे हुए सपने ही लक्ष्य बनते हैं। ये एक ट्राइड एंड ट्रस्टेड ट्रिक है कि जिन चीजों को आप कागज पर उतारते हो, जिन चीजों को आप शब्द का रूप देते हो, वही सपने पूरे होते हैं और वही गोल्स बनते हैं। और लक्ष्य पूरे करने के लिए स्मार्ट तरीका अपनाइए। जी हाँ, स्मार्ट, SMART। इसका मतलब यह है कि स्मार्ट का एस का मतलब होता है स्पेसिफिक, यानी कि लक्ष्य स्पष्ट हो, आपका जो गोल है ना वो एकदम क्लियर हो। एम यानी कि मेजरेबल हो, आपकी आपका जो लक्ष्य है जिसके प्रति आप अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो, जिसकी प्रगति आप माप सके यानी कि मैपिंग कर सके, वो गोल आपका मेजरेबल हो। ऐसा नहीं कि आप 2 रुपए कमाते हो और आप सोच रहे हो कि हर महीने में 50 रुपए सेव करूंगा, दैट इज नॉट मेजरेबल। ए का मतलब है अचीवेबल, ऐसा गोल बनाइए जो आपके लिए संभव हो, यानी कि आप कर सकते हो और आपके दायरे में है, है ना। आर का मतलब होता है रेलेवेंट, जो आपके जीवन के लिए महत्वपूर्ण हो, जो आपके जीवन के लिए सही हो। और फाइनली स्मार्ट का टी मतलब है टाइम बाउंड, जिसकी सीमा यानी कि समय सीमा तय हो। आप एक गोल बनाएं कि हाँ, मुझे इतने दिनों में, इतने हफ्तों में, इतने सालों में मुझे ये गोल अचीव करना है, जो मेजरेबल भी हो, जो अचीवेबल हो, जो रेलेवेंट हो और स्पेसिफिक हो। ऐसा नहीं कि हवा में तलवारबाजियां करो। इसलिए पैसों को लेकर भी जिंदगी के हर गोल की तरह स्मार्ट गोल बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलेवेंट एंड टाइम बाउंड। दोस्तों, सपने देखना खूबसूरत है, लेकिन सपनों के लिए योजना बनाना और भी खूबसूरत है, है ना। चलिए मनी टॉक्स में सुनते हैं एक बहुत ही प्यारा सा गीत, फिर उसके बाद वापस आएंगे और करेंगे मनी टॉक, क्योंकि आज का हीरो है मनी टॉक।

एक और फिल्मी गानों के ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है मनी टॉक्स में। जी हाँ, मैं हूँ आप सबके साथ रेडियो साथी आरजे नूरी और आप सुन रहे हैं मेरे साथ पैसों की बात। जी हाँ, किस तरह बचाएं, कैसे बचाएं, क्यों बचाएं, और अगर हमारे पास बहुत ज्यादा आय ना हो, पूंजी ना हो, तो हम उसे कैसे बचाएं। इन सारी चर्चों के बाद आज तीन महत्वपूर्ण बातें निकल कर सामने आती है। पहली, अपने पैसों को जानिए। दूसरी, आर्थिक जीवन के चार स्तंभों को मजबूत बनाइए। और तीसरी, अपने सपनों को स्पष्ट लक्ष्य में यानी कि गोल्स में बदलिए। याद रखिए, आर्थिक स्वतंत्रता यानी कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस किसी एक बड़ी घटना का परिणाम नहीं होती है। ये छोटे छोटे फैसलों, नियमित बचत, बेहतर समझ और सही दिशा में उठाए गए कदमों का नतीजा होती है। तो आज घर पहुंचकर बस एक काम कीजिए, एक कॉपी और पेन उठाइए, अपने पैसों का हिसाब लिखिए, अपने सपनों को लिखिए और अपने भविष्य की पहली मजबूत आर्थिक योजना बनाइए यानी कि फाइनेंशियल प्लान्स बनाइए। क्योंकि जब हम अपने पैसों को समझना शुरू करते हैं, तभी हम अपने जीवन को बेहतर दिशा देना शुरू करते हैं। इसी सकारात्मक सोच के साथ श्रोता दोस्तों, मैं हूं आरजे नूरी। जब बातें पैसों की हो ना, तो बस चलते रहना ही मन ऐसा

मन में आता है कि बस बातें ही करते रहे बहुत सारी बातें। चलिए एक और गीत सुनते हैं और उसके बाद फिर से वापस आते हैं एक और नए ट्रिक के साथ।

श्रोता दोस्तों, स्टूडियो के घड़ी के अनुसार 1:56 हो रहे हैं और इसी के साथ ही हम भी आगे बढ़ रहे हैं कार्यक्रम में, यहाँ हिंदी फिल्मी गानों के कार्यक्रम में और मनी टॉक्स में। और आपको दोस्तों याद दिला दूं कि 2:00 ही आप सुन पाएंगे आकाशवाणी के दिल्ली द्वारा प्रसारित मिड डे न्यूज, तथा 2:15 पर दोपहर समाचार। फिर हम आपके साथ जुड़ेंगे 2:30 पर हिंदी फिल्मी गानों का सफर हिट्स ऑफ 90s के साथ। तो दोस्तों फिर से लेट अस गेट बैक टू हम जहां पर थे। दोस्तों जिंदगी में हम सभी ने कभी न कभी फर्स्ट एड बॉक्स जरूर देखा होगा, घर में, स्कूल में, ऑफिस में या यात्रा के दौरान। छोटी मोटी चोट लग जाए, अचानक तबीयत खराब हो जाए तो यही फर्स्ट एड बॉक्स सबसे पहले काम आता है डॉक्टर के पास जाने से पहले। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि पैसों की दुनिया में भी एक फाइनेंशियल फर्स्ट एड किट की जरूरत होती है। पुस्तक यानी कि बुक डियर वुमेन वी नीड टू टॉक मनी का 6th अध्याय द फाइनेंशियल फर्स्ट एड किट हमें इसी महत्वपूर्ण विषय के बारे में बताता है। दोस्तों जीवन में हमेशा हमारी योजनाओं के अनुसार नहीं होता सब कुछ। कभी अचानक बीमारियां आ जाती है, कभी नौकरी में बदलाव आ जाता है, कभी घर की कोई बड़ी जरूरत सामने आ जाती है तो। और ऐसे समय घबराहट केवल परिस्थिति की नहीं होती बल्कि पैसों की चिंता भी हमें परेशान करने लगती है। यही वजह है कि आर्थिक विशेषज्ञ हमेशा कहते हैं उम्मीद सबसे अच्छी चीज है लेकिन तैयारी उससे भी बेहतर चीज है। फाइनेंशियल फर्स्ट एड किट का मतलब है आपातकालीन बचत यानी कि इमरजेंसी फंड, आवश्यक बीमा सुरक्षा, महत्वपूर्ण वित्तीय दस्तावेजों का व्यवस्थित रिकॉर्ड, भरोसेमंद लोगों की जरूरती और जरूरी जानकारी, और संकट के समय के लिए

0: एक स्पष्ट कार्य योजना की, एक ऐसा प्लान जो आपके इमरजेंसी में काम आए। दोस्तों, यह तैयारी डर की वजह से नहीं की जाती बल्कि मन की शांति के लिए की जाती है, क्योंकि जब हमें पता होता है कि मुश्किल समय के लिए हमने कुछ व्यवस्था कर रखी है तो हम चुनौतियों का सामना कहीं अधिक आत्मविश्वास के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ कर पाते हैं। और खासकर महिलाओं के लिए यह अध्याय एक बेहद महत्वपूर्ण संदेश देता है। अपने परिवार की सुरक्षा का ध्यान रखने के साथ साथ अपनी आर्थिक सुरक्षा का ध्यान रखना भी उतना ही जरूरी है, क्योंकि मजबूत आर्थिक तैयारी केवल बैंक बैलेंस नहीं बढ़ाती बल्कि आत्मविश्वास यानी कि सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बढ़ाती है। दोस्तों, आज की यह खास बातचीत में हमने जाना अपने पैसों को करीब से पहचानना, आय, खर्च, बचत, निवेश जैसे आर्थिक स्तंभों को मजबूत बनाना, अपने सपनों को स्मार्ट गोल्स में बदलना और जीवन की इनसिक्योरिटीज और इमरजेंसीज के लिए फाइनेंशियल फर्स्ट एड किट तैयार रखना। याद रखिए, धनवान बनने से पहले आर्थिक रूप से जागरूक बनना जरूरी है, क्योंकि पैसा सिर्फ जेब में नहीं सोच में भी होना चाहिए। और आर्थिक आत्मविश्वास तब जन्म लेता है जब हम अपने पैसों से डरना छोड़कर उन्हें समझना शुरू करते हैं। तो इसी सोच के साथ आप सबसे हिंदी फिल्मी गानों के कार्यक्रम से विदा लेती हूं, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ। कुछ ही पलों में आकाशवाणी की दिल्ली द्वारा प्रसारित मिड डे न्यूज तथा दोपहर समाचार सुन पाएंगे और ठीक 2:30 पर हम फिर से लौटेंगे हिंदी फिल्मी गानों के सफर हिट्स ऑफ 90s के साथ।
1: Good afternoon. This is Akashvani and I am Valsa Williams with the Midday News. The headlines. President Draupadi Murmu to present Padma Awards during second round of civil investiture ceremony at Rashtrapati Bhavan this evening. Home Minister Amit Shah says Shyama Prasad Mukherjee's dream realized with abrogation of Article 370. National Security Advisor Ajit Doval says opening of Strait of Hormuz will strengthen energy security around the world. Enforcement Directorate conducts searches at 18 places in Tamil Nadu in connection with alleged teacher recruitment exam manipulation case. Lionel Messi becomes the highest goal scorer in FIFA World Cup history, leads Argentina into knockout stage. And in hockey, India to face Pakistan in opening match of the FIH Pro League in London today. President Draupadi Murmu will present the Padma Awards at the second civil investiture ceremony at Rashtrapati Bhavan this evening. Padma Awards, one of the highest civilian awards of the country, are conferred in three categories, Padma Vibhushan, Padma Bhushan and Padma Shri. The President will confer 65 Padma Awards today. More from our correspondent.
2: This year, the government has announced a total of 131 Padma Awards. These include 5 Padma Vibhushan, 13 Padma Bhushan and 113 Padma Shri Awards. Among the awardees, 19 are women, while 16 individuals will be awarded posthumously. The Padma Awards, namely Padma Vibhushan, Padma Bhushan and Padma Shri, are amongst the highest civilian awards of the country. Tennis legend Vijay Amritraj, actor Mammootty, playback singer Alka Yagnik and cricketer Rohit Sharma are among 65 prominent personalities who will receive the Padma Awards from the President today. Instituted in 1954, these awards are announced on the occasion of the Republic Day every year. The award seeks to recognize work of distinction and is given for distinguished and exceptional achievements in various fields and disciplines, including art, literature, education, sports, medicine, social work, science and engineering, public affairs and trade and industry. Soumya Sharan, Akashwani News, Delhi.
1: Vice President C.P. Radhakrishnan and Prime Minister Narendra Modi have paid tribute to Dr. Shyama Prasad Mukherjee on his martyrdom day. In a social media post, the Vice President described Dr. Mukherjee as a visionary leader, renowned educationist and staunch patriot. In a social media post, Prime Minister Modi said, Dr. Mukherjee dedicated his life to the country's development. He said Dr. Shyama Prasad Mukherjee's unwavering conviction, courage in public life and commitment to national interest continue to inspire generations. Union Home Minister Amit Shah today said that Dr. Shyama Prasad Mukherjee's vision had been realized with the abrogation of Article 370. Mr. Sharpe.

0: States last night to secure a place in the round of 32. With this win, Argentina has entered the knockout stage. Meanwhile, Algeria thrashed debutants Jordan 2-1 in a Group J encounter in Santa Clara, USA today. In hockey, the Indian men's hockey team will take on arch rivals Pakistan in the opening match of the FIH Pro League today. This will be the first encounter between India and Pakistan since their Asian Champions Trophy clash in Hulunbuir, China in 2024, where India emerged victorious with a 2-1 win. Benchmark domestic equity indices were trading nearly 1% lower in the afternoon session today. The Sensex plunged 653 points to 76,441, while the Nifty lost 220 points to 23,883 when reports last came in. And now before we end the bulletin, the headlines once again. President Draupadi Murmu to present Padma Awards during second round of civil investiture ceremony at Rashtrapati Bhavan this evening. Home Minister Amit Shah says Shyama Prasad Mukherjee's dream realized with abrogation of Article 370. National Security Advisor Ajit Doval says opening of Strait of Hormuz will strengthen energy security around the world. Enforcement Directorate conducts searches at 18 places in Tamil Nadu in connection with alleged teacher recruitment exam manipulation case. Lionel Messi becomes the highest goal scorer in FIFA World Cup history and leads Argentina into knockout stage. And in hockey, India to face Pakistan in opening match of FIH Pro League in London today. With that, we end the midday news.
1: Namaskar. आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा अनुच्छेद 370 को निरस्त करने से श्यामा प्रसाद मुखर्जी का सपना पूरा हुआ है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने कहा हुर्मुज जलडमरू मध्य के खुलने से विश्वभर में ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होगी। प्रवर्तन निदेशालय शिक्षक भर्ती परीक्षा में कथित धोखाधड़ी मामले में तमिलनाडु में 18 स्थानों पर तलाशी अभियान चला रहा है। लियोनेल मेसी फीफा विश्व कप के इतिहास में सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बने। अर्जेंटीना की टीम नॉकआउट में पहुंची। और लंदन में एफआईएच हॉकी प्रो लीग के शुरुआती मैच में आज भारत का मुकाबला पाकिस्तान से होगा। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। इस दौरान 2 पद्म विभूषण, 7 पद्म भूषण और 56 पद्मश्री सहित कुल 65 पद्म अलंकरण दिए जाएंगे। एक रिपोर्ट।
2: इस वर्ष केंद्र सरकार ने कुल 131 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की है। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। पुरस्कार प्राप्त करने वालों में 19 महिलाएं हैं, जबकि 16 सम्मान मरणोपरांत प्रदान किए जाएंगे। पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में शामिल हैं। आज राष्ट्रपति 65 विशिष्ट हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित करेंगी। इनमें टेनिस के दिग्गज विजय अमृतराज, अभिनेता ममूती, गायिका अलका याग्निक और भारतीय क्रिकेट टीम की कप्तान रोहित शर्मा जैसे प्रमुख हस्तियां शामिल हैं। वर्ष 1954 में स्थापित किए गए यह पुरस्कार प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर घोषित किए जाते हैं। पद्म पुरस्कार कला, साहित्य, शिक्षा, खेल, चिकित्सा, सामाजिक कार्य, विज्ञान, लोक प्रशासन तथा व्यापार और उद्योग सहित विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट और विशिष्ट योगदान को मान्यता देने के लिए प्रदान किए जाते हैं। सौम्या शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: पद्म पुरस्कार विजेताओं पर आकाशवाणी पीपल्स पद्म और आकाशवाणी के अंतर्गत विशेष कार्यक्रम प्रसारित कर रहा है। इस श्रृंखला के माध्यम से श्रोताओं को पद्म पुरस्कार विजेताओं के जीवन और उनके योगदान की जानकारी दी जा रही है।
3: मैं रैप का काम सीखा, अंगूरी का काम सीखा है, मोटी चिकन मामूली का काम, तो इसमें सबसे बारीक काम एक मरूरी का ही होता है। तो मरूरी का काम जो है लगातार नहीं किया जाता है, ये बहुत ही फाइन वर्क होता है।
4: जब हमारे मेजॉरिटी कम्युनिटी का यूथ और माइनॉरिटी कम्युनिटी का यूथ एक दूसरे को समझने की कोशिश करे, वो ये जाने कि कश्मीर का जो एक नॉर्मल सिख के लिए वही गुलदस्ता जो कश्मीर जिसमें हमारे गांधी जी को किरण नजर आई थी या भारत का ताज के रूप में ये जो था, उसी गुलदस्ते को फिर से उजागर करने को बनाने के लिए हमने प्रयास करा।

0: ये कार्यक्रम आज एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर प्रसारित होगा। इन्हें न्यूज ऑन एआईआर ऐप और न्यूज ऑन एआईआर के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर भी सुना जा सकता है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के साथ ही डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का सपना साकार हो गया है। श्री शाह ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उन्हें देश के महानतम नेताओं में से एक बताया। उन्होंने कहा कि डॉक्टर मुखर्जी के योगदान ने देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
1: श्यामा प्रसाद मुखर्जी इस राष्ट्र के बहुत बड़े नेताओं में शुमार होते हैं, जिन्होंने कभी जीवन में कुछ भी प्रसिद्धि के लिए नहीं किया, और उनकी बनाई पार्टी भारतीय जनसंघ, जो अब भारतीय जनता पार्टी के नाम से जानी जाती है, गंगा से लेकर बंगाल के गंगा सागर तक भारतीय जनता पार्टी का साथ, और मूट जैसे सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने 60 साल के अंदर इनकी विचारधारा पर आगे बढ़ते बढ़ते आज देश को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास किया है।
0: नई दिल्ली में नेफेड के नीलामी पोर्टल के शुभारंभ पर श्री शाह ने कहा कि 23 जून भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए विशेष महत्व रखता है, क्योंकि इसी दिन श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने राष्ट्रीय एकता के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया था। विभाजन काल को याद करते हुए उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल को भारत का हिस्सा बनाए रखने में श्यामा प्रसाद मुखर्जी की महत्वपूर्ण भूमिका थी। गृहमंत्री ने अनुच्छेद 370 का भी जिक्र किया, जिसने जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा दिया था।
1: कश्मीर का राष्ट्रध्वज होता था, कश्मीर का संविधान अलग होता था, कश्मीर में एक अलग प्रधानमंत्री बैठते थे, कश्मीर में एक राष्ट्रपति भी बैठते थे। ये संकल्पना भारत की एकता और अखंडता के लिए बहुत खतरनाक। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने एक आंदोलन छेड़ा कि एक देश में दो विधान, दो निशान और दो प्रधान नहीं रहे।
0: इस अवसर पर गृहमंत्री ने किसानों की सीधी भागीदारी को मजबूत करने के लिए खरीद कार्यों में बिचौलियों की भूमिका को समाप्त करने का आह्वान किया।
1: आने वाले 2 सालों में सहकारिता मंत्रालय सुनिश्चित करेगा कि दलहन का एक दाना भी एनसीसीएफ और नाफेड में व्यापारियों के माध्यम से ना आए, सीधा किसानों के माध्यम से आए, जिससे मुनाफा पूरा किसानों के पास। हमने इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया है, अब इंफ्रास्ट्रक्चर को नीचे तक पहुंचाना है, और उसमें मैं मानता हूं कि नाफेड और एनसीसीएफ ने भी दृढ़ता के साथ शुद्ध तरीके से काम करने की शुरुआत करनी पड़ेगी, तभी जाकर परिणाम मिलेंगे।
0: नेफेड की प्रगति का जिक्र करते हुए श्री शाह ने कहा कि 12 साल पहले गंभीर वित्तीय कठिनाइयों का सामना कर रहा ये संगठन आज 74 लाख किसानों की सेवा करने वाला एक मजबूत संस्थान बनकर उभरा है।
1: नाफेड ने एक प्रकार से नेफिक्स .in, दृष्टि, ERP और नाफेड कल्याण, ये 4 पहलों की शुरुआत की, तो वो क्रांतिकारी इसलिए कि नाफेड जो 2014 में बंद होने की कगार पर आ गया था, आज नाफेड ये सारी पहल कर 500 करोड़ के मुनाफे के साथ, 30,000 करोड़ के टर्नओवर के साथ देश के 74 लाख किसानों की सेवा कर रहा है।
0: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि पिछले एक दशक में कृषि उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। उन्होंने खरीद प्रक्रिया को पारदर्शी और किसान हितैषी बनाने के लिए आधुनिक तकनीक का उपयोग करने हेतु नेफेड और राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ की टीमों को बधाई दी। उन्होंने बताया कि इस पोर्टल की सहायता से किसानों को 48 घंटे के भीतर सीधे उनके बैंक खातों में भुगतान प्राप्त हो जाता है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने कहा है कि होर्मुज जलडमरू मध्य के खुलने से विश्व भर में ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होगी। श्री डोभाल ने आज सुरक्षा से जुड़े नए खतरों और चुनौतियों के प्रति जागरूक रहने की आवश्यकता पर बल दिया। नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 16वीं बैठक में श्री डोभाल ने इस विषय पर चिंता व्यक्त की।
2: हमें सुरक्षा से जुड़े नए खतरों और चुनौतियों के प्रति जागरूक रहने की आवश्यकता है। गैर पारंपरिक खतरे राष्ट्रीय सीमाओं से आगे निकल चुके हैं, और पारंपरिक जवाबी कार्रवाई से निपटने के लिए उन्होंने अपने बचाव के तरीके भी विकसित कर लिए हैं। नई और क्रांतिकारी तकनीकें आतंकवाद के छिपे हुए रूप

0: रूप और तेजी से डिजिटल होती दुनिया में साइबर खतरे, ये सभी हमारे लिए एक बड़ा खतरा है।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज नई दिल्ली में अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रेर और भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने कहा कि वे भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर सार्थक चर्चा की उम्मीद कर रहे हैं। इस बीच श्री गोयल ने कहा कि भारत और अमेरिका मजबूत द्विपक्षीय व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने की दिशा में निर्णायक रूप से आगे बढ़ रहे हैं, जिससे दोनों देशों के लिए नए आर्थिक अवसर खुलेंगे और अमेरिका भारत आर्थिक साझेदारी में महत्वपूर्ण मजबूती आएगी। अल्पसंख्यक कार्य और मत्स्य पशुपालन तथा डेयरी राज्य मंत्री जॉर्ज कुरियन ने केंद्रीय मंत्रिपरिषद से इस्तीफा दे दिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तत्काल प्रभाव से उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। प्रवर्तन निदेशालय शिक्षक भर्ती परीक्षा में कथित धोखाधड़ी मामले में चेन्नई, तिरुचिरापल्ली, कोयम्बटूर और मदुरई में 18 परिसरों में तलाश अभियान चला रहा है। निदेशालय ने बताया कि ये कार्रवाई केंद्रीय अपराध शाखा द्वारा वर्ष 2017 में दर्ज की गई प्राथमिकी पर आधारित है। पुलिस ने इस मामले में 2021 में आरोप पत्र दाखिल किया था। लखनऊ आग की घटना में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है और उनमें से 4 को कल रात गिरफ्तार कर लिया गया। अलीगंज के एक एनिमेशन कोचिंग सेंटर में हुए इस हादसे में 15 विद्यार्थियों की मौत हो गई और 9 घायल हो गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर लखनऊ विकास प्राधिकरण, अग्निशमन विभाग और विद्युत विभाग के 4 अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। इस बीच फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी के विशेषज्ञों और विशेष जांच दल के सदस्यों के एक संयुक्त दल ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: घटनास्थल का मुआयना करने के बाद एसआईटी के सदस्य और एडीजी लखनऊ जोन प्रवीण कुमार ने कहा कि उनकी टीम सभी पहलुओं की गहन जांच करेगी और हर विभाग की जिम्मेदारियों का विस्तार से आकलन करेगी। दूसरी ओर फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की 6 सदस्यीय टीम ने आग लगने के कारणों का पता लगाने और घटनाक्रम स्थापित करने के लिए सबूत इकट्ठा किए। इस बीच लखनऊ विकास प्राधिकरण ने इमारत को गिराने का नोटिस जारी कर दिया है। 3 मंजिला इमारत के अनाधिकृत निर्माण को लेकर 2016 में भी इसे गिराने का आदेश जारी किया गया था, लेकिन 2 महीने से भी कम समय में इसे रद्द कर दिया गया था। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: अयोध्या में राम मंदिर में दान और चढ़ावे में कथित अनियमितताओं की जांच कर रही 3 सदस्यीय विशेष जांच दल एसआईटी ने आज अपनी प्रारंभिक जांच रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी। राज्य सरकार ने कथित वित्तीय अनियमितताओं और धन के दुरुपयोग की जांच के लिए इस उच्च स्तरीय पैनल का गठन किया था। एसआईटी के सदस्यों ने पिछले सप्ताह कई संदिग्धों और मंदिर ट्रस्ट के अधिकारियों से पूछताछ की। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज नई दिल्ली में अलनीनो के मौसम पर पड़ने वाले प्रभाव और कृषि पर इसके असर की समीक्षा के लिए एक बैठक की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री चौहान ने कहा कि अलनीनो की संभावित स्थितियों को देखते हुए सरकार किसानों के हितों की रक्षा करने और कृषि तथा खेती पर पड़ने वाले किसी भी प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। महाराष्ट्र में मॉनसून फिर से सक्रिय हो गया है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि मुंबई और आसपास के उपनगरों में आज लगातार 3rd दिन भी बारिश हो रही है।
3: मौसम विभाग ने जानकारी दी है कि दक्षिण पश्चिम मॉनसून मध्य अरब सागर के बाकी हिस्सों, मुंबई सहित महाराष्ट्र के कुछ और हिस्सों और मध्य व पूर्वी भारत के कुछ इलाकों में आगे बढ़ गया है। आज पुणे जिले के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले कुछ घंटों में मुंबई शहर, मुंबई उपनगर, पुणे, रायगढ़ और रत्नागिरी के घाट इलाकों में मध्यम से भारी बारिश की संभावना है। नागरिकों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। बड़ी प्रतीक्षा के बाद आई इस बारिश से नागरिकों को राहत मिली है। अगले कुछ दिनों में महाराष्ट्र के बाकी हिस्सों में बारिश से किसान बुआई का काम शुरू कर सकेंगे। कृषि विभाग ने किसानों को जरूरी मात्रा में बारिश होने तक बुआई में जल्दबाजी न करने की सलाह दी है। संगीता गोडबोले, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
1: मौसम विभाग ने आज पूर्वोत्तर और पश्चिम बंगाल की तराई वाले कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश के ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। तटीय कर्नाटक, कोंकण, गोवा, ओडिशा और तेलंगाना में भी कल तक तेज बारिश हो सकती है। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ और उत्तराखंड में आज गरज के साथ वर्षा और तेज हवाएं चलने का अनुमान है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूरदर्शी नेता, प्रख्यात शिक्षाविद और देशभक्त डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी को श्रद्धांजलि अर्पित की है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि डॉ मुखर्जी ने निडर होकर देश की एकता और अखंडता का समर्थन किया। प्रधानमंत्री

नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अपना जीवन देश के विकास के लिए समर्पित कर दिया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ये आकाशवाणी है। अमेरिका ने ईरान पर अस्थायी रूप से बड़े प्रतिबंध हटा दिए हैं। इनमें ईरानी मूल के कच्चे तेल, पेट्रोलियम और पेट्रोकेमिकल उत्पादों के उत्पादन, वितरण और बिक्री को अधिकृत किया गया है। अमेरिका के राजकोष विभाग ने बताया कि 60 दिन के लिए जारी किया गया सामान्य लाइसेंस 21 अगस्त तक प्रभावी होगा। फीफा विश्व कप में आज अमेरिका के सांता क्लारा में ग्रुप जे मैच में अल्जीरिया ने पहली बार खेल रहे जॉर्डन को 2-1 से मात दे दी। लियोनेल मेसी फीफा विश्व कप के इतिहास में सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बने। एक महत्वपूर्ण मुकाबले में अर्जेंटीना ने कल रात ग्रुप जे मैच में ऑस्ट्रिया को 2-0 से हराकर नॉकआउट में प्रवेश किया। एफआईएच प्रो लीग के शुरुआती मुकाबले में आज भारतीय पुरुष हॉकी टीम का सामना पाकिस्तान से होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, अनुच्छेद 370 को निरस्त करने से श्यामा प्रसाद मुखर्जी का सपना पूरा हुआ है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने कहा, होर्मुज जलडमरू मध्य के खुलने से विश्व भर में ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होगी। प्रवर्तन निदेशालय शिक्षक भर्ती परीक्षा में कथित धोखाधड़ी मामले में तमिलनाडु में 18 स्थानों पर तलाशी अभियान चला रहा है। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

श्रोता दोस्तों, आरजे नूरी के साथ आकाशवाणी के और एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर आप सभी का स्वागत करते हैं। आप सुन रहे थे हिंदी तथा अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली द्वारा प्रसारित। यह आकाशवाणी का एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज है, आकाशवाणी के ईटानगर केंद्र से। श्रोता दोस्तों, 2:30 हो रहे हैं और इसी के साथ ही हम आगे बढ़ेंगे कार्यक्रम हिट्स ऑफ 90s के साथ। जी हाँ, अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज के इस खास संगीत सफर में, जहां आज रोज की तरह चलेंगे यादों की उस सुनहरी गली में, जहां हर धड़कन में प्यार था, हर दिल में सपने थे और हर युवा के दिल पर राज करता था एक नाम। जी हाँ, आमिर खान। 90 के दशक की बात ही कुछ और थी। कैसे प्लेयर की रील घूमती थी, प्रेम पत्रों में भावनाएं बहती थी और सिनेमा हॉल के बाहर लंबी कतारें सिर्फ एक झलक पाने के लिए लग जाती थी। और जब पर्दे पर आमिर खान नजर आते थे तो जैसे लाखों दिलों की धड़कनें एक साथ मुस्कुरा उठती थी। उसकी मासूम मुस्कान, चॉकलेट बॉय वाला आकर्षक अंदाज, आंखों में शरारत और चेहरे पर सादगी, युवाओं के लिए वे सिर्फ अभिनेता नहीं बल्कि एक एहसास बन गए थे। 80s में कयामत से कयामत तक के राज से लेकर दिल जो जीता वही सिकंदर, हम है राही प्यार के रंगीला तक, हर फिल्म के साथ आमिर खान ने युवाओं के दिलों में अपनी जगह और मजबूत की। कॉलेज के लड़के उनके हेयर स्टाइल और हर स्टाइल अपनाते थे तो लड़कियां उनकी मुस्कान पर फिदा हो जाती थी। उनके रोमांटिक गीत प्रेम की नई परिभाषा बन गए। पहला नशा सुनते ही दिल में हवा, जैसे दिल हवा में उड़ने लगता, और ए मेरे हमसफर जैसे गीत मोहब्बत का दूसरा नाम बन गए थे। दोस्तों, आमिर खान की सबसे बड़ी खासियत यह रही कि उन्होंने कभी सिर्फ स्टार बनने की कोशिश नहीं की बल्कि हर किरदार को पूरी ईमानदारी से जिया। यही वजह है कि दर्शकों ने उन्हें सिर्फ पसंद नहीं किया बल्कि दिल से अपनाया। तो आइए आज के इस खास कार्यक्रम हिट्स ऑफ 90s और आमिर खान एक यादगार सफर में सुनते हैं उनके कुछ बेहतरीन और दिल को छू लेने वाले नगमे, जो आज भी हमें 90 के दशक की खूबसूरत यादों में ले जाते हैं। तो बढ़ाइए वॉल्यूम, और इस वक्त जो भी जुड़े हुए हैं आपको बता दूं कि आप बने हुए हैं मेरे साथ यानी आरजे नूरी के साथ सफर हिट्स ऑफ 90s में, और सुन रहे हैं आमिर खान के फिल्मों के कुछ हसीन नगमे और यादों की गलियों में घूमने चलेंगे साथ साथ। शुरू करते हैं इस खूबसूरत गीत के साथ।

श्रोता दोस्तों, हम सुन रहे हैं आमिर खान के कुछ हसीन नगमे हिट्स ऑफ 90s में, और आप सुन रहे हैं हमें आकाशवाणी के ईटानगर की एफएम बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज पर, और सफर में मैं हूं आप सबकी रेडियो साथी आरजे नूरी। दोस्तों, आमिर खान की खूबसूरती के बारे में अगर कुछ कहना है तो बस यही कि मखमली खूबसूरती। मुस्कुराए तो ऐसा लगता था कि जन्नत के द्वार खुल गए। बहुत ज्यादा लग रहा है ना, ऐसा ही था। और अगर आप सुन रहे हैं हमें जो 90s के जमाने के नौजवान थे, तो आपको बिल्कुल भी बहुत ज्यादा एग्जेजरेटेड नहीं लगेगा, क्योंकि ऐसा ही था खूबसूरत। आज

60 के ऊपर है, यानी कि ऑलमोस्ट 70 या 70 के ऊपर, फिर भी उतने ही मासूम लगते हैं, उतने ही खूबसूरत लगते हैं। तो जवानी के दिनों में कितना खूबसूरत रहा होगा, अगर हम कहें कि उसकी मुस्कुराहट को ऐसा लगता था जैसे जन्नत का द्वार और उनकी आंखों में मदहोशी, तो ये बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। चलिए इसी मदहोशी को आगे बढ़ाते हुए सुनते हैं हिट्स ऑफ 90s में अगला गीत। जी हाँ, आमिर खान के ही फिल्म के ये खूबसूरत गीत।

दोस्तों आप यादों के सफर में हैं हिट्स ऑफ 90s आकाशवाणी के और एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो साथी आरजे नूरी के साथ सुन रहे हैं आमिर खान के 90s के सुनहरे नगमे। दोस्तों अगला गीत हम आपके लिए लेकर आए हैं बेहद ही संवेदनशील और बेहद ही खूबसूरत। चलिए यादों में खो जाते हैं हिट्स ऑफ 90s में आमिर खान के गानों के साथ।

दोस्तों 90 के दशक के इन खूबसूरत गीतों और आमिर खान की सुनहरी यादों के साथ हमारा यह विशेष सफर अब यही समाप्त होने को है। आज हमने महसूस किया कि क्यों आमिर खान सिर्फ एक अभिनेता नहीं बल्कि एक पीढ़ी की यादों का हिस्सा है। उनकी फिल्में, उनके गीत, उनकी मासूमियत और उनकी रोमांस ने लाखों दिलों को सपने देखना सिखाया। वक्त बदल गया, तकदीर बदल गई, मनोरंजन के साधन बदल गए, लेकिन आमिर खान के 90 के दशक के गीतों का जादू

आज भी वैसा ही बरकरार है। जब भी ये गीत बजते हैं, यादों की किताब के कुछ पल पन्ने अपने आप खुल जाते हैं और चेहरों पर एक प्यारी सी मुस्कान आ जाती है। इन्हीं सुनहरी यादों और मधुर धुनों के साथ अब हम आपसे अनुमति चाहेंगे, लेकिन आकाशवाणी के अरुण FM 103.1 में घर पर सफर जारी रहेगा। दोस्तों, कहते हैं कि संगीत से यूं ही जुड़े रहिए, मुस्कुराते रहिए और सुनते रहिए अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज, क्योंकि करते हैं दिल से दिल की बात गीतों के माध्यम से। दोस्तों, आपको फिर से याद दिला दूं कि हमारा चैनल अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज केवल एंटरटेनमेंट का नहीं बल्कि इंफरटेनमेंट का चैनल है, जहां आपके साथ हम जारी करते हैं देश दुनिया की ताजा तरीन खबरें, गीत संगीत किस्से कहानियां और जीवन के फलसफे। आपके लिए पेश करेंगे हिट्स ऑफ 90s, आमिर खान की यादों में से एक और खूबसूरत गीत, और इसी के साथ ही आपसे विदा लेंगे। और कुछ ही पलों में यानी कि 2:58 हो रही है, आप न्यूज हेडलाइंस सुन पाएंगे और 3 बजे का समय रहेगा मिशमी कमान श्रोताओं का कार्यक्रम का, और उसके तुरंत बाद 3:15 पर ताई खमती श्रोताओं का कार्यक्रम सुन पाएंगे। हम फिर से हाजिर होंगे आप सबके साथ चलने को एक और म्यूजिकल सफर पर बॉलीवुड अपडेट्स के साथ 3:30 पर। चलिए लीजिए सुनिए ये आखिरी गीत हिट्स ऑफ 90s, आमिर खान की यादें।

0: ชมนังอคิงนำนาลีในสตูดิโอไม่จีกันมาฟ้าฟ้าป้อยเน่จะหังมาเน่คำไตคำตีเฮาตือใครไม่สุดยอด
1: ดิลซีดิลตักบาตปอนชีมิลเต้มิลเต้สนัมโอ้
2: กีตสังกีต
3: ญาณและมโนรันจันเกกุลดัสเต้เซ่พยาร์บเรอัล
4: ฟาโซมิชมีคำานและไตคำตีश्रोताओं के कार्यक्रम को सुनने के बाद आप सभी का फिर से स्वागत कर रहे हैं आकाशवाणी के ईटानगर के एफएम बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर और मैं हूं आप सबके साथ रेडियो साथी आरजे नूरी। 3:30 हो रहे हैं और इसी के साथ ही हम आगे बढ़ेंगे कार्यक्रम बॉलीवुड अपडेट्स के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं एक और रंगीन दुनिया की खबर। दोस्तों बॉलीवुड की रंगीन दुनिया में समय कई बड़ी फिल्में नई ट्रेंड्स और दिलचस्प चर्चाएं सुर्खियों में हैं। तो आइए जानते हैं मनोरंजन जगत की कुछ ताजा और खास खबरें। सबसे पहले बातें करते हैं वरुण धवन की फिल्म है जवानी तो इश्क होना है की। डेविड धवन के निर्देशन में बनी यह रोमांटिक कॉमेडी दर्शकों को खूब पसंद आ रही है। फिल्म ने वर्ल्ड बॉक्स ऑफिस पर 70 करोड़ रुपए से अधिक का कारोबार कर लिया है और इसकी हल्की पुल्की कहानी तथा मनोरंजक अंदाज दर्शकों का दिल जीत रहे हैं। इस सप्ताह की सबसे चर्चित रिलीज है वेलकम टू द जंगल। अक्षय कुमार, संजय दत्त, सुनील शेट्टी और कई सितारों से सजी यह मल्टी स्टारर कॉमेडी 26 जून को सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है। फिल्म अपने विशाल कलाकार दल और मनोरंजन से भरपूर अंदाज के कारण पहले से ही चर्चा में है। रोमांस की चाहने वालों के लिए कॉकटेल 2 भी ट्रेंड में बने हुए। कुछ सीरियस सिनेमा लवर्स के लिए यह फिल्म बिल्कुल ही बेकार है, लेकिन जो हल्के पुल्के फिल्में देखना पसंद कर रहे हैं, जो रियलिटी से कोई लेना देना नहीं, बस मनोरंजन के लिए जो देखना पसंद कर रहे हैं, उनके लिए यह फिल्म बिल्कुल सही है। लेकिन जो सीरियस मूवीज देखते हैं, रियलिस्टिक मूवीज देखना पसंद करते हैं, उनके लिए ये बिल्कुल नहीं है। तो पहले ही आपको बता दे रहे हैं, आप ये नहीं कहोगे कि आरजे नूरी आपने तो कहा था कि ये फिल्म बहुत अच्छी है। अच्छी उन लोगों के लिए है जो हल्की पुल्की फिल्में देखना पसंद करते हैं। शाहिद कपूर, कृति सेनन और रश्मिका मंदाना की ये फिल्म हाल ही में रिलीज हुई है और सोशल मीडिया पर इसके गीतों और कलाकारों की केमिस्ट्री की खूब चर्चा हो रही है। एक और दिलचस्प खबर संगीत प्रेमियों के लिए, दक्षिण भारतीय सिनेमा के लोकप्रिय संगीतकार जीवी प्रकाश कुमार जल्द ही अपनी पहली कंप्लीट हिंदी म्यूजिक एल्बम नई नवेली के साथ बॉलीवुड में नई शुरुआत करने जा रहे हैं। ये बहुत ही दिलचस्प होगा किसी साउथ इंडियन म्यूजिक क्रिएटर के हिंदी सॉन्ग्स सुनना बड़ा ही मजेदार होगा। सोशल मीडिया और ट्रेंड्स की बातें करें तो वरुण धवन, शाहिद कपूर, कृति सेनन और अक्षय कुमार से जुड़ी पोस्ट, रील्स और फिल्मी गाने इन दिनों युवाओं के बीच खासे लोकप्रिय बने हुए। साथ ही आने वाली फिल्में बॉर्डर 2, 21 और धुरंधर द रिवेंज को लेकर भी दर्शकों में उत्सुकता बढ़ती जा रही है। यानी कि इन फिल्मों को लेकर काफी लोग चर्चा कर रहे हैं। दोस्तों बॉलीवुड की ताजा हलचलों और मनोरंजन जगत की खास खबरों का यह सिलसिला यही तक। सिनेमा केवल मनोरंजन नहीं बल्कि भावनाओं, सपनों और कहानियों का खूबसूरत संसार है जो हर दिन हमें कुछ नया देखने और महसूस करने का अवसर देता है। तो इसी उम्मीद के साथ कि आपका दिन खुशियों और सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर रहे, आपसे बॉलीवुड अपडेट से इजाजत लेते हुए आपके लिए सुनवाते हैं एक बेहद ही खूबसूरत गीत। और इसके साथ ही आपको बता दूं कि कुछ ही पलों में यानी कि 3:40 पर आप सुन पाएंगे वांचो श्रोताओं का समाचार। ये आकाशवाणी का ईटानगर का एफएम बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज़ अरुण एफएम है और सफर में मैं आपसे

0: हिंदी फिल्मी गानों के साथ हम फिर से हाजिर होंगे वांचो श्रोताओं के समाचार के बाद। बनी रहे आकाशवाणी के और एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज।
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
2: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात,
2: बस आपके नाम।
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम 103.1
3: मेगाहर्ट्ज। इजा आकाशवाणी ईटानगर अनि जुनलेन मनिचा आजम तारीख मंगलवार इपो हसों आजम बाजी पुनी मिनट मुए के पेशम लकम वांचो साइका पों कपई पों कहो पों फाले वंका वंसु। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ए अनि वन ए राष्ट्रपति भवन मा आसो अपो अंक्या सेकंड सिविल इन्वेस्टिचर सेरेमोनी टू सो मा पद्मा एवार्ड 2026 एवार्ड पो कोतो नै बो महाजा मा अनि पद्मा विभूषण अनत पद्मा भूषण बोमा पुनिबन आजोक पद्मा सिरिले मिहक पूजम आगा खनक अंग पद्मा एवार्ड्स को ऐ चांगतेले कहोमा आजंग बम हजा एवार्ड कप अंकिया खनक पोखा मखत खाके मि अंग टेनिस लेजेंड विजय अमृत राज एक्टर मामोटी प्लेबैक साइंग मी अलका यग्निक हिया खत खाक्या क्रिकेट बहुमी रोहित शर्मा अम हका ओमले तैले। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजित डोवाल ए मनी न्यू दिल्ली मा होथम बन आजोक अंगपा ब्रिक्स होथम डेज फॉर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर थम मीटिंग टू सो बातो चाइना डेज फॉरेन मिनिस्टर वांग यी फाइ जांगवन का जेले बोम होखी ए हजा मा देस निबा मके मामा मोहली होमोखोसत होलम हिया देस निबा होमोखोसत तुवन यो मकेती तो अमाया पै अंग तुंगता ले ngo te kya homokhosat thopong man pau mo wan se le haja ka external affairs ministry tham ka pa randhir jaiswal e ngai wan le qatar des doha honoi to kya indian embassy tham e haja des ras lafan honoi malle en kya deubar ja phuak kya guest phuak tham jan ma mihok ban ani indian khanak mi sa जी पुचंगा ले कटर डेज ऑथोरिटीज थम ए असिंग ले फादवाल वन क्या बो मा हजा जी एन क्या इंडियन खनक थम का को हम खा अंग होम जंगसोन कंडोलेंस का चु होले एम्बेसी थम ए बो मा हजा गेस फोक थम जन मा थम जन कपलो क्या खनक मिसा फो तो चु कटर डेज ऑथोरिटी थम ए मैले वे हुमे ले ngo tele tal chu ngai ban le bo ma ka ho ma ajang ba ba ma Indian External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar A. Chu haja Indian khanakpo hojikhosam ka angawatat ke chi mongto kakhu ke ka ngai banle. Arunachal Pradesh Health Minister Bayuram Wage A. Mani Naharlagun honui make Tomo Riba Institute of Health and Medical Sciences Trim Singham ma State Tele Radiology Hub Radiology Information System RIS here picture archiving and communication system PACS hoka double haja holy national health mission NHM makang am Arunachal Pradesh sankya pangnu jo hingam hayam pho digital radiology network holam phai aling atai ang songke tamotho changtele moma ka homa ajang haja hozen system makang am state makya tazong tazong asai alo honoi pho tokya hingam hayam pho ma la kya x-ray ct scan sia ma ma mo radiological images photo pho online holam makhang ye atikaman expert radiologist tham ang ahol chwa kai changtele nalagun honoi police tham e ta saban alipon azam azam kuti ngunsen investment fraud case खनकनु मक्या मुनसिन गान दिन ले लासा के केस का अंग हूँ मा इजलनी

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

श्रोता दोस्तों, चलिए जारी रखते हैं हिंदी फिल्मी गानों का सफर वांछित श्रोताओं के समाचार के बाद। और अगर आप जारी रखना चाहते हैं सुनना वांछित श्रोताओं का कार्यक्रम, तो ट्यून इन कर पाएंगे मीडियम वेव के 444.4 मीटर यानी 675 किलोहर्ट्ज आकाशवाणी के ईटानगर केंद्र। चलिए बढ़ते हैं आकाशवाणी के 103.1 मेगाहर्ट्ज पर हिंदी सिनेमा के गीतों का सफर।

श्रोता दोस्तों, यह आकाशवाणी का रेन एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज है और आप सुन रहे हैं हिंदी फिल्मी गानों का सफर आरजे नूरी के साथ। ठीक 4 बजे का समय रहेगा श्रोता दोस्तों ईदू मिशमी श्रोताओं का समाचार का, और इसके तुरंत बाद हम फिर से लौट कर आएंगे 4:05 पर हिंदी फिल्मी गानों के साथ, और यह सफर जारी रहेगा मेरे साथ यानी आरजे नूरी के साथ।

0: आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ तेरे दिल का मेरे दिल
1: से। अभी आप सुन रहे थे वांछ श्रोताओं का कार्यक्रम, ये आकाशवाणी का ईटानगर केंद्र है। श्रोताओं लीजिए प्रस्तुत है ईदू मिशिमी श्रोताओं का कार्यक्रम।
2: एचा आकाशवाणी ईटानगर थालापुची जान्यूलु एसो आंडोलिनी एतनेची ईदुमिशमी आहोला किजी दरगालंबो इंडिया मा चीफ प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू में आहा अपिता पद्म अवार्ड है। अबुनी मै दिल्ली मा चे राष्ट्रपति भवन माने अपि बहुमा कानी पद्म विभूषण इउ पद्म भूषण एदोने मगरहु ताहो पद्मश्री अवार्ड खेपगादा ला होगा अवार्ड गा इमोन ब्रह्मा टेनिस माचे आहोएगा विजय अमेरिट्रास एक्टर मामूती आशेगा अलका याग्निक दोने क्रिकेट माचे रोहित शर्मा खेपगादा ला होगा अहा राला पुची रिपब्लिक डे इनी एनागा महो मांगा पद्म विभूषण ला पगे मावासुरु खेगे इमो पद्म अवार्ड हावदा लाने आमु केतेगा बचिदा लगा इंडिया मचे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर एनएसए अजीत डोभाल में बुनी मै दिल्ली मने चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर वांग ये गो चौगा गने अतिकान्य बगा फूगा अखाकुची पुआ चे चगा ही बदा ला होगा ऐचाकान्य में अचंबया के मा योगा बा थोपुंडी जी पुआ चे चगा ही बदा ने एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री मचे ला होगा रणधीर जायसवाल में ला होगा बुनी निगा यामा कतर दोहा अतिकोची इंडियन एम्बेसी मा बोम बो आदुंगी योगे बामा हो इंडिया मा ची इमु होने नी शिगा बदा आ होगा इंडिया मा ची इमु अली गे आया आदुंगी माने शिगा बचा है इनुबिदा ने एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर में ला हेगा दा आ होगा नहलगन ट्रिम्स तामाकोमा नेशनल हेल्थ मिशन एनएचएम को कोमाने रेडियोलॉजी इंफॉर्मेशन सिस्टम आरआईएस दोने पिक्चर आर्काइविंग कम्युनिकेशन सिस्टम पीएसीएस बनरो दिल्ली रेडियोलॉजी हब आज तेगा बचे हेल्थ मिनिस्टर बियूराम वागे में बुनी आयोपया बदा आहोगा अरुणाचल प्रदेश अंतिकायम माचे काची चु तामा कोंदो ऑनलाइन मनेम आ होप को अतगा वचा मै सिस्टम आचु अजितगा बमा एक्सरे सीटी स्कैन बनेम एकशा रेडियोलॉजी जो खेपगादा ला होगा ने अली खय बपाओ मालोची तामा को मामा ऑनलाइन मने रिपोर्ट आजो हा आहे जिगावदा ला होगा अरुणाचल प्रदेश माचे इमु आलम्रोचे आम में पैया बा आयहाँ दाला ने असों हो का पिकोर दोने असों हो का सुलाग आलो पाऊं हिरुएगा असम गुवाहाटी माचे इमु के रोतेगला दाने नहलगन एसपी डॉक्टर नेलम नेगा में बुनी ला होगा ने ऋषिराज बोर कोतोकी लाएगा आय मु है राजेश अग्रवाल लाएगा मारवाड़ी इमु के में कॉम्प्लेन आजो हाजे पा आहानी रोहतेगा लाचिदा ला होगा आ उमे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया माचे जो आशा जी आई दो ने आसाम चीफ मिनिस्टर को क्या मारोगा दा लाने ए मने चीफ मिनिस्टर से ताला प्रा व्हाट्सएप मा पेगने इमुगा आमे एठोची ना लाई ने अली के पाऊ हीरो बाची बुदा ने पुलिस में ला होगा ने अतिकाची इमुमे अली लायागा आमे एठोची में है मोह प्रा अरुणाथु सूची ना लगा दा आ होगा अरुणाचल प्रदेश मचे पपुम परे ईशियांग दोने लोअर दिबंबे डिस्ट्रिक्ट ला प्रागे वोखो डिस्ट्रिक्ट मा एतानी ना प्रा आयों ब्रम ब्रो अरुणा मया दोने अबरिच हो सदा ने इतान को मीटरोलॉजिकल सेंटर मच में ला होगा फीफा वर्ल्ड कप आहो मचे लगे नॉर्वे में सेनेगल है कासो कानी गोलमाने अनगा बमा अल्जीरिया में जॉर्डन है कानिक है गोलमाने

0: ไอ้ตัวเนี่ยฟรานซ์เมอิรักเฮกาโซเจอร์โกลมันเนี่ยอันนี้ก็บัดาอ้าวก็บุญยังบุตรจีแมชมาอาร์เจนตินาแมมออสเตรียเฮกานิเจโรโกลมันเนี่ยอันนี้ก็บัมมาฮ์โปรตุเกลเนี่ยอุซเบกิสถานเอเบกาเจแมชเฮอบุนิยามาฮูบาเจเนี่ยอาสุนมิลิมาฮ์เนี่ยข้ากัดาอ้าวก็เอตันจีอิดุมิชมีอาโฮอัลิมาโอโนบายเอจ่าakaswani itanagar dibrugarh nali idmishmi program ma echamta ashe arhonso khya maho etani hendo rani mihu cha she che arje dil tak baat pahunche milte sanam o geet sangeet
1: gyan aur manoranjan ke guldaste se
0: pyar bhare alfazon mein
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज।
2: श्रोता दोस्तों वेलकम बैक टू आकाशवाणी के RNFM 103.1 मेगाहर्ट्ज़ RNFM जहां हम करते हैं दिल से दिल की बात गीतों के माध्यम से और आप आनंद उठा रहे हैं हिंदी फिल्मी गानों का सफर आरजे नूरी के साथ। जी हां दोस्तों इनु मिश्री श्रोताओं के समाचार के बाद हम फिर से वापस चल रहे हैं सफर पर हिंदी फिल्मी गानों के और श्रोतागण जो सुनना चाहते हैं इदु मिश्री श्रोताओं का कार्यक्रम तो आप ट्यून इन कर पाएंगे आकाशवाणी के ईटानगर के मीडियम वेव के 444.4 मीटर यानी 675 किलोहर्ट्ज। चलिए आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं हिंदी फिल्मी गाने।
3: सारेगामा कारवां डिजिटल ऑडियो प्लेयर इस तोहफे में है 5000 सुनहरे

0: श्रोता दोस्तों, आप आनंद उठा रहे थे बैक टू बैक बॉलीवुड सॉन्ग्स यानी कि हिंदी सिनेमा के फिल्मी गाने। अब हमारी इसी गीतों के साथ ही हमारी दूसरी प्रसारण सभा का ये खूबसूरत पड़ाव यहीं पे समाप्त होता है। उम्मीद है कि आज का यह साथ बातें और गीत आपके दिल में मुस्कान और सुकून छोड़ गए होंगे। और अब हमारी तीसरी प्रसारण सभा के इस सुनहरे सफर को आगे बढ़ाने के लिए स्टूडियो में पहुंच चुकी है आपकी अपनी आरजे मंजू, जो अपनी शानदार अंदाज और बेहतरीन प्रस्तुतियों के साथ आपकी शाम को और भी खूबसूरत बना देगी। तो कहीं जाएगा नहीं, जुड़े रहे अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज के साथ। प्रसारण अधिकारी टी तंजांग तथा तकनीकी अभियंता रितेश सिंह और मुझे यानी आरजे नूरी को दीजिए इजाजत। शुभ दिन। और आपको याद दिला दूं कि आरजे मंजू आप सबके साथ जुड़ेंगे ठीक 4:25 पर गुड इवनिंग ईटानगर के साथ।
1: आकाशवाणी ईटानगर डिब्रुगढ़ मजुसा डुबा सनी सोम पांग हाजेरा क्रक्रक पांग जून जिलिंग रंखरूम तारीख आरो रंगजा बलै बै खुमनि थोर जामासो रुंगरंग रोकवांग कोनका मामाइर मचो रंगजा गाव न्यू दिल्ली नंग राष्ट्रपति भवन नंग सिविल इन्वेस्टिचर सेरेमनी ततोंगची प्रजु नंगमुंग प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू र पद्मा अवार्ड 2026 पर कुचिंग ओफान्द प्रेसिडेंट र पद्मा विभूषण अवार्ड पर अनैरा पद्मा भूषण अवार्ड पर सनद परम पद्माश्री अवार्ड पर बायो करोक नांग आरो मुनला अवार्ड पर करोक्ष बंगा खग पद्मा अवार्ड पर कुछी परतुंग नंग टेनिस अकिंग खिलाड़ी विजय अमृत रास रनई एक्टर ममोटी रा प्लेबैक सिंगर अलका यांगनिक रनई क्रिकेटर रोहित शर्मा सिंह रडॉब अवार्ड पर प्रेसिडेंट जावंग सांगची मोरोक्त मचुपांग 26 जनवरी सा अचुंग सुर कई रचारा सुसर सी खाग पद्मा अवार्ड पर कुम रोखेप नांगमुंग सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल र चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर वांग जी यम मुंग नई तुम रोम कौनांग अमाय कैंग मानप रफान्त न्यू दिल्ली नांग मनीषा ब्राजील रशिया नई इंडिया चाइना परम साउथ अफ्रीका DRICS ब्रिक्स मुंगताम नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हिंग मीटिंग थलिंग डोवल नई वांग जी प रम तुंग रोक्त मीटिंग नंग डोवल र फांत प्रयुंग इंडिया नई चाइना मुंग नई तुंग नंग अहम रोम रौरे नो नई तुंग नंग अहम तोंग होहाई कुशी मो रोक्त नांगमुंग एक्सटर्नल अफेयर्स स्पोक्समैन रणधीर जायसवाल रंगो मुंग नई मीटिंग नंग रोम तोंग कौनंग हर मान रफान तुंग रोक्त तरुम नई सा कतर मुंग नंग रास लाफन हानंग फाइट लोकत प्रजु वासे नई खाग इंडियन मई रईत मोरऊ कतर ऑथोरिटीज मई रोक्त मोरऊ कतर कैपिटल दोहा नंग इंडियन एम्बेसी र फांद फाइ लोकत नंग रईकुत हमन मई म एम्बेसी र रन बारुंग रंग तथोक्त अरऊ फाइ लोकत नंग फाइसिंग त महिंग र मेडिकल ट्रीटमेंट लामरु मोरऊ कतर ऑथोरिटी मैर फांत मोरऊ इंडियन एम्बेसी रोक्त फाइ खोंद नंग इंडियन मई प रई खा म नई फाइसिंग रोंग खा म नांगमुंग एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर र नरी रंथबाद अरुणाचल प्रदेश हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर बेजुराम वागी र मनीषा नाहरलगुन नंग तोमो रिबा इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड मेडिकल साइंसेस थ्रीम्स नंग रेडियोलॉजी इंफॉर्मेशन सिस्टम नई पिक्चर आर्काइविंग एंड कम्युनिकेशन सिस्टम खुली जम स्टेट टेली रेडियोलॉजी हब खुली मोरोक्त इर टेली रेडियोलॉजी खुली रो रेडियोलॉजिस्ट मैहंग स्टेट पपमंग हॉस्पिटल ताम नई हेल्थ सेंटर ताम जम रतरांग मोरऊ डिजिटल टेक्नोलॉजी तखोंग तानर मोरोक्त आरो इर सिस्टम लाई जखोंग नंग हालू लमचा हावंग एक्सरे नई सीटी स्कैन रा बलांग रेडियोलॉजी केल एमएस सलाह ताम पर एक्सपर्ट मई म online ma kuruk ching oro te kuti khusra balaira la khusra nei ngan laulang te mai pa nalun police ra manisa lu te moro police ra phan te asam nang gawati habang pang bleong si mai risi ras bor kakuti police ra rangkhane tariksa lu te praju api jawang mobile phone pa banga laptop par ma kuti rasasi ra la bangayong paika thangchan phan gari dop sis kuri te ngoro te mai wasi rajesh agrawal ra banadwa police station nang complain likku kha ma case pa register kuri te ngoro nalugun sp

नमस्कार दोस्तों, तांगसा डायलेक्ट न्यूज के बाद स्वागत करती हूं एक बार फिर से आप सभी का अरुण एफएम प्रसारण सभा में। और हां, थैंक यू सो मच आरजे नूरी जी आगे का कार्यभार मुझे सौंपने के लिए, और उम्मीद करती हूं कि आपका ये शाम बहुत ही सुहाना बीते। दोस्तों, आज का संघर्ष कल की सफलता की कहानी लिखता है, इसीलिए कभी हार मत मानो और निरंतर प्रयास करते रहो। ये भी बता दूं श्रोता आपको कि इस वक्त स्टूडियो की घड़ी के अनुसार 4:26 हो रहे हैं और इसी के साथ ही शुरू होती है हमारी आज की अरुण एफएम प्रसारण सभा। ये भी बता दूं आपको कि इस वक्त स्टूडियो तथा अरुण एफएम ट्रांसमीटर में हमारे बीच मौजूद हैं प्रसारण निष्पादक गैरत तथा तकनीकी अभियंता गोलो कालो, और मैं हूं आपकी दोस्त, आपकी आरजे मंजू पामो।

0: दोस्तों, हमारी कोशिश हमेशा से यही रही है कि आपका भरपूर मनोरंजन कर सके हमारे गीतों के माध्यम से। एक से बढ़कर एक मजेदार गीत चुन चुन कर लाते हैं सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। तो इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए चलिए इस बार आपको लिए चलते हैं कार्यक्रम गुड इवनिंग ईटानगर की ओर।
1: गुड इवनिंग ईटानगर।

दोस्तों कार्यक्रम गुड इवनिंग ईटानगर में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी का। हमेशा की तरह मजेदार गीतों के साथ साथ कुछ जरूरी बातें भी होंगी आपके साथ। दोस्तों अक्सर हमने ये सुना है, शायद आपने भी सुना होगा कि बासी रोटी हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा होता है। ऐसा क्यों, चलिए जानते हैं इस बारे में। बासी रोटी यानी कि रात की बनी हुई रोटी जिसे सुबह खाया जाए, कई कारणों से बहुत ही लाभदायक माना जाता है। बासी रोटी में मौजूद स्टार्च का कुछ भाग रेजिस्टेंट स्टार्च में बदल जाता है। यह आंतों के अच्छे बैक्टीरिया के लिए लाभदायक होता है और पाचन को और भी बेहतर बनाने में मदद करता है। साथ ही ताजी रोटी की तुलना में बासी रोटी का ग्लाइसोमिक प्रभाव थोड़ा कम होता है, इसीलिए यह डायबिटीज के रोगियों के लिए भी और भी अच्छा माना जाता है। और फिर दोस्तों बासी रोटी धीरे धीरे पचती है जिससे भूख देर से लगती है, इससे अनावश्यक खाने की इच्छा कम हो जाती है, शरीर को ठंडक प्रदान भी करती है।

पारंपरिक मान्यताओं के अनुसार गर्मियों में दूध या छाछ के साथ अगर आप बासी रोटी खाते हैं तो ये शरीर को ठंडक पहुंचाती है। इसमें कार्बोहाइड्रेट पर्याप्त मात्रा में होते हैं जो शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। और दोस्तों, अगर इतने सारे लाभकारी गुण हैं बासी रोटी में तो क्यों ना खाया जाए बासी रोटी। और बासी रोटी का कहने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि 2-3 दिन पुराना रोटी आप खाएंगे। बासी रोटी कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि रात को बनाई हुई रोटी अगर आप सुबह खाते हैं तो ये हमारे लिए और भी ज्यादा लाभदायक होता है। चलिए, इसी तरह की और भी बातें करेंगे आज इस कार्यक्रम के दौरान। फिलहाल आइए आगे बढ़ते हैं और आनंद लेते हैं इस गीत का, जिसे हमने लिया है अनजाना अनजानी फिल्म से राहत फतेह अली खान आवाज में।

0: 7 surround sound? Yes. Advanced level 2 ADAS? Yes. Smart powered tailgate with gesture control? Yes. 5-star safety rating? Yes. Yes. It's got it all. Introductory price starts at just Rs 10.49 lakh.
1: And benefits up to Rs 80,000. Visit your nearest Maruti Suzuki Arena dealership to know more. Terms and conditions apply.
2: तो मेरे प्यारे दोस्तों, बताना चाहूंगी आपको कि आप आनंद ले रहे थे अनजाना अनजानी फिल्म के इस गीत का, राहत फतेह अली खान की आवाज में. और बता दो आपको कि आप इस वक्त सुन रहे हैं और आनंद ले रहे हैं कार्यक्रम गुड इवनिंग ईटानगर का, हमारे साथ अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर. दोस्तों, अक्सर बच्चों और बुजुर्गों को या फिर हम लोगों को दूध पीने की सलाह दी जाती है, पर कौन सा दूध बेहतर है, पैकेट वाला दूध या फिर शुद्ध गाय का दूध? दोनों में से कौन सा बेहतर है? कभी कभी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, हम भी होते हैं. तो चलिए आज इस बारे में बात करते हैं. दोस्तों, यदि शुद्ध गाय का दूध पूरी तरह स्वच्छ और मिलावट फ्री हो, यानी कि मिलावट रहित हो, तो ये सही है. शुद्ध गाय का दूध अधिक पौष्टिक माना जाता है. इसमें प्राकृतिक फैट, कैल्शियम, प्रोटीन और विटामिन अच्छी मात्रा में होते हैं. बढ़ते बच्चों की हड्डियों और मांसपेशियों के विकास में बहुत मदद करता है शुद्ध गाय का दूध. बुजुर्गों को भी कैल्शियम और प्रोटीन मिलता है. लेकिन हाँ, महत्वपूर्ण बात ये है कि अगर दूध की स्वच्छता या शुद्धता पर आपको शक हो, संदेह हो, तो बच्चों और बुजुर्गों के लिए पाश्चराइज यानी कि पैकेट दूध अधिक सुरक्षित होता है, क्योंकि इसमें हानिकारक बैक्टीरिया नष्ट कर दिए जाते हैं और ये संक्रमण का खतरा इसमें कम होता है. जो गाय का दूध जो होता है, शुद्ध दूध जो होता है, ये अगर मिलावट फ्री है तो ये बेहतर है. और इसे भी आपको बहुत अच्छी तरह से उबाल कर ही बच्चों या बुजुर्गों को देना चाहिए. लेकिन अगर आप पैकेट दूध की बात करते हैं तो ये बिल्कुल इसकी ये पैश्चराइज दूध होता है और ये बैक्टीरिया फ्री होता है. इसके बैक्टीरिया को पहले ही नष्ट कर दिया जाता है, तो इससे कुछ हार्म नहीं होता है बच्चों या बुजुर्गों को. तो आप देख लीजिए कि आपके लिए कौन सा बेहतर है. अगर आपको लगता है जो गाय का दूध आप लेते हैं वो जिसमें आपको संदेह है, तो बेहतर यही होगा कि आप पैकेट वाला दूध ही इस्तेमाल कीजिए. फिलहाल चलिए आगे लिए चलते हैं आपको इस अगले गीत की ओर, जिसे हमने लिया है राम लखन फिल्म से. आनंद लीजिए इस गीत का.

श्रोता राम लखन फिल्म के इसी गीत के साथ ही बताना चाहेंगे आपको कि कार्यक्रम गुड इवनिंग ईटानगर का आज का अंक यहीं पर समाप्त होता है। कल हम लेकर आएंगे एक और नया अंक कुछ और मजेदार बातों और गीतों के साथ। फिलहाल बता दूं आपको कि अब से थोड़ी ही देर बाद आप सुन पाएंगे आकाशवाणी के ईटानगर केंद्र से हिंदी और अंग्रेजी में समाचार, जिसके

0: अरुणाचल प्रदेश के नाहरलगन पुलिस द्वारा 34.33 करोड़ रुपए की कथित निवेश धोखाधड़ी मामले के मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, अनुच्छेद 370 को निरस्त करने से श्यामा प्रसाद मुखर्जी का सपना पूरा हुआ। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने कहा, हॉर्मुज जलडमरू मध्य के खुलने से विश्वभर में ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होगी। लियोनेल मेसी फीफा विश्व कप में इतिहास में सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बने। आज के मुकाबले में रात 10:30 बजे से पुर्तगाल और उज्बेकिस्तान आमने सामने होंगे। और लंदन में FIH हॉकी प्रो लीग की शुरुआत मैच में आज भारत का मुकाबला पाकिस्तान से होगा। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। इस दौरान 2 पद्म विभूषण, 7 पद्म भूषण और 65 पद्मश्री सहित कुल 65 पद्म अलंकरण दिए जाएंगे। एक रिपोर्ट।
1: इस वर्ष केंद्र सरकार ने कुल 131 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की है। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। पुरस्कार प्राप्त करने वालों में 19 महिलाएं हैं, जबकि 16 सम्मान मरणोपरांत प्रदान किए जाएंगे। पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में शामिल हैं। आज राष्ट्रपति 65 विशिष्ट हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित करेंगी। इनमें टेनिस के दिग्गज विजय अमृतराज, अभिनेता ममूती, गायिका अलका याग्निक और भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा जैसे प्रमुख हस्तियां शामिल हैं। वर्ष 1954 में स्थापित किए गए यह पुरस्कार प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर घोषित किए जाते हैं। पद्म पुरस्कार कला, साहित्य, शिक्षा, खेल, चिकित्सा, सामाजिक कार्य, विज्ञान, लोक प्रशासन तथा व्यापार और उद्योग सहित विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट और विशिष्ट योगदान को मान्यता देने के लिए प्रदान किए जाते हैं। सौम्या शरण, आकाश।
0: अरुणाचल प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री व्यूराम वहागे द्वारा नाहरलगन स्थित तोमो रिबा इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड मेडिकल साइंसेज ट्रिम्स में राज्य टेली रेडियोलॉजी हब, रेडियोलॉजी इन्फॉर्मेशन सिस्टम RIS तथा पिक्सर आर्काइविंग एंड कम्युनिकेशन सिस्टम PACS का उद्घाटन किया गया। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन NHM के तहत लागू की गई इस पहल का उद्देश्य अरुणाचल प्रदेश के अस्पतालों को और स्वास्थ्य केंद्रों को विशेष रेडियोलॉजिस्ट से जोड़ते हुए राज्यव्यापी डिजिटल रेडियोलॉजी नेटवर्क स्थापित करना है। नई व्यवस्था के तहत दूरस्थ स्वास्थ्य केंद्रों में तैयार किए गए एक्सरे, सीटी स्कैन तथा अन्य रेडियोलॉजिकल चित्रों को सुरक्षित रूप से ऑनलाइन विशेषज्ञों के पास व्याख्या और रिपोर्टिंग के लिए भेजे जाते रहेंगे और इससे रोगों के निदान में होने वाली देरी को भी काफी हद तक कम किया जा सकेगा। नाहरलगन पुलिस द्वारा 34.33 करोड़ रुपए की कथित निवेश धोखाधड़ी मामले में मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस द्वारा जारी एक विज्ञप्ति के अनुसार इस मामले में फर्जी सरकारी दस्तावेजों का इस्तेमाल, सरकारी अधिकारियों का प्रतिरूपण तथा उच्च स्तर के राजनीतिक और ब्यूरोक्रेट संपर्कों के झूठे दावे किए गए थे। आरोपी की पहचान असम के गुवाहाटी निवासी 41 वर्षीय ऋषिराज बोर कोतकी के रूप में की गई है, जिसे गत 20 जून को गिरफ्तार किया गया। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने 5 मोबाइल फोन और लगभग 1.5 करोड़ रुपए मूल्य का एक लग्जरी वाहन भी जब्त किया है। नाहरलगन पुलिस अधीक्षक डॉक्टर नीलम नेगा ने कहा है कि राजेश अग्रवाल द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर बंदरदेवा पुलिस थाने में मामला दर्ज किया गया था। पुलिस अधीक्षक द्वारा जनता से सतर्क रहने की अपील करते हुए कहा है कि सरकार स्वीकृतियों या सरकारी संरक्षण के जुड़े किसी भी दावे के संबंधित अधिकारियों से पुष्टि आवश्यक कर ले और केवल सोशल मीडिया या डिजिटल संचार पर भरोसा न करे। उन्होंने लोगों से संदिग्ध निवेश प्रस्तावों या किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी संबंधी गतिविधियों की जानकारी तुरंत निकटतम पुलिस थाने में दर्ज करने की भी अपील की है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज नई दिल्ली में अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन अगीर और भारत के अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर के साथ मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने कहा है कि वे भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर सार्थक चर्चा की उम्मीद कर रहे हैं। इस बीच गोर ने कहा है कि भारत और अमेरिका मजबूत द्विपक्षीय व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने की दिशा में एक निर्णायक रूप से आगे बढ़ रही है, जिससे दोनों देशों के लिए नए आर्थिक अवसर खुलेंगे और अमेरिका भारत आर्थिक साझेदारी में महत्वपूर्ण मजबूती मिलेगी। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के साथ ही डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी का सपना साकार हो गया है। श्री शाह ने डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उन्हें देश के महानतम नेताओं में से एक बताया। उन्होंने कहा कि डॉ मुखर्जी के योगदान ने देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

0: श्यामा प्रसाद मुखर्जी इस राष्ट्र के बहुत बड़े नेताओं में शुमार होते हैं, जिन्होंने कभी जीवन में कुछ भी प्रसिद्धि के लिए नहीं किया। और उनकी बनाई पार्टी भारतीय जनसंघ, जो अब भारतीय जनता पार्टी के नाम से जानी जाती है, गंगा से लेकर बंगाल के गंगा सागर तक भारतीय जनता पार्टी का साथ। और मूट जैसे सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने 60 साल के अंदर इनकी विचारधारा पर आगे बढ़ते बढ़ते आज देश को आगे बढ़ाने के लिए।
1: नई दिल्ली में नेफेड के नीलामी पोर्टल के शुभारंभ पर श्री शाह ने कहा है कि 23 जून भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए विशेष महत्व रखता है, क्योंकि इसी दिन श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने राष्ट्रीय एकता के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया था। विभाजन काल को याद करते हुए उन्होंने कहा है कि पश्चिम बंगाल को भारत का हिस्सा बनाए रखने में श्यामा प्रसाद मुखर्जी की महत्वपूर्ण भूमिका थी। गृहमंत्री ने अनुच्छेद 370 का भी जिक्र किया, जिसने जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा दिया था।
0: कश्मीर का राष्ट्र ध्वज होता था, कश्मीर का संविधान अलग होता था, कश्मीर में एक अलग प्रधानमंत्री बैठते थे, कश्मीर में एक राष्ट्रपति भी बैठते थे। ये संकल्पना भारत की एकता और अखंडता के लिए बहुत खतरनाक। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने एक आंदोलन छेड़ा कि एक देश में दो विधान, दो निशान और दो प्रधान नहीं।
1: इस अवसर पर गृहमंत्री ने किसानों की सीधी भागीदारी को मजबूत करने के लिए खरीद कार्यों में बिचौलियों की भूमिका को समाप्त करने का आह्वान भी किया।
0: आने वाले 2 सालों में सहकारिता मंत्रालय सुनिश्चित करेगा कि दलहन का एक दाना भी एनसीसीएफ और नाफेड में व्यापारियों के माध्यम से ना आए, सीधा किसानों के माध्यम से आए, जिससे मुनाफा पूरा किसानों के पास। हमने इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया है, अब ये इंफ्रास्ट्रक्चर को नीचे तक पहुंचाना है। और उसमें मैं मानता हूं कि नाफेड और एनसीसीएफ ने भी दृढ़ता के साथ शुद्ध तरीके से काम करने की शुरुआत करनी पड़ेगी, तभी जाकर परिणाम।
1: नेफेड की प्रगति का जिक्र करते हुए श्री शाह ने कहा है कि 12 साल पहले गंभीर वित्तीय कठिनाइयों का सामना कर रहे यह संगठन आज 74 लाख किसानों की सेवा करने वाला एक मजबूत संस्था बनकर उभरा है।
0: नाफेड ने एक प्रकार से नेफिक्स.इन, दृष्टि, ईआरपी और नाफेड कल्याण, ये 4 पहलों की शुरुआत की। तो वो क्रांतिकारी इसलिए कि नाफेड जो 2014 में बंद होने की कगार पर आ गया था, आज नाफेड ये सारी पहल कर 500 करोड़ के मुनाफे के साथ, 30,000 करोड़ के टर्नओवर के साथ देश के 74 लाख किसानों की सेवा।
1: अमेरिका ने ईरान पर अस्थायी रूप से बड़े प्रतिबंध हटा दिए हैं। इनमें ईरानी मूल के कच्चे तेल, पेट्रोलियम और पेट्रोकेमिकल उत्पादों के उत्पादन, वितरण और बिक्री को अधिकृत किया गया है। अमेरिका के राजकोष विभाग ने बताया है कि 60 दिनों के लिए जारी किया गया सामान्य लाइसेंस 21 अगस्त तक प्रभावी होगा। फीफा विश्व कप में आज अमेरिका के सांता क्लारा में ग्रुप जे मैच में अल्जीरिया ने पहली बार खेल रही जॉर्डन को 2-1 से मात दी। लियोनेल मेसी फीफा विश्व कप के इतिहास में सर्वाधिक गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए। एक महत्वपूर्ण मुकाबले ने अर्जेंटीना ने कल रात ग्रुप जे मैच में ऑस्ट्रेलिया को 2-0 से हराकर नॉकआउट में प्रवेश किया। आज के मुकाबले में रात 10:30 बजे से पुर्तगाल और उज्बेकिस्तान आमने सामने होंगे। एफआईएच प्रो लीग के शुरुआती मुकाबले में आज भारतीय पुरुष हॉकी टीम का सामना पाकिस्तान से होगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने कहा है कि हॉर्मुज जल डमरू मध्य के खुलने से विश्वभर में ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होगी। श्री डोभाल ने आज सुरक्षा से जुड़े नए खतरों और चुनौतियों के प्रति जागरूक रहने की आवश्यकता पर बल दिया। नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 16वीं बैठक में श्री डोभाल ने इस विषय पर चिंता व्यक्त की। मौसम विभाग ने आज पूर्वोत्तर राज्यों और पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इधर ईटानगर मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश के 5 जिलों तवांग, कुरुंग, कुमे, अपर सुबनसुई, शियोमी और सियांग को छोड़ अन्य सभी जिलों के लिए अगले 24 घंटों में अलग अलग स्थानों में गरज के साथ बिजली गिरने और बहुत तेज बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: This is Akashvani, the news read by Indu Chuku. President Draupadi Murmu will present the Padma Awards at the second civil investiture ceremony at Rashtrapati Bhavan this evening. Padma Awards, one of the highest civilian awards of the country, are conferred in three categories: Padma Vibhushan, Padma Bhushan and Padma Shri. The President will confer 65 Padma Awards today. This year, the government has announced a total of 131 Padma Awards. This include 5 Padma Vibhushan, 13 Padma Bhushan and 113 Padma Shri Awards. Among the awardees, 19 are women, while 16 individuals will be awarded posthumously. The Padma Awards, namely Padma Vibhushan, Padma Bhushan and Padma Shri, are amongst the highest civilian awards of the country. Tennis legend Vijay Amritraj, actor Mammootty, playback singer Alka Yagnik and cricketer Rohit Sharma are among 65 prominent personalities who will receive the Padma Awards from the President today. Vice President C.P. Radhakrishnan and Prime Minister Narendra Modi have paid tribute to Dr. Syama Prasad Mukherjee on his martyrdom today. In a social media post, the Vice President described Dr. Mukherjee as a visionary leader, renowned educationist and staunch patriot. In a social media post, Prime Minister Modi said Dr. Mukherjee dedicated his life to the country's development. He said that Dr. Syama Prasad Mukherjee's unwavering conviction, courage in public life and commitment to national interest continue to inspire generations. India has welcomed the Memorandum of Understanding, MOU, reached between the United States and Iran, addressing the 16th BRICS National Security Advisors meeting in New Delhi. National Security Advisor Ajit Doval said that the development will strengthen energy security around the world. He also welcomed the opening of the Strait of Hormuz and highlighted that it will help remove supply chain bottlenecks and address the shortages of commodities such as fertilizers and chemicals. India and the United States opened high-level trade talks today to salvage and recalibrate a proposed bilateral trade agreement after changes in U.S. tariff policy disrupted a framework negotiated earlier this year. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal met United States Trade Representative Jamison Greer and U.S. Ambassador to India Sergio Gore in New Delhi. Both sides are aiming to conclude an interim trade pact before the 24th of July, when Washington's temporary 10% cent tariff on imports from trading partners is set to expire. The Enforcement Directorate is conducting searches at 18 premises in Chennai, Tiruchirappalli, Coimbatore and Madurai in connection with the alleged teacher recruitment exam manipulation case. The Enforcement Directorate said the action is based on an FIR registered by the Central Crime Branch in the year 2017. It added that police had filed a charge sheet in the case in 2021. A three-member special investigation team probing the alleged anomalies in donations and offerings at the Ayodhya Ram Mandir has submitted its initial probe today. The report was submitted to Additional Chief Secretary, Home, Sanjay Prasad by SIT head Vijay Vishwas Pant, who is Commissioner of Lucknow. After submitting the report, SIT head Vijay Vishwas Pant said this is a preliminary report. The high-level panel was constituted by the state government to investigate alleged financial irregularities and misappropriation of funds. The team has submitted its initial course of the inquiry. Members of SIT questioned several suspects and Temple Trust officials over the past week. A joint team comprising experts from the Forensic Science Laboratory and members of the Special Investigation Team inspected the spot in Lucknow, where a massive fire claimed the lives of 15 people yesterday. That's all in this news bulletin. Namaskar.
3: अभी आप सुन रहे थे हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार। ये आकाशवाणी का ईटानगर केंद्र है। श्रोता लीजा प्रस्तुत है नोक्ते श्रोताओं का कार्यक्रम।
4: आकाशवाणी ईटानगर।

0: नौकते दैनिक न्यूज के बाद श्रोता एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अरुण एफएम प्रसारण सभा में। आइए इस मनोरंजन के सिलसिले को और भी ज्यादा आगे लिए चलते हैं और आनंद लेते हैं कार्यक्रम इवनिंग ड्राइव का।
1: द मारुति सुजुकी विक्टोरियस इज फाइनली हियर and has everything you could imagine in your SUV. Dolby Atmos 5.7 surround sound, yes. Advanced level 2 ADAS, yes. Smart power tailgate with gesture control, yes. 5-star safety rating, yes. Yes, it's got it all. Introductory price starts at just ₹10.49 lakh.
2: And benefits up to ₹80,000. Visit your nearest Maruti Suzuki Arena dealership to know more. Terms and conditions apply.

समा है सुहाना सुहाना, हवाओं में मस्ती से छा जाना, आपके शाम के सफर को कर देने और भी खुशनुमा। लेकर आते हैं हर शाम 6 बजे इवनिंग ड्राइव।

मेरे प्यारे दोस्तों, बताना चाहूंगी आपको कि आप आनंद ले रहे हैं कार्यक्रम इवनिंग ड्राइव का हमारे साथ अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर। पहला गीत आपने सुना पति पत्नी और वो 2 फिल्म से, और इस वक्त हमने पेश किया है आपके लिए इस गीत को भूल चूक माफ फिल्म से।

श्रोता अरिजीत सिंह के गाए हुए सैयारा फिल्म के इसी गीत के साथ ही कार्यक्रम इवनिंग ड्राइव यहीं पर समाप्त होता है, लेकिन आप निराश बिल्कुल भी मत होइए क्योंकि आगे हम लेकर आए हैं आपके लिए कार्यक्रम शाम की महफिल।

श्रोता, आपने आनंद लिया इस गीत का स्त्री टू फिल्म से, और बताना चाहूंगी आपको कि इस गीत के गायक कलाकार हैं विशाल मिश्रा। ये भी जान लीजिए कि इस वक्त आप आनंद ले रहे हैं कार्यक्रम शाम की महफिल का हमारे साथ अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर। चलिए लीजिए अब पेश है आपके लिए अगला गीत अतरंगी रे फिल्म से।

0: श्रोता जैस्लीन और सेविन बेन के गाए हुए इसी गीत के साथ ही कार्यक्रम शाम की महफिल यहीं पर समाप्त होता है। आइए आगे बढ़ते हैं और इस बार आपको लिए चलते हैं कुछ और हिंदी फिल्मी गीतों की ओर।
1: द मारुति सुजुकी विक्टोरियस इज फाइनली हियर and has everything you could imagine in your SUV. Dolby Atmos 5.7 surround sound, yes. Advanced level 2 ADAS, yes. Smart power tailgate with

0: gesture control. Yes, 5-star safety rating. Yes, yes, it's got it all. Introductory price starts at just rupees 10.49 lakh.
1: And benefits up to rupees 80,000. Visit your nearest Maruti Suzuki Arena dealership to know more. Terms and conditions apply.
2: अजीब गल है जी, यादों पे अपना कंट्रोल ही नहीं रहता है। मैंने ओपल याद नहीं जब मैं पैदा होया, मेरी पहली दिवाली या मेरा पहला खाया परौंठा, मैंने याद नहीं। पर दुनिया की सब तो मीठी आवाज जब मैं पहली बार सुनी, ओपल मैंने आज भी याद है। इन्ना सोना चेहरा मैंने कभी नहीं देखा था जी।

श्रोता गुजार, इस फिल्म के इसी गीत के साथ ही आपको बताना चाहेंगे कि अब से बस थोड़ी ही देर बाद आप सुन सकेंगे आकाशवाणी के ईटानगर केंद्र से आदि डायलेक्ट न्यूज, और हम जुड़ेंगे आपके साथ एक बार फिर ठीक आदि डायलेक्ट न्यूज के बाद।

वेलकम बैक दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप सभी का अरुण एफएम प्रसारण सभा में। तो चलिए श्रोता, इस बार आपको लिए चलते हैं कार्यक्रम आज के कलाकार की ओर।

आयुष श्रोता, स्वागत करती हूँ आप सभी का कार्यक्रम आज के कलाकार में। जी हाँ, हमेशा की तरह मजेदार गीतों के साथ साथ आज हम बातें करेंगे एक ऐसे कलाकार, एक ऐसे अदाकारा के बारे में जिन्हें हम सभी क्वीन कहकर जानते हैं। जी हाँ, बॉलीवुड में क्वीन के नाम से मशहूर कंगना रनौत के बारे में आज हम बातें करेंगे। मशहूर कंगना रनौत के फर्श से अर्श तक का शानदार सफर। बॉलीवुड में एक खास मुकाम बना चुकी कंगना रनौत आज किसी पहचान की मोहताज तो बिल्कुल भी नहीं है। सबसे ज्यादा नेशनल अवार्ड जीतने के मामले में वो दूसरे नंबर पर है। 20 साल के करियर में कंगना ने बहुत कुछ हासिल किया है। रुपेले पर्दे पर अपनी गहरी छाप छोड़ चुकी कंगना अब राजनीति में भी कदम रख रही है। हिमाचल से निकलकर कंगना ने बॉलीवुड की क्वीन बनने तक का शानदार सफर तय किया। वहीं अपनी बेबाकी और विवादों को लेकर भी वह खूब चर्चा में रहती है। कंगना रनौत का परिवार पहले राजस्थान में रहा करता था, जो बाद में हिमाचल प्रदेश में आकर बस गया। उनका जन्म 23 मार्च 1986 को हिमाचल प्रदेश के भांबला में अमरदीप रनौत और आशा रनौत के घर हुआ। उनके दादा ब्रह्मचंद्र रनौत IAS अधिकारी थे। कंगना एक रूढ़ीवादी परिवार से थी, ऐसे में उनका फिल्मों में जाने का फैसला उनके परिवार वालों को बिल्कुल भी रास नहीं आया। कंगना के पेरेंट्स चाहते थे कि वो डॉक्टर बने, लेकिन उनके ग्लैमर वर्ल्ड से उनका इस तरह से नाता जुड़ गया था कि वह ग्लैमर वर्ल्ड की ओर खींची चली जा रही थी। एक्ट्रेस बनने के लिए कंगना महज 15 साल की उम्र में अपना घर उन्होंने छोड़ दिया और वह मुंबई आ गई थी। यहां ना उनके पास रहने को घर था और ना ही खाने पीने का कोई ठिकाना था। कंगना इस दौरान कभी फुटपाथ पर भी सोया करती थी। कई सालों तक उन्होंने संघर्ष किया। एक्ट्रेस बनने के लिए वो मुंबई में दर दर भटकती रही और आखिरकार उनकी मेहनत रंग लाई। कंगना रनौत को करीब 20 साल की उम्र में एक्ट्रेस बनने का मौका मिला था। आउटसाइडर होने के चलते कई मुश्किलें झेलनी पड़ी उन्हें। कंगना की पहली फिल्म थी गैंगस्टर। साल 2006 में आई इस फिल्म में उन्होंने इमरान हाशमी और साइनी आहूजा जैसे एक्टर्स के साथ काम किया था। फिल्म सफल रही और उनकी एक्टिंग को भी दर्शकों ने काफी पसंद किया। हालांकि इसके बावजूद भी इंडस्ट्री में उन्हें बहुत संघर्ष करना पड़ा था। गैंगस्टर के बाद कंगना की वो लम्हे फिल्म भी आई, लेकिन ये कुछ अच्छा कमाल नहीं कर पाई। जबकि लाइफ इन मेट्रो एवरेज पर रही। इसके बाद शाकालाका बूम बूम भी फ्लॉप रही। हालांकि साल 2006 में फिल्म राज को टिकट खिड़की पर सफलता मिली थी। इसके बाद वह वादा रहा में नजर आई थी, लेकिन सफलता और असफलता के बीच एक वक्त ऐसा भी आया जब कंगना को काम मिलना भी बंद हो गया था। उन्हें ये मुश्किलें साल 2008 की अपनी हिट फिल्म फैशन के बाद झेलनी पड़ी थी। इस फिल्म में उन्होंने प्रियंका चोपड़ा के साथ मुख्य भूमिका निभाई थी। फिलहाल श्रोता, चलिए आगे बढ़ते हैं और आनंद लेते हैं एक गीत का गैंगस्टर फिल्म से, और हम बातें करेंगे कंगना रनौत के बारे में इस गीत के बाद।

श्रुता, आपने सुना इस गीत को लाइफ इन मेट्रो फिल्म से। दोस्तों, फैशन, राज और गैंगस्टर जैसी फिल्मों से अपनी पहचान बनाने के बाद कंगना रनौत के करियर में एक ऐसी फिल्म आई जिसके बाद उन्हें बॉलीवुड की क्वीन कहा जाने लगा। इस फिल्म का नाम है क्वीन, जो साल 2013 में आई थी। बॉक्स ऑफिस पर यह जबरदस्त हिट साबित हुई थी। हालांकि सिर्फ एक फिल्म के जरिए ये कहना सही नहीं होगा कि इसने उन्हें क्वीन का टैग दिलाया, बल्कि इसके पीछे उनकी सालों की मेहनत, बेहतरीन अदाकारी और इसके पीछे मिले अवार्ड्स और अचीवमेंट्स भी शामिल हैं। कंगना अपनी बेबाकी के लिए भी बेहद मशहूर है, ये सभी जानते हैं। वो किसी भी मुद्दे पर खुलकर बोलने में विश्वास रखती है। उन्होंने बॉलीवुड में नेपोटिज्म को लेकर भी कई बार मोर्चा खोला है। साल 2017 में उन्होंने करण जौहर के शो कॉफी विद करण पर उन्होंने करण को नेपोटिज्म का फ्लैग बियरर भी कहा था। इसी तरह से दोस्तों, कंगना रनौत अपनी बात हमेशा खुलकर बेबाकी से लोगों के सामने रखती है। साल 2022 में कंगना रनौत ने एबीपी न्यूज से बात करते हुए बॉलीवुड के ऊपर साउथ सिनेमा के तरजीह दी थी। उन्होंने तब अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा की बहुत तारीफ की थी और उन्होंने कहा था कि किसी भी एक्टर को या किसी भी एक्टर को कोई भी रोल निभाने के लिए बिल्कुल उस किरदार से जुड़े

श्रोता वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई फिल्म के इस गीत का आप आनंद ले रहे हैं। दोस्तों आज हम बातें कर रहे थे कंगना रनौत के बारे में। एक्ट्रेस ने अपनी अपकमिंग ड्रामा भारत भाग्य विधाता के प्रमोशन के दौरान अपने परिवार और अपने शुरुआती सफर के बारे में एक बार फिर खुलकर उन्होंने बात की और उन्होंने कहा कि उनका परिवार ग्लैमर की चकाचौंध से काफी दूर था। उनके परिवार का फिल्मों और फिल्मी खबरों से कोई भी लेना देना नहीं था। और इसी के साथ ही श्रोता बताना चाहेंगे आपको कि कार्यक्रम आज के कलाकार का आज का अंक यहीं पर समाप्त होता है। कल हम लेकर आएंगे एक और नया अंक और कुछ और मजेदार गीतों और एक और नए कलाकार के साथ। फिलहाल बता दूं आपको कि अब से थोड़ी ही देर बाद आप सुन पाएंगे आकाशवाणी के ईटानगर केंद्र से निशी डायरेक्ट न्यूज़।

0: श्रोता अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के ईटानगर केंद्र से प्रसारित निशी डायलेक्ट न्यूज। यह आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम प्रसारण है जिसे आप सुन रहे हैं 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। आइए श्रोता, इस बार आपको लिए चलते हैं कुछ और हिंदी फिल्मी गीतों की ओर।
1: The Maruti Suzuki Victoris is finally here and has everything you could imagine in your SUV. Dolby Atmos 5.7 surround sound, yes. Advanced Level 2 ADAS, yes. Smart Power Tailgate with gesture control, yes. 5-star safety rating, yes. Yes, it's got it all. Introductory price starts at just ₹10.49 lakh.
2: And benefits up to ₹80,000. Visit your nearest Maruti Suzuki Arena dealership to know more. Terms and conditions apply.
0: कार्यक्रम का पहला गीत श्रोता हमने पेश किया है आओ प्यार करें फिल्म से।

0: तो दोस्तों, दिल आशना है फिल्म के इसी गीत के साथ ही कार्यक्रम फिल्मी हिंदी फिल्मी गीतों का यहीं पर समाप्त होता है। ये भी बता दें आपको कि अब से थोड़ी ही देर बाद आप आनंद ले पाएंगे अपने ही पसंदीदा कार्यक्रम हेलो फरमाइश का।
1: The Maruti Suzuki Victoris is finally here. And has everything you could imagine in your SUV. Dolby Atmos 5.7 surround sound, yes. Advanced level 2 ADAS, yes. Smart power tailgate with gesture control, yes. 5-star safety rating, yes. Yes, it's got it all. Introductory price starts at just ₹10.49 lakh.
2: And benefits up to ₹80,000. Visit your nearest Maruti Suzuki Arena dealership to know more. Terms and conditions apply.
3: Hello, Farmaish. हेलो फरमाइश।
4: हेलो फरमाइश
3: जी, नमस्कार। हेलो फरमाइश, ईटानगर में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
4: नमस्कार सर। नमस्कार। मैं असम हाइलाकंदी से बोल रहा हूँ, बनी बीच से, बपन आचार्य।
3: बपन जी, जी जी जी, कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे हो आप?
4: हाँ जी, मैं बहुत ठीक हूँ, आप कैसे हैं?
3: जी मैं भी बहुत ही बढ़िया हूँ, अच्छा हूँ।
4: अच्छा अच्छा, और बारिश भी हो रहा है हमारे यहाँ पे, मौसम थोड़ा मतलब खराब है।
3: खराब है मौसम? बारिश होने से तो अच्छा होना चाहिए, ठंडी होगी।
4: दिन रात एक ही मतलब
3: ओके
4: है ना, इसलिए थोड़ा खराब हो गया।
3: कंटिन्यू हो रहा है ना बारिश? ओके, हमारे यहाँ पे भी वैसा ही है, बारिश लगातार हो रही है। जी जी,
4: तो आपके साथ बात हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब दिल को बहुत सुकून मिल रहा है अभी।
3: जी हमें भी ऐसा ही महसूस हो रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है, दिल गार्डन गार्डन हो रहा है।
4: हाँ जी, जरूर जरूर।
3: जी जी जी,
4: ठीक है। आज का गाना सुनना चाहता हूँ।
3: हाँ जी जरूर, कौन सा फिल्म का गाना सुनना चाहेंगे?
4: आज गाना सुना दीजिए, दीवाना मूवी से।
3: दीवाना मूवी से? ओके,
4: ऐसा गाना तो मैं सुर में गा के सुनाऊँ या?
3: जी जी जी बिल्कुल बिल्कुल, गा के सुनाइए। हाँ जी,
4: अच्छा ठीक है।

0: याद रहा, वो गाना सुना
1: क्या
0: दीजिए।
1: बात है, क्या बात है, आप गाते भी अच्छा है बापून जी। जी जी जी सुनकर
0: नहीं
1: अच्छा
0: थोड़ा
1: लगा।
0: थोड़ा मतलब ट्राई करता हूँ।
1: जी जी
0: हाँ
1: जी जो
0: गाने से मतलब दिल को थोड़ा सुकून मिलता है,
1: बिल्कुल बिल्कुल बहुत
0: चैन
1: सही
0: मिलता
1: कहा।
0: है।
1: जी
0: हाँ
1: जी जी
0: बिल्कुल
1: बिल्कुल
0: बिल्कुल।
1: सही कहा जी।
0: तो मेरा साथ श्रोता है, पहले मेरा बकेसार जी के लिए
1: थैंक यू। हाँ जी
0: और अनुप कुमार भट्टाचार्य है, सतवा

0: भट्टाचार्य है, सिंदूर दास जी है, और अभी जो श्रोता सुन रहे सारी श्रोता के लिए।
1: सभी को आप सुनाना चाहते हैं। जी जी
0: हाँ
1: तो बापूंदा,
0: ठीक
1: कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सुनते
0: हाँ
1: हैं
0: ठीक
1: आपके
0: है,
1: पसंद का गाना।
0: धन्यवाद,
1: ओके, नमस्कार।

0: हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश, नमस्कार, आकाशवाणी ईटानगर।
0: नमस्कार आकाशवाणी ईटानगर, हेलो फरमाइश कार्यक्रम में आपका हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं।
1: सर आपका भी स्वागत करता हूँ, और मैं हूँ आपका आकाशवाणी का रेडियो श्रोता श्रीकांत जोशी महाराष्ट्र से।
0: जी श्रीकांत जी, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कैसे हैं आप?
1: सर बहुत अच्छे हैं।
0: ओके।
1: और प्रोग्राम सुनते, लेकिन मैंने थोड़ा चेक किया, थोड़ा बदलाव आ रहा है प्रोग्राम में।
0: ओके थैंक यू।
1: पहले आप सोमवार को रिकॉर्डिंग करते थे, अब गुरुवार के दिन रिकॉर्डिंग करने लगे।
0: जी जी जी, सोमवार और गुरुवार दोनों दिन होते हैं आजकल रिकॉर्डिंग।
1: जी जी जी।
0: तो कहिए श्रीकांत जी, आज कौन सा फिल्म का गीत हम आपको सुनाए?
1: आज गाना सुनने का है मुझे, एक दूजे के लिए प्रेम का गाना सुनने का है, क्योंकि आकाशवाणी और हम श्रोता सब एक दूजे के साथ रहते हैं।
0: हाँ जी, बिल्कुल।
1: हम बने एक दूजे के लिए ये गाना सुनने।
0: क्या बात है, बहुत बढ़िया तरीके से आपने ये रिक्वेस्ट रखा है, फरमाइश रखा है, जरूर सुनाएंगे। और किन साथियों को आप सुनाना चाहेंगे?
1: सर पहले तो आपके लिए डेडिकेट करेंगे, क्योंकि आप भी बहुत अच्छी जानकारी देते हैं हम समय समय पर।
0: बहुत बहुत धन्यवाद जी। जी जी जी,
1: पहले आपके लिए और आपके आकाशवाणी में जितने भी उद्घोषक हो आप सर के, उन सबके लिए
0: जी।
1: और आकाशवाणी की में आकाशवाणी के जितने भी श्रोता ईटानगर में रहते उनके लिए
0: जी।
1: और जो अनुप कुमार भट्टाचार्य, सत्योपा भट्टाचार्य, अर्जुन प्रधान जी पक्कुरम घाटे, और उड़ीसा से चित्र सिंह जी और मनोज कुमार, उनके लिए।
0: ओके तो श्रीकांत जी, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम आपको आपके पसंद का गाना सुना रहे हैं।
1: धन्यवाद।

0: हेलो फरमाइश.
1: हेलो नमस्कार सर.
0: नमस्कार. हेलो फरमाइश में आपका स्वागत है.
1: मेरा शुभ नाम है देवजीत दास और मेरा गांव का नाम है बद्रीपार डिस्ट्रिक्ट कचर आसाम से. कुछ नाम दिल से मिटाया नहीं जाते, कोई दोस्ती को चेहरे बुलाया ना जाते. मुलासा तो ये मेरे दोस्ती दोस्ती की सिरा मिटाया न जाती.
0: क्या बात है, बहुत ही बढ़िया शुरुआत देवजीत दा. और कहिए आपके वहाँ पर मौसम कैसा है अभी?
1: मौसम तो अभी तो अच्छा है, अभी तो बारिश नहीं.
0: अच्छा.
1: सुबह 7-8 बजे बारिश हुई बहुत.
0: ओके
1: तो आपका वहाँ पर मौसम कैसा है?
0: हाँ जी, हमारे यहाँ पे भी बारिश हो रही है. बढ़िया है मौसम, बहुत ही बढ़िया है जी. तो कहिए, बढ़िया मौसम में आप कौन सा बढ़िया सा गाना सुनना चाहेंगे?
1: आज तो मैं बारिश का तो मौसम चल रहा है तो आपका वहाँ पर तो मैं एक बारिश का गाना सुनना चाहता हूँ. फिल्म का नाम है 1942 ए लव स्टोरी.
0: ओके.
1: और गाने का बोल है, गाना गाया है कुमार सानू और कविता कृष्ण मूर्ति ने.
0: ओके जी.
1: और ये गाना भी है, रिम जिम रूम जुम बिगी बिगी ऋतु में तुम हम तुम.
0: वाह वाह वाह, बारिश के मौसम में बारिश का बढ़िया सा गाना. और किन लोगों को आप डेडिकेट करना चाहेंगे?
1: पहले मेरा पिताजी सुनेगा जितिन कुमार दास, और माताजी है शिल्पारानी दास, बड़े भैया है जयजीत दास, और आपके लिए सर गाना भी.
0: थैंक यू.
1: और ये गाना कुछ मैं दोस्तों को सर डेडिकेट करूंगा.
0: जी जी जरूर.
1: मेरा आसाम से है, मेरे बड़े भैया है अनुप कुमार भट्टाचार्य, और है दीदी है छोटेबा भट्टाचार्य जी, और है रामतो बाई, और बापन दादा है, और हैलाकंडी से हैलाकंडी चंडीपुर से मेरे बहन लवली दास और बबली दास, और मेरा दादा है राजा मालाकार, और मेरा दादा है जवाहरलाल बर्मन, और है प्रेमोजी दादा. और अभी जो आकाशवाणी ईटानगर में सुनते सारे श्रोताओं को गाना डेडिकेट,
0: सारे श्रोताओं को आप डेडिकेट करना चाहते हैं. तो देवजीत दा, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. हम आपको आपके पसंद का गाना सुना रहे हैं 1942 ए लव स्टोरी फिल्म से.
1: बातें करके बहुत अच्छा लगा
0: जी. हमें भी बहुत ही अच्छा लगा. कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद.
1: ठीक है, नमस्कार.
0: नमस्कार.

0: हेलो फरमाइश।
1: हेलो
0: जी नमस्कार। हेलो फरमाइश।
1: नमस्कार सर। नमस्कार।
0: नमस्कार।
1: मैं कतर से बोल रहा हूँ, जवाहरलाल बर्मन।
0: जी जवाहरलाल जी, कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे
1: सर? थैंक यू सर।
0: कैसे हो आप, सुनाइए।
1: मैं तो बिल्कुल ठीक ठाक हूँ सर, आप कैसे हैं?
0: जी मैं भी बहुत ही अच्छा हूँ, बहुत ही बढ़िया, मैं मजे में हूँ। और अभी फिलहाल कहाँ से कॉल कर रहे हैं आप, घर से या फिर कहीं बाहर?
1: नहीं सर, मैं अभी तो मैं सिलचर से फोन कर रहा हूँ।
0: अच्छा, ओके।
1: मैं सिलचर में 2 दिन से सिलचर में आया है।
0: ओके, कुछ काम से?
1: तो हाँ जी हाँ,
0: ओके ओके
1: कुछ काम से आया हूँ।
0: अच्छा अच्छा और आपका घर कहाँ पे है?
1: घर तो सर सिलचर से 7-8 किलोमीटर।
0: अच्छा।

0: ओके, इतना दूर तो नहीं है ना? जी जी
1: जी हाँ
0: ओके, बढ़िया बढ़िया। तो काम कर लीजिए और काम के साथ साथ हमारा हेलो फरमाइश भी सुनिए। तो कहिए आज कौन सा फिल्म का गीत आपको सुनाए?
1: सर मुझे आज सुना दीजिए, वो 1982 में रिलीज हुआ डिस्को डेंसर।
0: ओह वाह वाह, क्या बात है। जी
1: महान गीतकार अंजन जी ने लिखा है वो गाना, और महान सुरकार बाप्पी लाहिड़ी जी ने उस सुर में गाना सजाया है।
0: जी जी
1: सुरेश वाडेकर और उषा मंगेशकर के जुगल सर में। उस पिक्चर में अभिनेता राजेश खन्ना के साथ मास्टर छोटू ने अभिनय किया है, और वो गाना है गोरो कीना कालोन की दुनिया है दिल वालों की।
0: दुनिया है दिल वालों की, क्या बात
1: जी
0: है।
1: हाँ, जी, जी, जी। ये गाना मुझे बहुत याद है क्योंकि 1982 में हम सब मिल के सर वो पिकनिक में गया था।
0: ओके हाँ हाँ
1: और वो पिकनिक पे वो गाना वो माइक पर वो ग्रामोफोन रिकॉर्ड में
0: अच्छा
1: वो गाना हमेशा बजा था सर।
0: ओ, क्या
1: साथ
0: बात
1: में
0: है।
1: तो हम सब ने डांस किया है।
0: अच्छा ओके जी जी
1: और
0: जी
1: खाना बना भी बहुत मजेदार हुआ और
0: ओके
1: बहुत अच्छा लगा है।
0: जी जी जी बहुत ही बढ़िया जमाना था ना वो, पुराना
1: और
0: दिन।
1: बहुत दूर में गया सर, वो पहाड़ी झरना पे हम सब गया है वो
0: पिकनिक
1: पिकनिक
0: मनाने।
1: तो गाना सुनने से वो दिन याद आता है।
0: ओहो क्या बात है।
1: जी हाँ सर, जी
0: जी
1: हाँ जी।
0: ओके,
1: तो
0: जरूर
1: बहुत अच्छा
0: सुनाएंगे।
1: लगा क्योंकि आज मिल गया हेलो फरमाइश,
0: जी जी जी जरूर
1: और मेरा
0: मिलेगा।
1: मन के बात आपको साथ शेयर करने को वो मिल गया तो
0: जी
1: बहुत
0: बहुत ही
1: अच्छा
0: अच्छा लगता
1: लगता
0: है
1: है।
0: जवाहरलाल जी, जब भी आप अपने बारे में पुरानी यादें शेयर करते हैं
1: जी
0: बहुत ही
1: हाँ
0: अच्छा लगा। हमें भी अपने पुराना जमाना का ये दिन याद आ जाता है। जी जी तो किन लोगों को आप डेडिकेट करना
1: सर,
0: चाहेंगे इस
1: डेडिकेट
0: गीत
1: तो करना चाहता हूँ सर, पहले आपकी
0: थैंक यू जी।
1: और प्रेमोजीत भाई ही और आशुतोष बाबू ही और अविनाश भाईया ही और सुनने वाले सब लिसनात के लिए सर।
0: ओके, सभी को आप सुनाना चाहते
1: जी
0: हैं। तो
1: हाँ
0: जवाहरलाल जी सुनते हैं आपके पसंद का गाना। कॉल करने के लिए बहुत बहुत
1: हाँ
0: धन्यवाद।
1: हाँ थैंक यू सर।

0: हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश आर्मी महोदय, शादर नमस्कार।
0: नमस्कार आपको भी हमारी ओर से। कहिए कैसे
1: जी
0: हैं आप?
1: मैं धन्यवाद धन्यवाद, मैं
0: जी
1: आपका वही पुराना जाना पहचाना ब्रज रेडियो श्रोता मित्र शारदा प्रसाद प्रजापति श्री राधा सिटी मथुरा उत्तर प्रदेश से आर्मी वागरा साहब से वार्तालाप कर रहा हूँ आकाशवाणी ईटानगर से। मानवर आप कैसे हैं?
0: क्या बात है शारदा जी, कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम बहुत ही बढ़िया हैं और हमारे यहाँ का मौसम भी बहुत ही बढ़िया है, बारिश हो रही है रिमझिम।
1: अरे
0: ठंडी
1: वाह,
0: जी जी जी
1: बधाई हो बधाई हो,
0: बहुत बहुत
1: आप
0: धन्यवाद।
1: तो आनंद से हैं। लेकिन हमारे यहाँ भगवान दिनकर भास्कर एकदम अपने प्रचंड किरणों की बरसात कर रहे हैं, गर्म गर्म हवाएं हैं, चिलचिलाती हुई धूप है और ऐसे वातावरण में बस मैं घर के अंदर रहते हुए आकाशवाणी के कार्यक्रम सुनते रहता हूँ, आप लोगों से वार्तालाप करता हूँ, अच्छा लगता है। लेकिन इस वक्त हमारे मथुरा वृंदावन रेड अलर्ट जारी है, मतलब
0: लू चलने के लिए। बाप रे,
1: जी
0: ये तो बहुत ही भयानक सिचुएशन है। कृपया अपने आपको बचाए रखे, लू से घर से बाहर ना निकले। जी
1: जी जी
0: हाँ
1: बिल्कुल,
0: जी
1: निसंदेह मैं आपकी बातों से सहमत हूँ और इसमें अमल भी कर रहा हूँ।
0: जी
1: घर के
0: जी
1: अंदर रहता हूँ, बच्चों के साथ में आनंद पूर्वक
0: क्या बात है।
1: और मौसमी फलों का खूब सेवन कर रहा हूँ, ठंडे
0: ओके
1: पानी का सेवन करता हूँ, लेकिन फ्रिज का पानी नहीं पीता हूँ, नॉर्मल जो सामान्य पानी होता है
0: जी जी
1: उसी का
0: जी
1: उपयोग करता हूँ।
0: ओके, बहुत ही अच्छी बात है। इसी तरह से हम अपने आप को गर्मी से लू से बचा के रख सकते हैं।
1: जी
0: जी जी
1: बिल्कुल,
0: तो कहिए शारदा जी, आज कौन सा फिल्म गीत हम आपको सुनाएं?
1: आज आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, फिल्म का नाम है ससुराल। एक सवाल तुम करो, एक सवाल मैं करूँ, हर सवाल का जवाब ही जवाब हो। ये प्यारा सा खूबसूरत गीत आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ आकाशवाणी ईटानगर पोषण हेतु।
0: जी जरूर सुनाएंगे। और डेडिकेशन
1: सर्वप्रथम हमारे परम आदरणीय वागरा साहब को याद करता हूँ
0: बहुत बहुत
1: और
0: धन्यवाद।
1: नूरी मैम को भी इस गीत में शामिल करता हूँ
0: जी
1: और हमारे ब्रज रेडियो श्रोता मित्र हैं शर श्री अविनाश जी, आशुतोष जी, संगीता जी, लोकेंद्र वर्मा है, राजू यादव जी हैं, राकेश कुमार जी हैं, पुरुषोत्तम जी हैं, पुष्कर नाथ जी हैं, पूरन वर्मा जी हैं और साथ में देवी शंकर शुक्ल हैं, विद्या रत्न शर्मा जी हैं और विजय कुमार पांडे हैं। इन सभी दोस्तों के साथ में ये प्यारा सा खूबसूरत गीत झूमता हुआ आकाशवाणी ईटानगर सुन रहे सभी श्रोताओं को सादर समर्पित करता हूँ।
0: बहुत बहुत धन्यवाद शारदा जी कॉल करने के लिए। तो सुनते हैं आपके पसंद का गाना ससुराल फिल्म से।
1: जी हृदय से धन्यवाद, सादर नमस्कार।
0: नमस्कार।

0: हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश, नमस्कार सर।
0: नमस्कार नमस्कार। हेलो फरमाइश में बहुत बहुत स्वागत है आपका।
1: जी सर, हम धेमाजी असम जिले में से बिमोल बसुमतारी बोल रहे हो सर।
0: जी बिमोल जी, कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे हैं आप? सुनाइए।
1: जी सर, हम ठीक है।
0: बढ़िया
1: अभी
0: है।
1: सर,
0: ओके, अभी दुकान में है आप?
1: जी सर, अभी थोड़ा खेत में हाल मार के आया हुआ है। अभी खाना पीना खाया, अभी जाएगा दुकान
0: अच्छा
1: में।
0: अच्छा अच्छा ओके ओके। मौसम कैसा है अभी? बारिश है या
1: मौसम
0: धूप?
1: सर अभी तो बारिश भी नहीं आया है, धूप भी नहीं हुआ है, इसलिए थोड़ा
0: ओ
1: ठंडा अच्छा है मौसम।
0: अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा ओके। और हाल मारने के बाद कौन सा फसल, कौन सा बीज आप बोएंगे, क्या लगाएंगे
1: ये
0: खेती
1: धान
0: में?
1: का खेती करेगा सर
0: अच्छा,
1: हम लोग।
0: धान का ही खेती ना। ओके,
1: जी
0: और
1: जी
0: सब्जी वगैरह होता है आपके खेती में?
1: सब्जी वगैरह तो होता है सर, करने से तो होता है।
0: अच्छा। ओ, लेकिन आप ज्यादातर तो धान का खेती करते हैं।
1: जी सर, हम मेरा इतना
0: ओके।
1: टाइम नहीं है ना, धान का खेती करके फिर दुकान में जाना पड़ता है,
0: ओ
1: इसलिए
0: जी
1: दूसरा
0: जी
1: खेती नहीं
0: जी
1: करते हम जाना।
0: ओके, ये डबल काम हो जाता है ना।
1: जी सर।
0: ओके ओके जी। तो कहिए, अभी
1: सर
0: फ्रेश होके कौन सा फिल्म का गाना आपको सुनाए?
1: जी सर, हमको करण उजन का ये गाना सुनने से होगा, जय माँ काली, ये गाना
0: ओके जी। हाँ जरूर सुनाएंगे।
1: अच्छा लगता है सुन के।
0: ओके जी। और किन लोगों को डेडिकेट करना चाहेंगे?
1: जी सर, हम लोग का मेरा दोस्त लोग के लिए डिलीट करना चाहता हूँ। हम लोग का अमोल बसुमतारी है, फाइकन मुंडा है, अंजलि बसुमतारी, सुनीता बसुमतारी, रमेश पत्ते, सुखविला मेहता, रमेश प्रजापति, अंशुला बसुमतारी, पूरण वर्मा, अविनाश, दुर्गेश्वर नवनपुरी, हितेंद्र दास, जोगेंद्र रंगपी, गोल्डी, अविनाश, शिकारी रंगपी, भगवान सिंह, राकेश, और आपको भी सर सबके लिए डिलीट करना चाहता हूँ सर।
0: ओके, सभी को आप सुनाना चाहते हैं। तो बिमल जी, कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम आपको आपके पसंद का गाना सुना रहे हैं
1: जी सर,
0: जी।
1: बहुत।

0: हेलो फरमाइश।
1: नमस्कार सर।
0: नमस्कार, हेलो फरमाइश, कार्यक्रम ईटानगर में बहुत बहुत स्वागत है आपका।
1: मैं अनवर बिहारी बोल रहा हूँ, ग्राम आवास जिला यमुन बिहार।
0: ओके अनवर जी, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप पहली बार कॉल कर रहे हैं हमें?
1: जी हाँ, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आज पहली बार आपके यहाँ मेरी कॉल लगी। मैं आपको और अपने सभी श्रोताओं को ईद उल अज़हा की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई पेश करता हूँ।
0: जी जी जी, हमारी ओर से भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं।
1: आरों की ईदों से हमें क्या वास्ता गालिब, हमारा जो चांद दिख जाए हमारी ईद हो जाए। इधर से चांद हम देखें, उधर से चांद तुम देखो, निगाहें जिन टकरा जाए हमारी ईद हो जाए।
0: क्या बात है, क्या बात है अनवर जी, बहुत ही बढ़िया तरीके से आपने शुरुआत की। और सबसे पहले हम आपका आकाशवाणी ईटानगर के हेलो फरमाइश कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आपने पहली बार हमें कॉल किया और उम्मीद करते हैं इसी तरह से आप आगे भी जुड़ते रहेंगे हमसे।
1: बिल्कुल
0: जी जी जी जी। और ईद की क्या तैयारी है?
1: ईद की तैयारी है यही, सुबह सुबह उठे, नहाया धोया, नए नए कपड़े पहना, कुर्ता पजामा, जा गए नमाज पढ़ी, वहाँ लोगों से मिले जुले
0: जी,
1: सब रिश्तेदारों के यहाँ गए। अभी मुझे कहीं जाना है लेकिन मुझे याद आ गया कि ईटानगर में रिकॉर्डिंग है।
0: अरे वाह,
1: करने बैठ गया।
0: क्या बात है, क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें याद किया।
1: रेडियो से मैं कभी भी पीछे नहीं रहता हूँ, हर जगह हर वक्त
0: जी
1: रेडियो की याद आती रहती है। मैं 12 साल की उम्र से रेडियो सुन रहा हूँ, 1988 से।
0: अरे वाह,
1: और रेडियो एक तरह से मेरे लिए समझिए खुली खुलाई किताब है।
0: जी,
1: गीत भी है, संगीत भी है, गजल भी है, फरमाइश भी है, इसमें आपको गाने भी हैं, मकालात भी हैं, मजामीन भी हैं, बहुत अच्छा लगता है। पुरानी बातें, पुराने ख्याल, रेडियो की पुरानी चीजें सुनकर बहुत अच्छा लगता
0: है।
1: आकाशवाणी का 90 वर्ष पूरा हो चुका है। हम अल्लाह से दुआ करते हैं किसी तरह हमारा आकाशवाणी के चलता फूलता रहे, परवान चौथा रहे।
0: बहुत बहुत धन्यवाद,
1: सुनने वाले कभी भी कम ना हो।
0: जी धन्यवाद, बहुत ही अच्छी बात कही आपने अनवर जी। तो कहिए आज इस पाक अवसर पर हम आपको कौन सा फिल्म का गीत सुनाएं?
1: मिल गया मुझे बहाना तेरी जीत का, ऐसी खुशी लेके आया चांद ईद का।
0: ओके
1: और मैं अपने दोस्तों का नाम ले लूं अगर आप इजाजत दें?
0: जी जी जरूर जरूर। हाँ जी,
1: हसीना मंसूर बेगम, नजवा नौशाही, पूनम रजी, बसंती ममता, रिजवाना शबनम, मोनिका, रिंकी तिवारी, तरन्नुम जाल, खुशी खजाना, प्रेम खुशी, अफरा सैयद, रिया मंसारी, रानी अर्चना, पूजा निशा, अनिता राघव, उदिता, सुनीता, मीना शर्मा, शाना शर्मा, सितारा बेगम, नसीम बेगम, शमा परवीन, मोहब्बत बेगम, तबस्सुम, तरन्नुम, गायत्री खालदा, नाजी हसन, पिंकी जी, सादिर बाना, और आप हमारे साथ।
0: बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरह से आपने अपने दोस्तों का नाम लिया इसी से पता चलता है कि आप रेडियो के कितने दीवाने हैं।
1: शुक्रिया
0: जी जी जी। तो सुनते हैं आपके पसंद का गाना, कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।

0: हेलो फरमाइश।
1: हाँ जी सर जी, नमस्कार सर।
0: नमस्कार, हेलो फरमाइश कार्यक्रम ईटानगर में बहुत बहुत स्वागत है आपका।
1: सर जी, लोकेंद्र वर्मा बोल रहा हूँ, नानाखेड़ा बस स्टैंड उज्जैन मध्य प्रदेश से सर।
0: जी लोकेंद्र जी, कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और
1: धन्यवाद सर जी।
0: जी और कहिए, क्या कर रहे हैं अभी?
1: बस बिल्कुल सर जी, दुकान जाने की तैयारी थी। आपके चैनल की याद आई कि आज कॉल रिकॉर्ड कराना है, तो मेरे किस्मत अच्छी थी, फर्स्ट बार डायल किया और मेरा कॉल लग गया है।
0: जी जी जी जी, कॉल जरूर लगेगा, आप तो हमारे रेगुलर श्रोता हैं। जी
1: जी बिल्कुल सर जी, आपके चैनल से जुड़े हुए 3-4 साल से ज्यादा हो गए हैं। अच्छा प्रोग्राम रहता है और अच्छी काफी मेहनत करते हैं आप प्रोग्राम को तैयार करने के लिए, क्योंकि एक प्रोग्राम को तैयार करने के लिए इतने 16 मित्रों की कॉल को रिकॉर्ड करना और कॉल के रिकॉर्ड के अनुसार उनके चॉइस के जो गाने रहते हैं उनको सेलेक्ट करना, टच मारना
0: जी,
1: और ये सब करके एक प्रोग्राम की एडिटिंग करके एक प्रोग्राम 45 मिनट का बनाना, एक अपने आप में एक बहुत ही काम जो एडिटिंग का रहता है, ये बहुत मेहनत वाला रहता है, ये मैं समझता हूँ इस चीज को।
0: बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने लोकेंद्र जी, बहुत ही मेहनत है इसमें भी। ऐसा नहीं है कि हम एसी के रूम में बैठे और आराम से रिकॉर्डिंग करें, गाना बजाएं, ऐसा
1: नहीं। नहीं
0: नहीं
1: सर जी, हम समझते हैं
0: जी,
1: जैसे
0: जी
1: कि जो वीडियोग्राफी करने वाले रहते हैं
0: हाँ
1: वो जो
0: जी
1: वीडियो
0: हाँ
1: के अंदर
0: जी
1: भी गाना ऐड करते हैं, तो
0: जी
1: ऐसा आपका भी बहुत उसके अंदर योगदान रहता है,
0: जी
1: इसलिए आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, आकाशवाणी परिवार को भी धन्यवाद।
0: जी बहुत ही धन्यवाद। तो कहिए, सैलून जाने से पहले कौन सा फिल्म का गीत आपको सुनाए?
1: आज गाना सुनना सर, ये हाथ की सफाई फिल्म का गीत है, इसमें गीत है वादा कर ले साजना तेरे बिना, ऐसा गीत है।
0: वाह वाह वाह जी, जरूर सुनाएंगे। और किन लोगों को सुनाना चाहेंगे?
1: हमारे मित्र हैं शारदा प्रसाद जी हैं, सुनील झा जी हैं, राम बाबू मालवी जी भोपाल से, योगेश जी हैं, गौतम जी हैं, तुकाराम यादव जी हैं, गंगाधर जी हैं, और ये सभी हमारे हेलो फरमाइश एकता रेडियो श्रोता ग्रुप के लिए रहेगा और आकाशवाणी ईटानगर के लिए भी यह गीत रहेगा कि वादा कर ले साजना कि तेरे बिना हम न रहे।
0: तो लोकेंद्र जी, कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सुनते हैं आपके पसंद का गाना हाथ की सफाई फिल्म से।

श्रोता, अभी अभी आपने आनंद लिया आपके ही पसंदीदा कार्यक्रम हेलो फरमाइश का। यह आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम प्रसारण है जिसे आप सुन रहे हैं 103.1 मेगाहर्ट्ज पर। बताना चाहूंगी आपको कि अब से थोड़ी ही देर बाद आप आनंद ले पाएंगे पाश्चात्य संगीतों का, आप आनंद ले पाएंगे वेस्टर्न मेलोडीज का।

तो श्रोता, बताना चाहूंगी आपको कि अब से बस कुछ ही पलों में आप आनंद ले पाएंगे पाश्चात्य संगीतों पर आधारित कार्यक्रम वेस्टर्न मेलोडीज का।

0: That is all for today, listeners. I hope you all enjoyed the songs today and that you'll catch us back tomorrow only on Akashvani Itanagar. This was your host Sam, signing off for the day. Goodbye.
1: श्रोता अभी आप आनंद ले रहे थे पाश्चात्य संगीतों पर आधारित कार्यक्रम वेस्टर्न मेलोडीज का। आइए श्रोता आगे बढ़ते हैं और आनंद लेते हैं कार्यक्रम भूले बिछड़े गीत का।

0: 산.
1: ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम मंथन। इसके अंतर्गत सुनिए पारदर्शी सार्वजनिक खरीद में गवर्नमेंट ई मार्केट जैम की भूमिका पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं जैम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मेहर कुमार और आकाशवाणी संवाददाता प्रियंका अरोड़ा।
2: मोदी सरकार की 12 वर्ष की यात्रा में कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां दर्ज हैं। ऐसी ही एक है डिजिटल इंडिया मिशन। डिजिटल सुशासन की एक मिसाल है गवर्नमेंट ई मार्केटप्लेस यानी जैम पोर्टल। एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसने लाखों सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों, स्टार्टअप्स और महिला उद्यमियों को नए अवसर प्रदान किए हैं। जैम की उपलब्धियों और भविष्य की योजनाओं पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में हैं जैम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मिहिर कुमार जी। नमस्कार मिहिर जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में।
3: धन्यवाद प्रियंका जी।
2: मिहिर जी, शुरुआत की जाए जैम की भूमिका के बारे में। 2016 में इसकी शुरुआत हुई, तो आज भारत की जब डिजिटल सुशासन की यात्रा की हम बात करते हैं तो जैम को आप किस प्रकार देखते हैं, कहाँ ये खड़ा है?
3: प्रियंका जी, 2016 के पहले की अगर हम बात करें कि किस तरह से सरकारी खरीदारी की प्रणाली थी, तो जो मैनुअल सिस्टम होता था, टेंडर्स होते थे, कुछ लोगों को पता होता था कि कहाँ पे खरीदारी हो रही है, सूचना का अभाव होता था, फ्रैगमेंटेड सिस्टम था, कुछ लोगों को पता लगा, कुछ लोगों को नहीं पता लगा। जब इसको सुधार करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसकी कल्पना की कि इसको कम्प्लीटली एक डिजिटल मार्केट प्लेस बने जिसमें कि हर किसी को पता लगे कि क्या खरीदारी सरकार करना चाहती है और हर एक छोटे से सूक्ष्म व्यापारी, बड़े व्यापारी, हर किसी को एक मौका मिले जानने का पहले, तो इस दिशा में बहुत सारे कदम सरकार ने उठाए डिजिटल इंडिया के इनिशिएटिव में। उसमें एक बड़ा कदम जो है गवर्नमेंट ही मार्केट प्लेस रहा। डीजीएसएनडी एक संस्था होती थी सरकारी खरीद के लिए, उसको बंद करके और गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस की शुरुआत जो है 9 अगस्त 2016 को हुई और ये अपने तरह का विश्व स्तरीय डिजिटल इनिशिएटिव है।
2: तो ये जो पारंपरिक खरीद प्रणाली थी उससे काफी अलग है और एक पारदर्शिता, जो सबसे बड़ी एक लोगों में संदेह रहता था पारदर्शिता का, वो लेकर आया है।
3: पारदर्शिता लेकर आया है और कंप्लीट एंड टू एंड डिजिटाइजेशन है, तो किसी को किसी से मिलने की आवश्यकता नहीं है, बात करने की आवश्यकता नहीं है। आप अगर एक छोटे व्यापारी हैं तो आप पोर्टल पे जाइए, देखिए, रजिस्ट्रेशन का सिस्टम आपके लिए, पूरी पंजीकरण जो है वो पोर्टल के माध्यम से कम्प्लीटली हो जाती है, किसी से बातचीत नहीं करने की आवश्यकता है। उसी तरह से खरीदारी के लिए भी आप पोर्टल पे जाइए, आपको जो सामान दिखता है आप वो ले लें। कहते हैं कि अपने में कम्प्लीट सॉल्यूशन देना और ह्यूमन इंटरफेस को हटा देना, जिससे कि शिकायतें आती हैं
2: जी,
3: तो उन शिकायतों को बिल्कुल खत्म कर दिया है।
2: पंजीकरण की बात हुई, अगर कोई व्यक्ति पंजीकरण कराना चाहता है जैम पोर्टल पर तो क्या व्यवस्था है और इसके अलावा क्या क्या चीजें चाहिए और क्या सेवाएं उपलब्ध कराता है जैम पोर्टल और नई क्या सेवाएं शुरुआत करने की योजनाएं हैं?
3: पहले मैं बताऊं कि जो कोई भी जो सेलर है, व्यापारी है, वो रजिस्टर करने के लिए जैम पोर्टल पे जाएगा तो उसको वहां पे बहुत सारी लर्निंग वीडियोस भी है जो ये बताएगी कि भाई अगर आप एक विक्रेता हैं तो आपको क्या करना चाहिए, कैसे आप रजिस्टर करेंगे, उसकी सारी स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया जो है वहां पे बताई गई है जिससे कि आप उस पे जुड़े। इसमें ये भी है कि हमारी काफी

0: इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, इतनी सर्विसेज हैं, तो उसको बढ़ावा देने में जेम की क्या भूमिका है? और छोटे व्यवसाय, हम एमएसएमई की बात करते हैं, तो उनको किस तरह से लाभ हुआ है?
1: देखिए, पहले तो एक जगह पे आपको पता लग रहा है कि क्या क्या सरकार खरीदारी करती है, तो एक तो अवसर आपको मिला जानने का कि भाई क्या क्या मौके हैं। दूसरी ये भी है कि उसके साथ आपको ये हम बताते हैं कि सरकार की जो खरीदारी की प्रक्रिया है वो क्या है, तो वो भी आप वहीं पे देख ले सकते हैं और उसके हिसाब से आप जुड़ सकते हैं। और ये कंप्लीटली हर एक स्टेप पे सारी की सारी जानकारी आपको जो है पोर्टल पे मुहैया होती है। मान लीजिए मुझे कोई सामान खरीदना है, मैं एक सरकारी संस्था हूं, तो मेरी टेंडर लगी तो टेंडर की इंफॉर्मेशन है, वो सभी लोगों को दिखता है, प्लस नोटिफिकेशन जाता है लोगों को कि भाई ये सरकार का टेंडर आया है। तो पहले जो होता था कि भाई इंफॉर्मेशन ही नहीं थी, जिसको इंफॉर्मेशन एसिमेट्री कहते हैं अंग्रेजी में, कि भाई कुछ लोगों को पता कुछ लोगों को नहीं, वो कम्प्लीटली खत्म कर दिया, पारदर्शिता कम्प्लीटली आ गई है। तो इससे हुआ क्या है कि धीरे धीरे जो व्यापारी छोटे हैं उन लोगों को पता लगने लगा, वो जुड़ने लगे, और आज की तारीख में अगर आप देखेंगे तो 24 लाख सेलर्स हैं जिन्होंने हमसे जुड़ने की अपनी प्रक्रिया पूरी करी है, और उसमें से करीब 4 लाख व्यापारी जो है एक्टिव है।
0: जी, तो जो जेम है, एमएसएमई के बारे में आपने बताया, महिला उद्यमियों, स्टार्टअप्स, एससी एसटी उद्यमियों को भी किस प्रकार से सहायता दे रहा है?
1: एक बात मैं बताना चाहूंगा कि सरकारी नीति ये है कि जो माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस है, जो लघु और सूक्ष्म व्यापारी हैं, उनको करीब सरकारी खरीद में 25% का मिलना चाहिए। हमारे पोर्टल पे वो 45% से ऊपर है, तो हमारे पोर्टल पे सूक्ष्म और लघु व्यापारी जो है बहुत एक्टिव है। एक तो वो बहुत बड़ा सशक्तिकरण। उसके अलावा अगर हम महिला उद्यमियों को देखें, तो महिला उद्यमियों ने जब हमारे साथ जुड़ी तो करीब 8 करोड़ का बिजनेस किया, आज 80,000 करोड़ से ऊपर का व्यापार कर रही हैं। जो स्टार्टअप है, जब वो जुड़े तो 2 करोड़ का उनका व्यापार हमारे साथ शुरू हुआ 2016 में, आज की तारीख में 50,000 करोड़ से ऊपर का ज्यादा का व्यापार वो कर चुके हैं। तो ये जो अवसर मिला है और इस अवसर को लोगों ने लिया है हाथों हाथ, तो ये अपने में दर्शाता है कि व्यापार करना सरकार के साथ जो है बहुत सरल हुआ है।
0: अगर आपको कोई याद हो ऐसा उदाहरण जो आप हमारे श्रोताओं के साथ बांटना चाहें, ऐसी ही किसी सेलर का या बायर का जो बहुत ही अच्छा हो और रचनात्मक और जो बाकी सभी प्रेरित हो, तो आप प्लीज हमारे साथ इसको बांटिए।
1: जैसे कि एक झारखंड की महिलाओं ने एक बार बिड किया दिल्ली एमसीडी के किसी बिड के लिए सर्विसेज देने के लिए, तो झारखंड के रांची के आसपास की एक महिला उद्यमी, उनको दिल्ली का एक ऑर्डर मिला। तो ये दर्शाता है कि कहाँ तक जो है अवसर मिल सकता है और कहाँ आदमी पहुंच सकता है। उसी तरह से आज जो है ऐसे कई उदाहरण हैं। स्टार्टअप में महिला बैंगलोर की, उन्होंने जो है डिफेंस में बहुत अच्छा काम किया है। बहुत सारी और महिलाएं हैं जो काम कर रही हैं।
0: प्रधानमंत्री ने अगर बात करें तो लगातार स्थानीय उत्पादों और वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा देने की बात कही है, तो उसमें जेम किस तरह से सहयोग कर रहा है?
1: हमारे पोर्टल पे हमने कुछ डेडिकेटेड स्टोर्स बनाए हैं वोकल फॉर लोकल को दिखाने के लिए, महिला उद्यमों को जो वो कर रही हैं, जो वो करना चाहती हैं, वो शोकेस करने के लिए। तो वो उन स्टोर्स के थ्रू जो पोर्टल से जो भी जुड़ता होगा उसे एक तो वो नजर आता है, दूसरा इसके अलावा हमारी कई संस्थाओं के साथ हमारा चलता रहता है कार्यक्रम, जिससे कि हम महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए उनको बताते हैं कि किस तरह से आप रजिस्टर कर सकते हैं, क्या क्या आपके पास अवसर हैं, और भारत सरकार की जो नीति है जैसे ODOP प्रोडक्ट्स हो उसको शोकेस करने का, टेक्सटाइल की कुछ हैंडलूम के प्रोडक्ट्स हैं, इम्पोरियम के प्रोडक्ट्स हैं, ये सारा जो है हम अपने यहाँ शोकेस करते हैं और उनके साथ फिर उनको बताते हैं अवसरों के बारे में जो हमारे पोर्टल के थ्रू हो सकता है।
0: जी, जैसे आपने प्रोडक्ट्स के बारे में बताया, तो जो जेम का प्रभाव है केवल खरीद तक सीमित नहीं है, स्वास्थ्य, सामाजिक कल्याण, जनसेवा जैसे क्षेत्रों में जेम का जो योगदान है वो किस प्रकार है?
1: सरकार की जो खरीदारी की प्रक्रिया है उसमें बहुत अहम बात होती है कि जो सामान आ रहा है वो समय से आए और वो जिस पर्पस के लिए आ रहा है वो पर्पस को फुलफिल कर दे। तो हम लोगों ने बातचीत करके दवाइयों की खरीद, वैक्सीन की खरीद, स्कूल के सामान की किट की खरीद, पोषण अभियान में ट्रैकर के सामान की खरीद, तो तमाम जितनी वेलफेयर इनिशिएटिव्स है सरकार की, जितनी भी जन कल्याण की योजनाएं हैं जिसके लिए खरीदारी की जाती है, वो सारी की सारी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को अपने यहाँ बनाया और उनको हमारी जो कि पारदर्शी प्रक्रिया है उसमें हम लोगों ने इनको काफी एफिशिएंटली इनको करने का भी मौका दिया। जो चीज करीब खरीदारी में मान लीजिए कि पहले 5 से 6 महीने लग जाते थे, अब हम लोगों ने उसको जो है घटा के करीब 2 महीने में कर डाला है। तो समान

0: सही समय पे आना और लोगों को मुहैया करा देना, ये हमारा जो है उद्देश्य रहा है।
1: अगर प्रौद्योगिकी की बात करें मिहिर जी, तो जैम के विकास में प्रौद्योगिकी की महत्वपूर्ण भूमिका रही है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो अब एक नया प्रचलन में आ रहा है और डेटा आधारित नवाचारों के बारे में आप क्या बताना चाहेंगी?
0: इसमें मैं कहना चाहूंगा कि चूंकि ये डिजिटल ऑनलाइन सिस्टम है तो इसके पास शुरू से ही ये कैपेसिटी कैपेबिलिटी भी रही कि यहाँ पे आप एनालिटिक्स जो कहते हैं कि जिस चीज को आप मीमांसा कर सकते हैं, उस मीमांसा की ताकत इसमें शुरू से ही रही। ये इस तरह से बना ही, इसकी कल्पना ही इस तरह से की गई। तो हम लोगों ने क्या किया है कि AI ML की यूज केसेस, जो पार्लेंस होती है, जो भाषा होती है AI प्रौद्योगिकी की, उसके हिसाब से हम लोगों ने यूज केसेस डिप्लॉय करी हैं अपने पोर्टल पे, जिससे हम देखते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे अगर मैं कहूँ, हमारे यहाँ एक टूल है प्राइस गैप एनालिसिस टूल, PGA टूल कहते हैं। अब हम देखते हैं कि कोई व्यापारी अगर हमारे यहाँ ऐसा प्रोडक्ट डालना चाह रहा है जिसका कि सामान का जो कीमत है वो हमारे हिसाब से उचित नहीं है, तो हम उनको आने नहीं देते हैं। जो माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच है वो ये है कि आप एक विश्वास के साथ चलेंगे, ट्रस्ट बेस्ड प्लेटफॉर्म। तो मैं दोनों के साथ विश्वास रखता हूँ, हमारे जितने व्यापारी हमारे साथ जुड़ते हैं और जो हमारे खरीदार करने वाले जो हमारे सरकारी संस्थाएं हैं, तो दोनों को विश्वास। तो इस विश्वास को बनाए रखने में कई बार इस लक्ष्मण रेखा को लोग न क्रॉस कर लें, उसके लिए हम लोगों ने AI ML से ये कोशिश करी है कि हम आपको बताएं कि क्या आप कर सकते हैं और कहां ये लक्ष्मण रेखा अगर आप क्रॉस करने की कोशिश कर रहे हैं तो हम आपको रोकने की कोशिश कर रहे हैं।
1: बिल्कुल, सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास, जन कल्याण के साथ आगे बढ़ रहे हैं और हर विभाग आगे ऐसे ही बढ़ रहा है। कई लोग ये सोचते हैं जब हम विश्वास की बात कर रहे हैं कि जो जैम है वो केवल बड़े व्यवसायों के लिए है, तो जो छोटे उद्यमी हैं, जो स्टार्टअप्स हैं और या पहली बार भाग लेने वाले विक्रेता हैं, उनके लिए जैम क्या अवसर देता है?
0: देखिए, जो सरकारी खरीद की जो मूलभूत नीति होती है उसमें हमें ये कहा जाता है और हम उसको अपने यहाँ ढाल के रखे हैं कि भाई सभी को हमें बराबरी का हक देना है। तो कोई छोटा व्यापारी ये ना समझे कि मैं छोटा हूँ तो मुझे ये अवसर कम मिलेगा। तो पहले तो है इक्विटेबल ट्रीटमेंट ऑफ सप्लायर, जो कहते हैं बिल्कुल मूलभूत नीति होती है, वो हमारे यहाँ रूल इंजन में ही डाला हुआ है। तो उससे ये नहीं हो सकता कि कहीं कोई भी उसको तोड़ने की कोशिश करेगा। और दूसरा जो हमारा लगातार रहा, हमारे यहाँ स्टार्टअप के लिए एक स्टार्टअप रनवे, एक शोकेस भी है, प्लस स्टार्टअप के साथ बहुत सारी संस्थाओं के साथ हमारी बातचीत होती रहती है। तो नए जो उनके प्रयास हैं उनके बारे में लोगों को बताना, उनको हमारे पोर्टल पे अवसर देना आने के लिए, इस तरह से हम उनको जोड़ना चाहते हैं। बड़े व्यापारियों के बराबर ही हम हक देते हैं।
1: विकसित भारत के लक्ष्य की बात करें, जो 2047 तक लक्ष्य रखा गया है, उसकी दिशा में आगे बढ़ते हुए आप सुशासन, आर्थिक विकास और राष्ट्र निर्माण में जो जैम की भूमिका है उसको आप किस तरह से देखते हैं?
0: राष्ट्र निर्माण की जो अभी हमारे विकसित भारत की 2047 की जो पहल है, उसमें बहुत आवश्यक है कि जो सरकार की नीतियां हैं, जिसमें मेक इन इंडिया एक बहुत बड़ी नीति है, दूसरी नीति ये है कि आप माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस को बराबर का हक देंगे, उसको हम लोग हमेशा लेके चल रहे हैं। और हमने ये भी सोचा हुआ है कि धीरे धीरे हम, हमारी पहल ये है कि हम राज्यों तक भी पहुंच रहे हैं, केवल केंद्र के बायर ही नहीं, राज्य के बायर, राज्य के भी जो खरीदार हैं उनसे भी हम बातचीत कर रहे हैं, जिससे क्या हो कि ये जो नेशनल पब्लिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल है, ये तमाम गुड्स एंड सर्विसेज जो खरीदारी हो रही है उसको सरकार को उसमें सेविंग्स दिलाए, उसमें करप्शन फ्री रखे और उसको सभी लोगों को, जिसको हम कहते हैं ना कि इंक्लूसिव डेवलपमेंट, उसकी तरफ लेके जाए। तो ये हमारी प्रयास रहेगा और बहुत बड़ा जो इसमें रोल है वो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस इसको बढ़ाने में रहे।
1: बिल्कुल, और अंत में यही जानना चाहूंगी कि आप उन उद्यमियों, स्टार्टअप्स और जो महिला नेतृत्व वाले उद्यमों को और जो युवा जो भाग लेना चाहते हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे?
0: जैम पोर्टल एक बहुत ही बड़ी पहल है सरकार की, अवसरों का द्वार है, और मेरी यही गुजारिश है सभी लोगों से, यही विनती है, यही संदेश है हमारी तरफ से कि आप ये न सोचें कि सरकार के साथ काम करना कठिन है, सरकार के साथ काम करना बहुत आसान है। मेरी यही गुजारिश होगी लोगों से, पहल करें, आए और जैम के साथ जुड़ें और अपना व्यापार बढ़ाएं।
1: जी हाँ, निसंदेह श्रोताओं, डिजिटल क्रांति के इस दौर में सरकारी खरीद व्यवस्था को पारदर्शी, तेज और सुगम बनाने में गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस यानी जैम पोर्टल ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और ऐसे ही ये और भी नई सेवाएं और सहूलियत उपलब्ध कराता रहेगा। मिहिर जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, हमसे ढेर सारी चर्चा की, इसके लिए धन्यवाद।
0: धन्यवाद प्रियंका जी।
2: अभी आप सुन रहे थे पारदर्शी सार्वजनिक खरीद में गवर्नमेंट ई मार्केट जैम की भूमिका पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे जैम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मेहर कुमार और आकाशवाणी संवाददाता प्रियंका अरोड़ा।
3: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि बदलते वैश्विक परिदृश्य में सुरक्षा सहयोग को मजबूत करने तथा आतंकवाद और साइबर सुरक्षा को लेकर उभरती प्रौद्योगिकी तक साझा चुनौतियों से निपटने में ब्रिक्स की महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रधानमंत्री ने आज शाम ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका सहित ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों तथा वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारियों से मुलाकात की। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता व्यवहारिक सहयोग को बढ़ावा देने, ग्लोबल साउथ की प्राथमिकताओं का समर्थन करने और एक सुरक्षित, अधिक संरक्षित तथा समावेशी विश्व में योगदान देने का प्रयास करेगी। इस बीच ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों एनएसए की 16वीं बैठक आज नई दिल्ली में हुई। इसमें ब्रिक्स सदस्य देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और प्रतिनिधिमंडल के प्रमुखों ने दुनिया के सामने मौजूदा सुरक्षा चुनौतियों पर विचार विमर्श किया। इस दौरान पारंपरिक सुरक्षा के अलावा ऊर्जा, खाद्य आपूर्ति श्रृंखला और साइबर सुरक्षा तथा आतंकवादी नेटवर्क द्वारा इस्तेमाल की जा रही नई तकनीकों और जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों पर भी चर्चा की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागरिक देवो भव की सोच के साथ अधिकारियों से शासन में नागरिकों को केंद्र में रखने का आग्रह किया है। प्रधानमंत्री ने आज नई दिल्ली में विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में सहायक सचिव के रूप में नियुक्त भारतीय प्रशासनिक सेवा के वर्ष 2024 बैच के 183 प्रशिक्षु अधिकारियों से बातचीत की। श्री मोदी ने युवा सिविल सेवकों से 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को केंद्र में रखते हुए कार्य करने का आह्वान किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज शाम राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे नागरिक सम्मान समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान किए। पद्म पुरस्कार देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक हैं। पत्रकार पी नारायणन को साहित्य और शिक्षा क्षेत्र में पद्म विभूषण और पूर्व न्यायाधीश केटी थॉमस को समाज सेवा के लिए पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज कहा कि सरकार अल नीनो के कारण मॉनसून के संभावित दुष्प्रभाव से निपटने में किसानों की मदद के लिए अग्रिम तैयारियां कर रही है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री चौहान ने ये बात कही।
4: अल नीनो के कारण कमजोर मानसून रहने की जो संभावित स्थितियां हैं और जिसका प्रभाव अब दिखने भी लगा है, क्योंकि मानसून अभी काफी लेट चल रहा है, इसलिए ओवरऑल अभी तक 43% बरसात कम हुई है और आगे भी जो मौसम का अनुमान है कमजोर रहने की संभावना है, और इसका मतलब ये है कि हमारी खरीफ की फसल उस पर इसका असर पड़ सकता है, और इसलिए बिना किसी देरी के हम काफी दिनों से इन परिस्थितियों से निपटने के लिए तैयारियां कर रहे थे। 315 जिले ऐसे होंगे जहां वर्षा कम रहने की संभावना।
3: सर्वोच्च न्यायालय ने आज दिल्ली उच्च न्यायालय के उस आदेश पर रोक लगा दी जिसमें 1993 के कोलकाता बाजार बम विस्फोट मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे एक दोषी को समय से पहले रिहाई का निर्देश दिया गया था। न्यायाधीश पीके मिश्रा और न्यायाधीश संजीव सचदेवा की पीठ ने पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा दायर याचिका पर अंतरिम राहत दी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आज दावा किया है कि ईरान अपने परमाणु केंद्रों की व्यापक निगरानी के लिए सहमत हो गया है। इसके बदले अमेरिका हॉर्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों की आवाजाही पर पाबंदियों में ढील देगा और कड़े नियंत्रण के अंतर्गत रोकी गई वित्तीय रियायतें जारी करेगा। सोशल मीडिया पर राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि ईरानी नेतृत्व ने मौजूदा कूटनीतिक बातचीत के दौरान लचीला रुख अपनाया है। वहीं दूसरी तरफ ईरान ने परमाणु निगरानी ढांचे के दायरे को लेकर अमेरिका के दावों को खारिज कर दिया है। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बकाई ने स्पष्ट किया कि ईरान ने अपने विशिष्ट परमाणु केंद्रों की अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसियों द्वारा निगरानी के लिए कोई सहमति नहीं दी है। लंदन में एफआईएच हॉकी प्रो लीग में भारत ने पाकिस्तान को 4-3 से हरा दिया है। भारत के लिए राजेंद्र सिंह, सुखजीत सिंह, अभिषेक और नीलकांता शर्मा ने एक एक गोल किया, जबकि पाकिस्तान के लिए अहमद नदीम, मोइन शकील और अबू महमूद ने गोल किए। फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज रात 10:30 ग्रुप के में अमेरिका के ह्यूस्टन में पुर्तगाल का सामना उज्बेकिस्तान से होगा। ग्रुप एल में रात 1:30 इंग्लैंड का सामना घाना से होगा। वहीं सुबह 4:30 बजे क्रोएशिया का सामना पनामा से होगा। ग्रुप के अन्य मुकाबले में कल सुबह 7:30 बजे कोलंबिया का सामना कांगो से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: country's shooters, adding three more medals, including two silver and one bronze, to their tally in Zoll, Germany. Shivan Arwal won the silver in the men's 10-meter air pistol junior event with an impressive performance, while Jug Pratap Singh Rathore claimed the bronze in the same event. And that is the end of this news bulletin.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं पूनम आहूजा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सुरक्षा सहयोग मजबूत करने और आतंकवाद तथा साइबर सुरक्षा जैसी चुनौतियों से निपटने में ब्रिक्स की महत्वपूर्ण भूमिका। भारत ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर की स्थिति पर पाकिस्तान की टिप्पणियों को खारिज करते हुए इसे नाकामियों को छुपाने का निराशाजनक प्रयास बताया। विदेश मंत्रालय ने कहा कि अमेरिका और ईरान के बीच हुए समझौते ज्ञापन के बाद से भारत जाने वाले 11 जहाज हॉर्मुज जलडमरू मध्य पार कर चुके हैं। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख एंटोनियो गुटेरेस ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनियों से पर्यावरण प्रभाव रिपोर्ट जारी करने और स्वच्छ ऊर्जा के प्रति प्रतिबद्धता जताने का आह्वान किया। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने FIH प्रो लीग के लंदन चरण के पहले मैच में पाकिस्तान को 4-3 से हराया और फीफा फुटबॉल विश्व कप में पुर्तगाल का मुकाबला उज्बेकिस्तान के साथ थोड़ी देर में शुरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि बदलते वैश्विक परिदृश्य में सुरक्षा सहयोग को मजबूत करने तथा आतंकवाद और साइबर सुरक्षा से लेकर उभरती प्रौद्योगिकियों तक की साझा चुनौतियों से निपटने में ब्रिक्स की महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रधानमंत्री ने आज शाम ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका सहित ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों तथा वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारियों से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता व्यावहारिक सहयोग को बढ़ावा देने, ग्लोबल साउथ की प्राथमिकताओं को समर्थन करने और एक सुरक्षित, अधिक संरक्षित और समावेशी विश्व में योगदान देने का प्रयास करेगी। इस बीच ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों NSA की 16वीं बैठक आज नई दिल्ली में शुरू हुई। इसमें ब्रिक्स सदस्य देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और प्रतिनिधिमंडल के प्रमुखों ने दुनिया के सामने मौजूदा सुरक्षा चुनौतियों पर विचार विमर्श किया। एक रिपोर्ट।
2: इस दौरान पारंपरिक सुरक्षा के अलावा ऊर्जा, खाद्य, सप्लाई चेन और साइबर सुरक्षा तथा आतंकवादी नेटवर्क द्वारा इस्तेमाल की जा रही नई तकनीकों और जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों पर भी चर्चा की गई। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों ने 2026 में भारत की ब्रिक्स की अध्यक्षता के लिए अपना समर्थन व्यक्त किया। बैठक के बाद उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संयुक्त रूप से मुलाकात की। समाचार कक्ष से अमीषा।
1: विदेश मंत्रालय ने आज बताया कि भारतीय ध्वज वाले 10 जहाज अब भी फारस की खाड़ी क्षेत्र में मौजूद हैं। मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में कहा कि अमेरिका और ईरान के बीच समझौता ज्ञापन होने के बाद से भारत आने वाले 11 जहाजों ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य को पार किया है। इनमें भारतीय ध्वज वाले कच्चे तेल के 3 टैंकर के अलावा विदेशी ध्वज वाला 1 LPG कैरियर, 1 कच्चे तेल टैंकर और उर्वरक लदे 6 मालवाहक जहाज शामिल हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि भारतीय ध्वज वाले बाकी जहाज भी जल्द ही हॉर्मुज जलडमरू मध्य से गुजर सकेंगे। श्री जायसवाल ने कहा कि कतर में हुए धमाके में मारे गए भारतीय नागरिकों के शवों को वापस लाने के लिए भारत सरकार कतर के साथ मिलकर काम कर रही है।
3: रास लफान परियोजना में जो वहाँ एक विस्फोट हुआ, उस विस्फोट में 12 भारतीय नागरिक मारे गए हैं। इसके अलावा कुल 66 लोग ऐसे हैं जो घायल हुए हैं, वो लोग सब लोग सुरक्षित हैं और हॉस्पिटल में उनकी मेडिकल ट्रीटमेंट हो रही है। ये 12 लोग के बारे में हम लोग कतर में वहाँ के सरकार के साथ और इनके परिवारजनों के साथ उनसे बातचीत हो रही है हमारी।
1: ब्रिक्स के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक के बारे में श्री जायसवाल ने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने कल ईरान, इथियोपिया, चीन, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका के अपने समकक्षों के साथ द्विपक्षीय बैठकें की।
3: ब्रिक्स NSA की मीटिंग चल रही है। कल हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की चीन के विदेश मंत्री और वहाँ के पॉलिट ब्यूरो के जो चीफ हैं, उनसे भी हमारे NSA की द्विपक्षीय वार्ता हुई और इसमें उन्होंने जो हमारे द्विपक्षीय संबंध हैं उसके बारे में जिक्र किया और ये सकारात्मक बातचीत थी।
1: विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने फिलिस्तीन के साथ अच्छे संबंधों के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि हमने मानवीय अधिकार आधार पर फिलिस्तीन को सहायता

0: दान की है।
1: सालों से फिलिस्तीन के साथ हमारे अच्छे संबंध रहे हैं और हम लोगों ने उनको विकास की साझेदारी के तहत कई एक सारे प्रोजेक्ट्स मुहैया कराया है। ये प्रोजेक्ट्स हम लोगों ने द्विपक्षीय तरीके से और साथ ही साथ उनरवा के माध्यम से भी मुहैया कराया है और मानवीय आधार पर उनको सहायता भी प्रदान की है और आगे भी ये कार्य हमारा चलता रहेगा।
0: भारत यूएई रक्षा साझेदारी पर प्रवक्ता ने कहा कि हाल के कुछ वर्षों में संयुक्त अरब अमीरात के साथ भारत के रिश्तों में काफी सुधार हुआ है और रक्षा साझेदारी की इसमें प्रमुख भूमिका है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के हालात पर पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ की टिप्पणियों पर कहा कि ऐसे बयान पड़ोसी देश की अपनी नाकामियों को छिपाने और मानवाधिकार उल्लंघन की घटनाओं से ध्यान भटकाने की हताशा भरी कोशिशें हैं। उन्होंने कहा कि भारत इन मनगढ़ंत दावों को पूरी तरह खारिज करता है। उन्होंने जोर देकर कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में जारी विरोध प्रदर्शन पाकिस्तान की दशकों पुरानी नीति का नतीजा है। पाकिस्तान अपने अवैध और जबरदस्ती कब्जे वाले इलाकों में लोगों का आर्थिक शोषण करता है, बुनियादी अधिकारों से वंचित रखता है और उनका दमन करता है। श्री जायसवाल ने उम्मीद जताई कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पाकिस्तान को उनके गलत कामों और अत्याचारों के लिए जवाबदेह ठहराएगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने चीन के विदेश मंत्री वांग यी से कहा है कि भारत और चीन के बीच स्थिर और सकारात्मक संबंध आपसी विश्वास और समझ को मजबूत करेंगे। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनियों से अपने परिचालन से होने वाले कार्बन उत्सर्जन, जल उपयोग और भूमि उपयोगी संबंधी जानकारी सार्वजनिक करने का आह्वान किया है। लंदन क्लाइमेटिक एक्शन वीक में संबोधित करते हुए श्री गुटेरेस ने एआई पर्यावरणीय पारदर्शिता पहल का प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा कि एआई कंपनियों को अपनी तकनीक के पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव का आकलन कर उसे सार्वजनिक रूप से साझा करना चाहिए। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आज दावा किया कि ईरान अपने परमाणु केंद्रों की व्यापक निगरानी के लिए सहमत हो गया है। इसके बदले अमेरिकी हार्मुज जल डमरू मध्य में जहाजों की आवाजाही पर पाबंदियों में ढील देगा और कड़े नियंत्रण के तहत रोकी गई वित्तीय रियायतें जारी करेगा। सोशल मीडिया पर राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि ईरानी नेतृत्व ने मौजूदा कूटनीतिक बातचीत के दौरान लचीला रुख अपनाया है। भारतीय नौसेना के आधुनिक स्टिल्थ युद्धपोत INS उदयगिरी और पनडुब्बी रोधी युद्धपोत INS कवरत्ति दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में अपनी परिचालन तैनाती के दौरान कल वियतनाम के नेह रोंग बंदरगाह पहुंचे। लंदन में FIH हॉकी प्रो लीग में भारत ने पाकिस्तान को 4-3 से हरा दिया है। भारत के लिए राजिंदर सिंह, सुखजीत सिंह, अभिषेक और नीलकांता शर्मा ने एक एक गोल किया। पाकिस्तान के लिए अहमद नदीम, मोइन शकील और अबू महमूद ने गोल किए। फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज रात 10:30 बजे ग्रुप के में अमरीका के ह्यूस्टन में पुर्तगाल का सामना उज्बेकिस्तान से होगा। ग्रुप एल में रात 1:30 बजे इंग्लैंड का सामना घाना से होगा। वहीं सुबह 4:30 बजे क्रोएशिया का सामना पनामा से होगा। ग्रुप के एक अन्य मुकाबले में कल सुबह 7:30 बजे कोलंबिया का सामना कांगो से होगा। जर्मनी के सुहल में ISSF जूनियर निशानेबाजी विश्व चैंपियनशिप में भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 2 रजत और 1 कांस्य पदक हासिल कर सहित कुल 3 पदक अपने नाम किए। 10 मीटर एयर पिस्टल पुरुष जूनियर स्पर्धा में शिवा नरवाल ने रजत और युग प्रताप सिंह राठौर ने कांस्य पदक जीता। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सुरक्षा सहयोग मजबूत करने और आतंकवाद तथा साइबर सुरक्षा जैसी चुनौतियों से निपटने में ब्रिक्स की महत्वपूर्ण भूमिका। भारत ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर की स्थिति पर पाकिस्तान की टिप्पणियों को खारिज करते हुए इसे नाकामियों को छुपाने का निराशाजनक प्रयास बताया। विदेश मंत्रालय ने कहा कि अमेरिका और ईरान के बीच हुए समझौते ज्ञापन के बाद से भारत जाने वाले 11 जहाज हार्मुज जलडमरू मध्य पार कर चुके हैं। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख एंटोनियो गुटेरेस ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनियों से पर्यावरण प्रभावी रिपोर्ट जारी करने और स्वच्छ ऊर्जा के प्रति प्रतिबद्धता जताने का आह्वान किया। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने FIH प्रो लीग के लंदन चरण के पहले मैच में पाकिस्तान को 4-3 से हराया। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी। आई एम अभिनीत शुक्ला विद द वर्ल्ड न्यूज। The headlines. Prime Minister Narendra Modi says BRICS has vital role in deepening security cooperation and addressing challenges like terrorism and cyber security. India rejects remarks by Islamabad over situation in Pakistan-occupied Kashmir, calls it desperate attempts to cover up its own failings. External Affairs Ministry says 11 India-bound vessels crossed Strait of Hormuz since MOU between US and Iran. UN Chief Antonio Guterres calls on artificial intelligence companies to release environmental impact report and commit to clean energy. Indian men's hockey team beat Pakistan 4-3 in opening match of London leg of FIH Pro League. And in FIFA World Cup, Portugal will take on Uzbekistan in a group stage fixture at Houston in a short while. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi today said, in a changing global landscape, BRICS has a vital role in deepening security cooperation and addressing shared challenges from terrorism and cybersecurity to emerging technologies. Prime Minister Modi met national security advisors and senior security officials of BRICS countries comprising Brazil, Russia, India, China and South Africa in New Delhi this evening. In a social media post, Mr. Modi also highlighted that India's BRICS chairmanship will seek to advance practical cooperation, support the priorities of the Global South, and contribute to a safer, more secure, and inclusive world. Earlier, the two-day BRICS National Security Advisors meeting concluded in New Delhi. During the meeting, the NSAs and heads of delegation from BRICS member countries exchanged views on security challenges confronting the world. The leaders extended support to enhancing further BRICS cooperation to counter terrorism and cyber risks in a collective manner. They reaffirmed their commitment to combating terrorism in all its forms and manifestations, including through countering the use of new technologies being utilized by them. Speaking at the meeting, National Security Advisor Ajit Doval stressed the need for collective deliberation and cooperation among BRICS nations to address emerging security risks and evolving forms of terrorism in an increasingly digitized world.
3: We need to be cognizant of the new security threats and challenges. Non-traditional threats have transcended national borders and have developed defeat systems against conventional responses. Innovative disruptive technologies, more camouflaged variants of terrorism, cyber threats in a world which is getting increasingly digitized, they all constitute an important threat for us.
2: On the sidelines of the meeting, National Security Advisor Ajit Doval met his Russian counterpart Sergei Shoigu today and discussed their ongoing cooperation under the BRICS framework, including some proposals put forward by Russia. During his meeting with Chinese Foreign Minister Wang Yi, National Security Advisor Ajit Doval underlined that stable, predictable and constructive bilateral relations will contribute to enhanced trust and deeper understanding between the two sides. External Affairs Ministry spokesperson Radhir Jaiswal stated this in response to a media query on discussions during the visit of Chinese Foreign Minister to India for the BRICS NSA's meeting. India today rejected remarks by Pakistani Defence Minister Khwaja Asif on the situation in Pakistan-occupied Kashmir. Addressing media in New Delhi this afternoon, Ministry spokesperson Radhir Jaiswal said, such remarks are desperate attempts by the neighbouring country to cover up its own failings and deflect attention away from its human rights abuses.
1: Such remarks are desperate attempts by Pakistan to cover up its own failings and deflect attention away from its human rights abuses. We categorically reject these fabricated claims with the contempt that they deserve. The ongoing protests in Pakistan-occupied Kashmir are a direct consequence of Pakistan's decades-long policy of systemic economic exploitation, denial of fundamental rights, and administrative oppression. We hope the international community will hold Pakistan accountable for its misdeeds and abuses.
2: The External Affairs Ministry spokesperson said, since the signing of MOU between the US and Iran on the 17th of June, 11 India-bound vessels have transited through the Strait of Hormuz.
1: Since the signing of the MOU on 17th of June, 11 India-bound vessels have transited through the Strait of Hormuz. The vessels include three India-flagged crude oil tankers, each carrying 2,85,000 metric tons of crude oil, one foreign-flagged LPG carrier, one foreign-flagged crude oil tanker, and six foreign-flagged bulk carriers carrying fertilizer cargo. And it is our expectation and hope that the remaining Indian-flagged vessels would also be able to cross the Hormuz soon.
2: The spokesperson confirmed the death of 12 Indian citizens in an explosion in Qatar.
1: We lost 12 of our nationals in the tragedy in Ras Laffan gas field where an explosion happened. Several other people have also been injured. I am told that some 66 people are injured across nationalities. We don't know exactly how many of them are Indian nationals, but all those people who are injured are safe. We are talking to the local authorities for the identification of the mortal remains, as also for the transportation of mortal remains to India. We are also in touch with the family members of those who have died in this very unfortunate accident.
2: India and the United States opened high-level trade talks today to salvage and recalibrate a proposed bilateral trade agreement after changes in U.S. tariff policy disrupted a framework negotiated earlier this year. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal met United States Trade Representative Jamieson Greer and U.S. Ambassador to India Sergio Gore in New Delhi. Both the sides are aiming to conclude an interim trade pact before 24th of July, when Washington's temporary 10% tariff on imports from trading partners is set to expire. This is Akashvani. You are listening to World News. We bring you the top international news and updates from around the globe. UN Chief Antonio Guterres today called on artificial intelligence, that is AI, companies to release environmental impact report and commit to clean energy. Speaking at London Climate Action Week, Mr. Guterres proposed the AI Environmental Transparency Initiative. He said AI companies should also commit to powering their facilities with electricity produced with renewable technologies such as wind and solar by 2030.
4: And I'm calling on every major AI company to measure and publicly disclose the full environmental impact of its systems, carbon, water, and land footprints, and commit to power every data center with renewable energy by 2030.
2: The UN chief's remarks come critics point to the massive environmental and infrastructural strain caused by the rapid expansion of data centers. Prime Minister Narendra Modi has congratulated Ethiopian Prime Minister Abiy Ahmed Ali and the Prosperity Party on their decisive victory in the Ethiopian parliamentary elections. In a social media post, Mr. Modi said, India greatly cherishes its historic, multifaceted and deep-rooted ties with Ethiopia. The FIFA World Cup continues with crucial group stage encounters as teams battle for a place in the knockout rounds. In a short while from now, Portugal will face Uzbekistan in a Group K fixture at Houston in US, with Cristiano Ronaldo's side aiming to bounce back after being held to a draw in their opening match. The match will begin at 10:30 p.m. Indian Standard Time. In Group L, England will take on Ghana in a highly anticipated clash in Boston at 1:30 a.m. In the same group, Croatia will take on Panama at Toronto in Canada from 4:30 a.m. Later, Colombia locks horns with DR Congo in Guadalajara from 7:30 a.m. tomorrow in Group K fixture. Meanwhile, Argentina, France and Norway have confirmed their progression to the knockout rounds. In men's hockey, India registered a thrilling 4-3 victory over arch rivals Pakistan in their opening match of the London leg of the 2025-26 FIH Pro League this evening. India mounted a strong comeback after failing behind in the first quarter with goals from Abhishek Nayan, Neelkant Sharma, Sukhjeet Singh and Rajinder Singh. Ahmed Nadeem gave Pakistan an early lead and later scored twice in the final quarter to narrow the margin, but Harmanpreet Singh's side held their nerve to seal the win. With this win, India continues its unbeaten record against Pakistan in senior men's hockey, extending back to 2014. And now before we close, here are the highlights of the bulletin. Prime Minister Narendra Modi says BRICS has vital role in deepening security cooperation and addressing challenges like terrorism and cyber security. India rejects remarks by Islamabad over situation in Pakistan-occupied Kashmir, calls it desperate attempts to cover up its own failings. External Affairs Ministry says 11 India-bound vessels crossed Strait of Hormuz since MOU between US and Iran. UN Chief Antonio Guterres calls on artificial intelligence companies to release environmental impact report and commit to clean energy.